प्रकृति हमारे लिए जिस कर्तव्य का विधान करती है उसका विरोध करना व्यर्थ है। यदि कोई मनुष्य छोटा कार्य करे तो उसी कारण उसे छोटा नहीं कहा जा सकता। कर्तव्य के केवल ऊपरी रूप से ही मनुष्य की उच्चता या नीचता का निर्णय करना उचित नहीं। देखना तो यह चाहिए कि वह अपना कर्तव्य किस भाव से करता है। भिन्न भिनाते रहने वाले पुरुषों के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे कभी किसी चीज से संतोष नहीं होता और फलस्वरूप उसका जीवन दुभर हो उठना और असफल हो जाना स्वाभाविक है। हमें चाहिए कि हम कार्य करते रहें, जो कुछ हमारा कर्तव्य हो उसे करते रहें, अपना कंधा सदैव काम से भिड़ाए रखें, तभी अवश्य हमें प्रकाश की उपलब्धि होगी।

नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। आप सुन रहे हैं अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी अपनी आरजे याजू। आकाशवाणी टानगर के स्टूडियो से आप सभी का दिल से स्वागत है। हमारे स्टूडियो के घड़ी के हिसाब से सुबह के 5:56 हो रहे हैं और इसी के साथ शुरू हो चुकी है हमारी आज की प्रातःकालीन प्रसारण सभा। आज ये साल 2026 जून महीने का शुक्रवार दिन और तारीख है 19। दोस्तों, इस खूबसूरत सुबह को आपके लिए और भी खास बनाने के लिए हम लेकर आए हैं ढेर सारी जानकारी, मनोरंजन और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरें। और इस पूरे प्रसारण में मेरे साथ स्टूडियो तथा स्पीति में मौजूद है हमारी पूरी टीम, प्रसारण निष्पादक गहिर अत और तकनीकी अभियंता एचआर ब्रह्मा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलिए इस सुहाने सुबह की शुरुआत करते हैं।

चलिए दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आज सुबह के आने वाले प्रोग्राम्स पर। 4:10 दिन की शुरुआत होगी भक्ति गीत के साथ। भक्ति और सुकून भरे गीतों के साथ एक पॉजिटिव स्टार आपको मिलेगा। 4:40 सुनिए गालो ताले न्यूज, अपने क्षेत्रीय समाचार अपनी भाषा में। 4:45 पेश है सुबह सवेरे, जहां योगा, एक्सरसाइज, हेल्थ टिप्स और मधुर संगीत के साथ एक फ्रेश शुरुआत होगी।

7:10 सुनी आप अतानी डायलॉग न्यूज 7:15 रहेगा मॉर्निंग इन्फरटेनमेंट प्रोग्राम्स जहां मिलेगी आपको लेटेस्ट जानकारी और लोकल न्यूज एक एंगेजिंग अंदाज में। 7:35 सुनिए टागिन डायलॉग न्यूज।

7:40 पेश है सदाबहार सूथिंग म्यूजिक के साथ लोकल अनाउंसमेंट और वेदर अपडेट्स। 8:00 सुनिए समाचार प्रभात हिंदी में राष्ट्रीय समाचार। 8:15 रहेगा मॉर्निंग न्यूज इंग्लिश में।

0: ईटानगर अरुण एफएम का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विश्व के लिए एक विश्वसनीय साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय के लोगों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर देश एक विश्वसनीय आपूर्ति श्रृंखला और एक स्थिर साझेदार चाहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक विकास तभी टिकाऊ होगा जब वे साझा किया जाएगा और प्रौद्योगिकी से मानवता को तभी सच्चा लाभ मिलेगा जब उस पर भरोसा किया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से कई महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्त हुए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा है कि प्रधानमंत्री की इस सफल यात्रा ने भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने बताया कि देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों ने के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट UG पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। इस बीच दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिसमें नीट परीक्षा से पहले टेलीग्राम की सेवा फिलहाल रोकने के सरकार के फैसले को चुनौती दी गई है। अदालत ने पूछा कि परीक्षार्थियों द्वारा प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल की आशंका के चलते करीब 15 करोड़ यूजर्स के अधिकारों को कैसे सीमित किया जा सकता है। केंद्र सरकार ने दलील दी कि टेलीग्राम के बॉट स्वरूप और क्लाउड संचालन में लीक सामग्री को बड़े पैमाने पर फैलाने की क्षमता है जिसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD Vance ने कहा है कि युद्ध समाप्त करने के समझौते के अंतर्गत अमेरिकी नौसेना ने ईरान के बंदरगाहों पर दर्जन से अधिक जहाजों को आवागमन की अनुमति दे दी है और वहां से नाकेबंदी हटा ली है। श्री वांस ने व्हाइट हाउस में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि अब होर्मुज जलडमरू मध्य से तेल की अधिक आवाजाही हो रही है। इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा है कि इसराइली सेना दक्षिणी लेबनान में बनी रहेगी। अमेरिका ईरान समझौते पर हस्ताक्षर के बाद ये उनकी पहली टिप्पणी थी। श्री नेतन्याहू ने कहा कि दक्षिणी लेबनान में सुरक्षा क्षेत्र बनाए रखना इसराइल की सुरक्षा के लिए जरूरी है। फीफा विश्व कप में कल रात ग्रुप ए के मैच में चेकिया और दक्षिण अफ्रीका के बीच मुकाबला 1-1 गोल से ड्रॉ रहा। इस परिणाम से दोनों ही टीमों की नॉकआउट दौर में पहुंचने की उम्मीद बनी हुई है। इससे पहले कल ग्रुप के में मैक्सिको

दोस्तों आप सुन रहे थे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। यह आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम का 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल की बात। तो दोस्तों इस सुहानी सुबह की शुरुआत करते हैं एक खूबसूरत और पवित्र एहसास के साथ, दिल को शांति देने वाले और भक्ति से भरे गीत। पेश है आपका पहला कार्यक्रम भक्ति गीत।

0: दोस्तों, ये था भक्ति गीत। उम्मीद है इन मधुर सुरों ने आपके मन को शांत और दिन को एक पॉजिटिव शुरुआत दी होगी। यह आकाशवाणी का ईटानगर का RFM 103.1 MHz है। अब वक्त हो गया है अपने आसपास की खबरों से जुड़ने का। सुनिए कालो दैनिक न्यूज, जहां आप तक पहुंचेगी आपके क्षेत्र की हर जरूरी और खास जानकारी आपके अपनी भाषा में।
1: ही आकाशवाणी ईटानगर तनगातम नरुम रोगाम जापम तगला लुयो पोलग आलोलोई गोला कोना तारिक ओक प्राइडे लुक आलो हो गोगा लोमिंग के नक मम्मे लेंजी है मे लेंजी तक नंगो लिरिक अत यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर नर्मदर बिंद प्रधान मम्मलो होक दो बार जीत आलोलोक नीट यूजी परीका लेंज बजी दी मोत्ता नाम लगाब ल मोन्या दु नाम अबागा दम ने लकिंगो दका कुर्ता जुर्कु नाम लगाब हाई लेवल रिव्यू मीटिंग गो बाका दुदू मालोगो मिनिस्टर म हिम पोरिका जिमता दुनाम हिम ने कस कपेक मनामरुम नामरु अलमान इकमाद ब दरग दरग ब कपेक तारेक दो ब ट्रांसपेरेंसी ओक पोरिका मग स्टैंडर्डम ने हदु ब मेंटेन तोक लाखा अमला मुन्नम ने मेंगाम चिचिन तोको मनारु ऑथोरिटी का दम ने आर्दला ये लाखा ओक पोरिका जिदिता नाम हिम ने मनाम मकाक माब अलब पबग बनुनु इक तो लाखा अमला मेंटो ओक हम सिम मेंदा मेंदा तो होक पोरिका होक दरकार देन नारु हकरा अबागतम ने नुनु इजागल मोल तला कामला मेंटो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मु पेरिस लो सेंट गोवियन ग चेयरमैन ओक सीईओ विनोइट बेजिन ने कार घितो मुनु मटेरियल्स ओक कंस्ट्रक्शन सेक्टर अबागत लो जिक्का को कहित को सोशल मीडिया पोस्ट गोलो नरेंद्र मोदी मु मेंटो भारत गुदाहिगे भारत गुदाहिगे सेंट गोवियर ग येलग दुलग नाम लोक भारत गुदा ग सहसना आओ निजरिया में गाद कर लगा मे गो अपॉर्चुनिटी सबने मोलेंजी दाकू अमला मेन तो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप डॉक्टर प्रदीप लिंगफाम मलो राजभवन ईटानगर लो गवर्नर लेफ्टिनेंट जनरल के टी पटनायक रिटायर्ड ने कार्य के तो ओक अन्य 2025-2026 लगाब कमीशन ग एनुअल रिपोर्टम ने कातम तो को दुदू मालोगो चेयरमैन ओक कमीशन ग मेंबर गा द मुनु अन्य आरा लोक कमीशन ग नारु अगर आई अगर ई दोसा ओक पोरिका जिमनाम रिक्वायरमेंट रिकोमेंडेशन की ऑब्जर्वेशन ओक आइन मुर्को फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन ओक अबा नारू गादम ने गवर्नर ने कातमला पेंच तोगो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क यारू बगिलिन हु बगकलो APPSES इन माज ब इगुर्दू अमला गवर्नर मुसिन मेंतो ओक हम ब इबला अग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ने अल्लु ब मेंटेन काम बला अगर हम काकेन ब गर्ब तोला कामला मेंतो ओक आदेन होमोयम सिन कमीशन पोरिका ओक रिक्वायरमेंट प्रोसेस गातलो सिन अल्लु ब मुना

गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर NNFM पर अभी आप सुन रहे थे गालो डायलेक्ट में समाचार। उम्मीद है हमारे सारे श्रोताओं तक सारी जरूरी खबरें पहुंच गई होंगी, लेकिन दोस्तों दिन की शुरुआत सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि एक नई ताजगी और एक नई ऊर्जा के साथ होनी चाहिए, और इसी ऊर्जा को आपके जीवन में खोलने के लिए मैं आपके दोस्त और होस्ट आरजी याजू लेकर आ गई हूं आपके अपनी पसंदीदा कार्यक्रम सुबह सवेरे। जी हाँ, सुबह सवेरे जहां हम और आप मिलकर बात करते हैं आपकी सेहत की, आपकी मुस्कान की और आपकी आने वाली बेहतरीन कल की। आज का हमारा ये सफर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम बात करेंगे कि कैसे हम अपनी हेक्टिक लाइफ में से थोड़ा सा वक्त निकालकर खुद को फिट और हिट रख सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और इस खूबसूरत सुबह का आगाज करते हैं इस पहले बेहद प्यारे और खूबसूरत गीत के साथ।

दोस्तों इस गाने ने तो सुबह सुबह दिल को एकदम खुश कर दिया। वैसे दोस्तों दिल खुश रखने के साथ साथ इस शरीर का ध्यान रखना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है ना। जब भी हम सेहत की बात करते हैं तो सबसे पहले ध्यान में आता है योगा। अब आप कहेंगे हम तो रोज सुबह उठकर अनुलोम विलोम और प्राणायाम करते ही हैं। बिल्कुल सही बात है, प्राणायाम और अनुलोम विलोम हमारी ब्रीदिंग को, हमारी लंग्स को बहुत मजबूत बनाते हैं। लेकिन दोस्तों हमारी बॉडी को थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ भी जरूरत होती है। इसीलिए आज मैं आपको बताने आई हूँ कुछ ऐसे योगा आसनास जो आपको रोजाना करने चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं भुजंगासना यानी कोबरा पोज की। जब आप पेट के बल लेटकर अपने अपर बॉडी को उठाते हैं ना, तो आपकी स्पाइन, आपकी पीठ की हड्डी एकदम मजबूत हो जाती है।

जो लोग दिन भर कुर्सी पर बैठकर काम करते हैं उनके बैक पेन के लिए तो ये एक वरदान है। लेकिन बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। आज से आप अपने रूटीन में शामिल कीजिए तदासना, जिसे माउंटेन पोज भी कहते हैं। ये देखने में बहुत सिंपल लगता है, बस सीधे खड़े होकर हाथ ऊपर खींचने हैं, लेकिन ये आपके पूरे बॉडी पोस्चर को सुधार देता है। और हाँ, जो हमारे यंग लिसनर हैं उनके लिए वृक्षासना यानी ट्री पोज बहुत जरूरी है। एक पैर पर खड़े होकर बैलेंस बनाना, इससे सिर्फ बॉडी का बैलेंस नहीं बनता दोस्तों, इससे आपका मेंटल फोकस और कंसंट्रेशन भी बढ़ता है। और अगर आपको लगता है पूरे दिन की बागडोर में दिमाग थक जाता है, तो रात को सोने से पहले या सुबह थोड़ी देर बालासना यानी चाइल्ड पोज जरूर कीजिए। ये आपके स्ट्रेस को चुस्कियों में गायब कर देगा। तो दोस्तों, योगा को सिर्फ एक एक्सरसाइज मत समझिए, इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाइए। चलिए, योगा की इस खूबसूरत सीख के बाद आपको सुनाती हूँ एक और खूबसूरत सा गाना जो आपके मूड को और भी फ्रेश कर देगा।

वेलकम है दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर आपका अपना शो सुबह सवेरे। योगा से हमने दिमाग और शरीर को स्ट्रेच कर लिया, अब वक्त है बॉडी में थोड़ी हीट जनरेट करने का। लेकिन रुकिए, आज मैं आपको वही पुरानी बातें बिल्कुल नहीं बोलूंगी, जैसे कि चलो दोस्तों दौड़ने जाओ या रस्सी कूदो। मुझे पता है कि आप ये सब सुनकर पक चुके होंगे और हमारे ईटानगर के लोग थोड़े क्रिएटिव हैं, उन्हें कुछ हटके चाहिए। तो आज हम बात करेंगे अनकन्वेंशनल एक्सरसाइजेस की, जिसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी वर्कआउट भी हो जाएगी। सबसे पहले बात करते हैं नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस की। आई नो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साउंड करता है, बट आसान भाषा में इसे कहते हैं नीत। इसका मतलब है बिना एक्सरसाइज किए एक्सरसाइज करना। आप जब सुबह उठते हैं, अपने कमरे की सफाई करते हैं, बिस्तर ठीक करते हैं या गार्डन में पौधों को पानी देते हैं, क्या आपको पता है कि इसमें आपकी उतनी ही कैलोरीज बर्न होती है जितनी एक हल्की वॉक में। जो लोग दिन भर बैठकर कंप्यूटर पर काम करते हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है द 2 मिनट डेस्क चैलेंज। हर एक घंटे बाद अपनी कुर्सी से उठिए और सिर्फ 2 मिनट के लिए रूम में ही चलते हुए किसी से बात कीजिए या स्ट्रेचिंग कीजिए। इससे आपका मेटाबॉलिज्म सोता नहीं है, हमेशा जगा रहता है। और दोस्तों, हमारे अरुणाचल में तो हर घर में संगीत है, हर दिल में रिदम है, तो जिम क्यों ना जाना। सुबह सुबह अपना कोई भी फेवरेट फास्ट सॉन्ग लगाइए और कमरे के दरवाजे बंद करके बस 10 मिनट के लिए फ्री स्टाइल डांस कीजिए। इससे बेहतर कार्डियो पूरी दुनिया में कोई नहीं है। ये आपकी हैप्पी हार्मोन्स यानी एंडोर्फिन्स को रिलीज करता है, जिससे दिन भर आपके चेहरे पर वो क्यूट वाली स्माइल बनी रहेगी। एक और मजेदार एक्सरसाइज बताती हूं, जिसे कहते हैं आइसोमेट्रिक्स। इसमें आपको हिलना भी नहीं पड़ता, बस अपने दोनों हाथों को आपस में जोर से नमस्ते की पोजीशन में दबाइए और 10 मिनट तक होल्ड कीजिए। आप फील करेंगे कि आपके आर्म्स और चेस्ट की मसल्स एंगेज हो रही है ना। ये मजेदार टिप्स बिना हिले दुले एक्सरसाइज। तो दोस्तों, मोनोटोनस बात मत बन

एक्सरसाइज को एक सजा मत समझिए, इसको एक गेम बनाइए। चलिए इसी फन और एनर्जेटिक वाइब के साथ सुनते हैं आज का अगला गाना। और तब तक के लिए आप भी थोड़ा सा डांसरसाइज कीजिएगा।

0: तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना।
1: तुम भी मुझे कभी छोड़ के मत जाना।
2: दोस्तों, गाना सुनकर तो सच में लग रहा है कि जिंदगी इतनी खूबसूरत है, लेकिन इस जिंदगी को लंबे समय तक एंजॉय करने के लिए अब वक्त है आज के सबसे इम्पोर्टेंट सेगमेंट का, हेल्थ टिप्स। और दोस्तों, आज मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलने वाली

0: कि सुबह उठकर गुनगुना पानी पियो या ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। मुझे पता है मेरे श्रोता बहुत समझदार है और ये बेसिक बातें उन्हें आपको बिल्कुल पता है। आज हम बात करेंगे उन छोटी छोटी मॉडर्न आदतों की जो हमारे हेल्थ को साइलेंट तरीके से खराब कर रही है और उनके सिंपल हैक्स क्या है। पहला टिप है डिजिटल सनडाउन। हम सब की आदत है कि सोने से ठीक पहले मोबाइल स्क्रॉल करते हैं। ये जो स्क्रीन की ब्लू लाइट है ना दोस्तों, ये हमारे दिमाग को बिल्कुल उल्लू बना देता है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दिन है और इस वजह से हमारे बॉडी में मेलाटोनिन नाम का हार्मोन नहीं बनता, जिससे नींद गहरी नहीं आती। तो आज से रूल बनाइए, बिस्तर पर जाने से कम 30 मिनट पहले मोबाइल को खुद से दूर रख दीजिए। इसे कहते हैं डिजिटल सनडाउन। इस हफ्ते करके देखिए, आपकी नींद की क्वालिटी इतनी बढ़िया हो जाएगी कि आप को बिल्कुल अच्छा फील होगा। दूसरा है द 2020 रूल फॉर आईज। हम में से ज्यादातर लोग दिन भर फोन या लैपटॉप की स्क्रीन को लगातार देखते रहते हैं, जिससे आंखों में ड्राइनेस और हेडेक होता है। इसका एक सुपर हैक है, हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए अपने 20 फीट दूर रखी किसी चीज को देखिए। इससे आपके आई मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं और आपका फोकस बढ़ता है। तो दोस्तों, कार्यक्रम सुबह सवेरे में आज बस इतना ही।
1: श्रोता, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के ईटानगर केंद्र से प्रसारित
0: गालो। दोस्तों, अब सुन पाएंगे आपातानी दैनिक न्यूज अपनी भाषा में अपने क्षेत्र की ताजा और महत्वपूर्ण।
1: आइए सुनते हैं आपातानी श्रोताओं का कार्यक्रम।

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सभी सुन रहे थे आपातानी दैलेख में समाचार। उम्मीद है हमारे सारे श्रोताओं तक सारी जरूरी खबरें पहुंच गई होंगी। लेकिन दोस्तों, दिन की शुरुआत सिर्फ खबरों से नहीं बल्कि एक नई ताजगी और एक नए अंदाज के साथ होनी चाहिए, और इसी ताजगी को आपके सुबह में घोलने के लिए मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे याजू लेकर आ गई हूं आप सभी का अगला पसंदीदा कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट, जहां हम सिर्फ बातें करते नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों को खोलते हैं, देश दुनिया की खबरों को एक्सप्लोर करते हैं और आपकी सुबह को ज्ञान और मनोरंजन से भर देते हैं। आज का हमारा ये सफर बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज 19 जून के इस दिन हम बहुत सारी दिलचस्प बातें करने वाले हैं। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और इस खूबसूरत सुबह की आगाज करते हैं इस पहले बेहद प्यारे गीत के साथ।

दोस्तों, इस खूबसूरत गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मॉर्निंग इंटरटेनमेंट में सिर्फ अरुण एफएम पर। चलिए दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं वक्त के पहियों पर और देखते हैं आज के दिन यानी 19 जून को इतिहास में क्या बड़ी घटनाएं घटी है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे ग्लोबल इवेंट्स की जो दुनिया के इतिहास में दर्ज है। आज ही के दिन 19 जून 1865 को अमेरिका के इतिहास में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। टेक्सास के गल्फस्टोन शहर में रहने वाले आखिरी अफ्रीकन अमेरिकन गुलमन को ये खबर मिली थी कि वो अब पूरी तरह से आजाद है। सिविल वॉर खत्म होने के 2 साल बाद उन्हें ये आजादी मिली थी। इस दिन को आज अमेरिका में जून 3 के नाम से नेशनल हॉलीडे की तरह मनाया जाता है, जो हर इंसान की बराबरी और सम्मान का प्रतीक है। दोस्तों, माँ के लिए तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन पिता के योगदान को याद करने के लिए दुनिया का सबसे पहला फादर्स डे आज ही के दिन 19 जून 1910 को वाशिंगटन स्टेट में ऑफिशियली मनाया गया था। इसको शुरू करने का श्रेय सोनोरा स्मार्ट डोड को जाता है, जिनका पालन पोषण उनके सिंगल फादर ने किया था। तब से लेकर आज तक ये दिन पूरी दुनिया में पिताओं के सख्त स्वभाव के पीछे छुपे प्यार को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है।

और लसांगना पसंद करने वाला बिल्ला आज दुनिया का सबसे ज्यादा सिंडिकेटेड कॉमिक कैरेक्टर बन चुका है। दोस्तों, ग्लोबल हिस्ट्री के बाद अब आइए रुक करते हैं हमारे प्यारे भारत की तरफ और देखते हैं यहाँ के कुछ बड़ी इंडियन इवेंट्स जिन्होंने हमारे देश के इतिहास को एक नई दिशा दी। आज ही के दिन 19 जून 1970 को भारत का एक प्रमुख राजनेता और कांग्रेस पार्टी के लीडर राहुल गांधी का जन्म न्यू दिल्ली में हुआ था। भारत के सबसे पुराने पॉलिटिकल परिवार यानी नेहरू गांधी परिवार से ताल्लुक रखने के कारण उनका जीवन बचपन से ही राजनीति के बीच बीता। उनके जन्मदिन पर आज देशभर के कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। ग्रीन एनर्जी की दुनिया में भारत ने आज ही के दिन एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव किया था। केरला के वायनाड में देश का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट ऑफिशियली ऑपरेशनल हुआ था। पानी के ऊपर तैरते हुए इन सोलर पैनल्स से न सिर्फ बिजली बनती है बल्कि पानी का इवोपोरेशन भी कम होता है, जो एनवायरमेंट के लिए एक डबल फायदा है। आज ही के दिन भारत की टेनिस क्वीन सानिया मिर्जा ने इंटरनेशनल टेनिस रैंकिंग में एक बहुत बड़ा उछाल मारा था और अपना एक बड़ा टाइटल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। उनकी इस कामयाबी ने हमारे देश की करोड़ों लड़कियों को ये विश्वास दिलाया कि टेनिस जैसे महान खेल में भी भारत की बेटियां दुनिया भर पर राज कर सकता है।

भारत के स्पेस साइंस के इतिहास में 19 जून 1981 का दिन सुनहरा अक्षरों में लिखा है। आज ही के दिन फ्रेंच गुयाना से इंडिया का पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम एप्पल था, उसे कामयाबी के साथ स्पेस में भेजा गया था। इस सैटेलाइट ने भारत के टेलीकम्युनिकेशन और टीवी ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क को मजबूत करने में सबसे बड़ी बुनियाद रखी थी। दोस्तों, इतिहास के इन दिलचस्प पन्नों को देखने के बाद वक्त है प्रोग्राम को थोड़ा और आगे बढ़ाने का। सुनते हैं आज का दूसरा सुपरहिट गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर आपका अपना शो मॉर्निंग एंटरटेनमेंट। इतिहास की बातें तो हो गई, अब वक्त है आज की ताजा और सबसे बड़ी खबरों पर ध्यान देने का, जो कि अरुणाचल टाइम्स न्यूज़पेपर में छपी है। आज की खबरें बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो आइए इन पर पूरी डिटेल में बात करते हैं। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, एसीएफ एलएचएस पॉलिटिकल मोटिव बिहाइंड आफ्रा पुश सिक्स प्रॉफ इंटू IFCSAP। दोस्तों, हमारी पहली खबर हमारे स्टेट के सिविल सोसाइटी और पॉलिटिक्स से जुड़ी है। अरुणाचल इंडिजिनस ट्राइब एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन ने एक बहुत बड़ा और गंभीर बयान दिया है। ACF ने सीधा तौर पर आरोप लगाया है कि आफ्रा को पुश करने के पीछे कुछ लोगों के पर्सनल और पॉलिटिकल मोटिव्स यानी राजनीतिक फायदे छुपे हुए हैं। ACF का कहना है कि इस तरह के एक्ट से हमारे ट्राइबल समाज में डिवीजन पैदा हो सकता है। इतना ही नहीं, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट से डिमांड की है कि IFCSAP यानी इंडिजिनस फेथ एंड कल्चर सोसाइटी ऑफ अरुणाचल प्रदेश के फंक्शनिंग और उनके मोटिव्स पर एक प्रॉपर और अनबाइज प्रॉप यानी उनकी जांच होनी चाहिए, ताकि जनता के सामने पूरी सच्चाई आ सके। इस बयान के बाद स्टेट के सोशियो पॉलिटिकल सर्कल में काफी गर्मा गर्मी पड़ गई है। एंटी ड्रग्स एक्टिविस्ट अरेस्टेड, हमारी अगली हेडलाइन बहुत ही चौंका देने वाली और चिंताजनक है। हमारे स्टेट में ड्रग्स के खिलाफ चल रही लड़ाई में एक बड़ा मोड़ आया है, जब एक जाने माने एंटी ड्रग एक्टिविस्ट को पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। ये एक्टिविस्ट पिछले काफी समय से हमारे यूथ को नशीली दवाइयों से दूर रखने और उन्हें अवेयर करने का काम कर रहे थे। उनके अरेस्ट की खबर जैसे ही बाहर आई, लोकल लोगों और उनके सपोर्टर्स में काफी गुस्सा और हैरानी देखने को मिल रही है। पुलिस का कहना है कि उन पर कुछ स्पेसिफिक एलिगेशन है जिनकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, जबकि दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स इस अरेस्ट को एक साजिश बता रहे हैं। ड्रग्स हमारे स्टेट के यूथ को खराब कर रहा है, और ऐसे में एक एक्टिविस्ट का जेल जाना इस लड़ाई को किस तरफ ले जाएगा, ये देखना होगा। मॉनसून वोज क्लॉक ट्रेन्स मरीज स्लज टर्न बागी टिनाली नाहरलगन रोड इंटू कम्यूटर्स नाइटमेयर, ये खबर हमारी रोज की परेशानी बन चुकी है, जिसे हम सब हर रोज दो चार होते हैं। मॉनसून अभी पूरी तरह से शुरू भी नहीं हुआ है कि और हमारी सड़कों का हाल बुरा हो गया है। बागी टिनाली से नाहरलगन वाली जो मेन कनेक्टिंग रोड है वो अब

0: कम्यूटर्स यानी सुबह शाम आने जाने वाले लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन चुकी है। बारिश के कारण क्लॉग ड्रेन्स यानी नाली पूरी तरह जम चुकी है, जिसकी वजह से सारा गंदा पानी और मिट्टी सड़क पर आ चुकी है। इस पूरे स्ट्रेच पर इतना मडी स्लज यानी गीला कीचड़ जमा हो गया है कि गाड़ियों का स्लिप होना और लंबे लंबे ट्रैफिक जैम्स लगना आम बात हो गई है। दो व्हीलर चलाने वाले लोग तो हर रोज गिर रहे हैं। लोकल लोगों का गुस्सा अब अथॉरिटीज पर पड़ रही है कि हर साल वही दिक्कत क्यों आती है और ड्रेनेज सिस्टम को पहले से ठीक अभी तक किया ही क्यों नहीं। अगर आप इस रोड से निकल रहे हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेकर निकलिए और ध्यान से गाड़ी चलाइएगा। दोस्तों और मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट में आज बस इतना ही। आकाशवाणी ईटानगर कारून एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है। अब आप सुन पाएंगे
1: si Akaswani Tanagar Station na sarung ulo tagin programa makoko ila yun yung abin time gina si Raju Brai. Prime Minister Narendra Modi mo yung Brazil ge Paris lo joint government ge chairman nila Binod Bajingge ge CEO ni Karik Sula Gama Guroro Sula Diga ni Kubala Bipaduku. So, kung paano so opportunities in materials o ko construction sector lo gama nga rorog birik sulari ganyan ko wala, may pado ko. So, gama asom Modi, PM Modi ni miga social media post lo St. Govins lo ka bifalin do ko. India nga investment relaxe dong rik lo arin na chukba gama nga rorog sulari ganyan ko wala, may pado ko. Okay, so aralo St. Govins nga ka investment nga India lo kayasan ba rilag doku ba gama nga rorok supukula may palin doku. Union Education Minister Dharmendra Pradhan mayo high level dongpam dokula may pakunam nga need undergraduate re-examination nga did taraklo ay nagasande alo ni sarpuala ba jimutay kunela may pado ko. So gama so gadong pamsu union minister ni may pado na mga need undergraduate re-examination nga darak ala ba jimutay kunela may pado ko. Arunachal Pradesh ke governor Arunachal Pradesh Public Service Commission ke Chairman Pradeep Lingpa ni Karik Sula Gama Agur Orak Sula Riga ni Kubala Bipaduku. Som Itanagar ke Lok Bhavan Lo Karik Suku Lo 2025-26 Anying Lo Commission ke Annual Report Patanga Governor ke Laklo Katam Lakpula Riga ni Kubala Bipaduku. So alulo Professor Pradeep Lingpa ni mi commission ga member da danga lekin go ba angbam dokula examination nga conduct gela recruitment magenam dong rek lo gama nga rorok birik sulari ga ni kubala be pada doku okasu darak kala ba appointment mesenga menamsum ka rorok birik sulari gunyi kubala bepada duku. Arunachal Pradesh ke Deputy Chief Minister Chona Men ke Chairmanship aralo High Power Committee meeting dongpam gunyi dongpam gunyi kubala dongpam dukula forest area issues pelelo la land issues pelelo kadar tabaj bekela bepada gunyi kubala. So ke dongpam su Arunachal Pradesh Law Environment and Forest Minister Wangki Loang, Urban Development and Land Management Minister Balo Raja Nila Chief Secretary Manish Kumar Gupta Bulni Dongbam Gain Kubela Bipad Linduku. Arunachal Pradesh ke Education Minister P.D. Sona Miyo Bipa Kunam Nga Government of Arunachal Pradesh Nga La Vivekananda K. केंद्र विद्यालय।

अरुणाचल प्रदेश ng एमओयू गु तुलुक मिस तो कुबला में फालिन दुकु सु गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तातो लो बीकेबी स्कूल ng बीकेबी तातो लो सिप दुकुबा तुलुक मिस तो कुबला में फालिन दुकु वुमेन्स ते दे तो एफ एच आई वुमेन्स नेशन कप न्यूजीलैंड लो लिखसुखु लो इंडिया हॉकी टीम युरुगे टीम 3-2 गोल लो यागन्य कुमला बेपा दुकु सो पोल ए लो इंडिया टॉप लिस्ट लो आदुकुला बेपा दुकु सो इंडिया टीम लो लो गोल आउंगो जिनम लो दीपिका सोरेंग बिलेव गोल गजिकुनाम केला में पालें दुखु मेट्रोलॉजिकल सेंटर ईटानगर लोको में पाकुनाम अरुणाचल प्रदेश के चाम डिस्ट्रिक्ट गुलो पफमपारे डिस्ट्रिक्ट ना बेंतकला येलो अलर्ट गो निदोंग अच्छलब ओकिन पकेला वेदर रिपोर्ट लो कातम पकुला में पा दुखु ओके सो डिस्ट्रिक्ट मो कगुना लो दोगुम दोरिया अंग तकला निदोंग अच्छलब होलक तदुला में पा दुखु सरुग तागिन गाम इनु में तमसंका हबो

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप अभी आप सुन रहे थे तागिन दालेक में समाचार। उम्मीद है हमारे सारे श्रोताओं तक सारी जरूरी खबरें और जानकारियां पहुंच गई होंगी। लेकिन दोस्तों, खबरों का इस सिलसिले के बाद अब वक्त है थोड़ा सुकून का, थोड़ा ताजगी का और उन यादों का जो हमेशा हमारे दिल के करीब रहते हैं। इस खूबसूरत सुबह को और भी हसीन बनाने के लिए मैं आपकी आरजे याजू लेकर हाजिर हूं आप सभी का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम सतबहार।

सदा बहार जहां वक्त थोड़ा तम जाता है, जहां पुराने संगीत के मिठास हमारी सुबह को एक अलग ही ढंग से सजाती है। आज के इस सफर में हम न सिर्फ बेहतरीन एवरग्रीन गाने सुनेंगे, बल्कि बात करेंगे हमारे बदलते हुए मौसम की और जानेंगे कि आज हमारे पूरे अरुणाचल के मिजाज कैसा रहने वाला है। तो चलिए इस नए सफर की शुरुआत करते हैं इस पहले बेहद सुरीले और सुनहरे गाने के साथ। सुनिए और खो जाइए इन यादों में।

इस खूबसूरत नगमे के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम सदाबहार में सिर्फ अरुण एफएम पर। दोस्तों, जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले हमारी नजर खिड़की से बाहर आसमान पर जाती है, और आज अगर

मैं हमारे कैपिटल सिटी ईटानगर के मौसम की बात करूं तो आसमान ने हम सबको एक बहुत ही प्यारा सरप्राइज दिया है। कई बार लगता है कि बादल छाएंगे, लेकिन हमारे ईटानगर का मौसम भी बिल्कुल किसी फिल्मी हीरोइन की तरह है। कब मूड बदल जाए पता ही नहीं चलता। इस समय अगर आप खिड़की से बाहर देखेंगे तो आसमान में दूर दूर तक बादल नहीं है, बल्कि एक ब्राइट सनशाइनी डे यानी बहुत ही प्यारी और खिली हुई धूप निकली हुई है। सुबह सुबह की ये सुनहरी धूप पूरे शहर को एक नई चमक और एक नई एनर्जी दे रही है। अगर टेम्परेचर यानी तापमान की बात करें तो इस ब्राइट सनलाइट की वजह से तापमान थोड़ा तेजी से बढ़ रहा है। आगे अभी सुबह के वक्त ही तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास है और दिन ढलते ढलते यानी दोपहर तक इसके 30 डिग्री सेल्सियस से 32 डिग्री सेल्सियस तक जाने की पूरी उम्मीद है। धूप तेज होने के कारण ह्यूमिडिटी यानी उमस का असर भी थोड़ा ज्यादा फील हो सकता है। तो दोस्तों, मौसम एकदम साफ है, धूप मजेदार है और कपड़े सुखाने के लिए आज का दिन सबसे बेस्ट है। लेकिन हाँ, धूप में निकल रहे हैं तो खुद को हाइड्रेटेड रखिए, पानी साथ रखिएगा और इस ब्राइट सनी डे का पूरा मजा लीजिएगा। मौसम की इस खिली खिली जानकारी के बाद आइए सुनते हैं हमारे आज के इस सफर का दूसरा बेहतरीन और सदाबहार गाना, जो इस धूप में आपके दिल को ठंडक देगा।

0: superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Bay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags.
1: इस खूबसूरत गाने के साथ ही दोस्तों
2: Get attractive offers up to rupees 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today.
1: इस खूबसूरत गीत के साथ दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अरुणाचल ओवरऑल अरुणाचल प्रदेश की वेदर अपडेट्स की तरफ. कैपेसिटी ईटानगर में तो धूप खिली हुई है. अगर मौसम मेहरबान है अब रुक करते हैं हमारे पूरे अरुणाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों और इलाकों की तरफ, क्योंकि हमारे स्टेट का मौसम हर कुछ किलोमीटर पर अपना रंग बदलता है. ईटानगर की तरह ही हमारे ज्यादातर लोअर बेल्ट और फुटहिल्स वाले इलाकों में जैसे पासीघाट, नामसाई और शांगलांग में भी आज सुबह से ही अच्छी धूप देखने को मिल रही है. यहां का तापमान बाकी जगहों से ज्यादातर यानी लगभग 32 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और धूप के साथ साथ उमस थोड़ी परेशान कर सकती है. लेकिन वही अगर हम रुख करें हमारे ऊंचे पहाड़ी इलाकों का जैसे तवांग और वेस्ट कामेंग, तो वहां का मिजाज हमेशा की तरह अलग है. तवांग और उसके आसपास के इलाकों में धूप और बादलों की आंख मचल रही है. वही थोड़ी ठंडक बनी हुई है और मैक्सिमम टेम्परेचर मुश्किल से 16 डिग्री सेल्सियस से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा. पहाड़ों पर सुबह के वक्त हल्की धुंध भी देखने को मिली है, इसीलिए वहां गाड़ी चलाने वाले हमारे श्रोता थोड़ा ध्यान से चले. वहीं सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट जैसे जीरो और दापोरिजो की बात करें तो वहां मौसम बहुत ही सुहाना और प्लेजेंट बना हुआ है. हल्का सा आसमान साफ है और

ठंडी हवाएं चल रही है जो दिन को बहुत आरामदायक बना रही है। ओवरऑल देखा जाए तो आज हमारे अरुणाचल पर धूप और रौनक दोनों मेहरबान है। दोस्तों आज के हमारे इस सदाबहार प्रोग्राम का सफर अब यहीं पर समाप्त होता है। आज हमने ईटानगर की सुनहरी धूप से लेकर तवांग और नामसाई तक के मौसम का के हर एक बदलते रंग को जाना और कुछ पुराने यादों के गाने भी गुनगुनाए। उम्मीद है आपको आज का ये लंबा और बदला हुआ सफर बहुत पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं हूं आपकी आरजे याजू, अब लेती हूं इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर दोस्तों संगीत और बातों का ये बेहतरीन सिलसिला लगातार चलता रहेगा।

0: प्यारा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाएं, योग को जीवन का हिस्सा बनाएं। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग।
2: करो योग, रहो
1: जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: लो फिर आ रहा 21 जून ला रहा नया संदेश, योग से जीवन बने विशेष, बढ़ती उम्र के साथ योग का साथ न्यारा, योग फॉर हेल्दी एजिंग, ये भरोसा हम सबका प्यारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अपनाए, योग को जीवन का हिस्सा बनाए। एक दिन नहीं, हर दिन योग, स्वास्थ्य और खुशहाली का अचूक संयोग। इस 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य केंद्र होगा सिटी ऑफ जॉय कोलकाता। यहीं से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देंगे विश्व को स्वास्थ्य और सद्भाव का संदेश। आयुष मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: आया खुशियों का पैगाम, पीएम किसान।
5: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। अमेरिका ने ईरान के साथ हुए समझौते के बाद ईरानी बंदरगाहों पर लगी नौसैनिक नाकाबंदी हटाई। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज करते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। श्री मोदी ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ी

0: के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। श्री मोदी ने कहा कि जब उनकी सरकार के 12 वर्ष पूरे हुए तब वे फ्रांस पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने साथ दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा।
0: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से भारत को नवाचार, प्रौद्योगिकी और समावेशी विकास के क्षेत्र में बढ़ावा मिलेगा।
3: कल शाम पेरिस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत केवल भविष्य की तैयारी ही नहीं कर रहा बल्कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और जनता की आकांक्षाओं के बल पर भविष्य को आकार भी दे रहा है। यात्रा के दौरान भारत और फ्रांस के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी और वैश्विक सुरक्षा के क्षेत्रों में सहयोग और मजबूत हुआ। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने कहा कि इस यात्रा से भारत फ्रांस साझेदारी को अनेक महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई मजबूती मिली है। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन-जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख से रोजगार के अवसर सृजित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इसके अंतर्गत देश भर में 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अंतरित की जाएगी। इस किस्त से 2,18,00,000 से अधिक महिला किसानों को लाभ मिलेगा। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। उत्तर प्रदेश के लिए 48,298 मीट्रिक टन मूंग, 97,970 मीट्रिक टन उड़द और 41,718 मीट्रिक टन मूंगफली की खरीद को मंजूरी दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में भाग लेंगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ओंकारेश्वर के बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज रायरंगपुर में वो एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी और एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलपूर्ति प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगी। वो ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक नए स्पेशल सर्किट हाउस रायरंगपुर पूरे जिले का भी उद्घाटन करेगी। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मयूरभंज में राष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता उड़ीसा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में रायरंगपुर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास परियोजना को जनता को समर्पित करेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए रायरंगपुर से मैं प्रकाश दास।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज के अंक में हम पूर्वोत्तर में बदलाव के लिए सरकार के महत्वपूर्ण कदमों के बारे में जानकारी दे रहे हैं।
2: नए भारत में राष्ट्र निर्माण की बात हो और पूर्वोत्तर क्षेत्र को नजरअंदाज किया जाए, यह संभव नहीं है। एक समय था जब पूर्वोत्तर को हिंसा, नाकाबंदी और उपेक्षा के लिए जाना जाता था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस तस्वीर को बदल दिया है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री ने स्वयं 83 से अधिक बार पूर्वोत्तर राज्यों का दौरा किया है। इस दौरान दूर दराज और पहाड़ी इलाकों की देश के बाकी हिस्सों से कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिला है और स्थानीय लोगों के लिए आय के नए अवसर पैदा हुए हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र में 47,270 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं और 46,290 किलोमीटर से ज्यादा ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया है। पिछले 12 वर्षों में 8 नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे विकसित किए गए हैं। वर्ष 2014 में पूर्वोत्तर राज्यों में 9 हवाई अड्डे थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 17 हो गई है। उड़ान योजना के तहत 90 हवाई मार्गों तथा 12 हवाई अड्डों और हेलीपोर्ट को चालू किया गया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में 4,170 किलोमीटर से अधिक रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम में रेलवे का 100% विद्युतीकरण पूरा हो चुका है। आजादी के बाद पहली बार वर्ष 2022 में मणिपुर तक पहली मालगाड़ी पहुंची। वर्ष 2023 में पहली मालगाड़ी मेघालय पहुंची और वर्ष 2025 में पहली ट्रेन मिजोरम पहुंची। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ईटानगर के डेरा नानतुंग सरकारी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर एम क्यू खान ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश में हवाई संपर्क में काफी सुधार हुआ है।
3: 2014 के पहले एयर कनेक्टिविटी नहीं थी, वो अभी एयर कनेक्टिविटी आ गई है और लोग 2.5 घंटे में ईटानगर से दिल्ली पहुंच रहे हैं। तो हालांकि एयरपोर्ट से कलकत्ता जाइए, कलकत्ता से कहीं भी जा सकते हैं, दिल्ली डायरेक्ट फ्लाइट से।
2: वहीं पूर्वोत्तर के विकास को गति देने के लिए पीएम डिवाइन योजना के तहत कुल 6,600 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में गुवाहाटी के एक स्थानीय निवासी ने कहा कि क्षेत्र में सड़क और हवाई संपर्क पहले की तुलना में काफी बेहतर हुआ है।
4: मोदी गवर्नमेंट का ये 10 साल बहुत अच्छा से पार हुआ है और ये जो हम लोगों का असम का नया एयरपोर्ट बन गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नया टर्मिनल बन गया और सड़कों का भी हालत काफी सुधर गया है। अभी बहुत जल्द से जल्द हम लोग बहुत दूर तक जा सकते हैं और गांव का कनेक्टिविटी भी अच्छा हुआ है।
2: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूर्वोत्तर के 8 राज्य, जिन्हें अष्टलक्ष्मी भी कहा जाता है, विकास की नई कहानी लिख रहे हैं। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश अनुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। खेलों में भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
5: धन्यवाद फरहत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेस्किन के समझौते पर हस्ताक्षर करने के साथ ही अमेरिका ईरान युद्ध के अंत होने का समाचार आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है, महंगाई पर लगेगी लगाम, बाजार से घर गृहस्थी तक राहत की उम्मीद। लोकसत्ता के शब्द है, जंग खत्म, होर्मोज खुला, तत्काल खत्म नहीं होंगी पेट्रोल और डीजल की कीमतें, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर लगी अस्थाई रोक के खिलाफ दाखिल याचिका पर फैसला सुरक्षित रखने से जुड़ी खबर पर अमर उजाला ने केंद्र सरकार के शब्द प्रकाशित किए हैं। आतंकी गतिविधियों के लिए टेलीग्राम मुफ्त, सरकार ने प्रतिबंध को बताया उचित। हिंदुस्तान ने पर्दाफाश

0: शीर्षक से बच्चों की तस्करी पर खबर प्रकाशित की है। बच्चों के सौदागर गिरफ्तार, नवजातों की खरीद फरोख्त करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह दबोचा। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है बच्चों में कुपोषण का कूचक्र।
1: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। सरकार ने तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दालों और तिलहन की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। और हॉकी में भारत ने FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says India is emerging as a trusted and stable partner to the world amid global uncertainty and disruption. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. Government approves large-scale procurement of pulses and oil seeds at minimum support price for Tamil Nadu, Gujarat, Uttar Pradesh and Haryana. President Draupadi Murmu to attend program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. US lifts naval blockade of Iranian ports as part of agreement between the two countries. And in hockey, India beat Uruguay 3-2, registering their third consecutive win to storm into semi-finals of FIH Women's Cup in New Zealand. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh ऐसे साथियों की तलाश में है जिन पर लंबे समय तक भरोसा किया जा सके, और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. Mr. Modi added that at the G7 meeting in Evian, he emphasized the importance of partnerships based on trust. He said India's message to the G7 summit was clear that global governance will only be effective when it is inclusive. Moreover, Mr. Modi said he arrived in France when his government had completed 12 years and India has witnessed transformative growth across sectors in these years.
3: 12 साल के इस कालखंड में भारत का जीडीपी दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
2: Earlier, the Indian community in France welcomed Prime Minister Modi with the message Bonjour Modi or Hello Modi and chants of Bharat Mata Ki Jai. Prime Minister Modi has left for New Delhi after concluding his successful and productive visit to Paris, marking the third leg of his two-nation visit to France and Slovakia. In a social media post, Mr. Modi said that the India-France friendship will become even stronger in the times to come as he concludes his visit to France. French President Emmanuel Macron also recorded a special farewell video message in Hindi

0: गुड मॉर्निंग ईटानगर, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप सुन रहे थे पहले दिल्ली और फिर शिलांग से हमारे देश और नॉर्थ ईस्ट का पूरा समाचार बुलेटिन। उम्मीद है हमारे सारे श्रोताओं तक देश दुनिया और हमारे रीजन के सारी जरूरी खबरें पहुंच गई होंगी। लेकिन दोस्तों, खबरों के इस सिलसिले के बाद अब वक्त है कुछ नया सीखने का, थोड़ी दिलचस्प जानकारियों की इकट्ठा करने का और दिमाग को एक नई एनर्जी देने का। इस खूबसूरत सुबह को और भी इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल बनाने के लिए मैं आपकी आरजे याजू और आपका लेकर हाजिर हूं आप सभी का बेहद पसंदीदा कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
1: हेलो ईटानगर।

हेलो ईटानगर, जहां हम रोजाना मिलकर किसी ऐसी चीज या इवेंट के बारे में बात करते हैं जो आपके ज्ञान को बढ़ाए और आपको कुछ नया सिखाए। आज का हमारा ये एजुकेशनल सेगमेंट बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज हम दुनिया के एक ऐसे मॉन्यूमेंट के बारे में बात करेंगे जिसे हर कोई जानता है, लेकिन उसकी पूरी कहानी बहुत कम लोगों को पता है। तो चलिए, बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और इस नए सफर का आगाज करते हैं इस पहले बेहद प्यारे गीत के साथ।

दोस्तों, इस खूबसूरत गाने के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है प्रोग्राम हेलो ईटानगर में सिर्फ अरुण एफएम पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने इंट्रो में कहा था, आज 19 जून का दिन दुनिया के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन है। अगर आप सोच रहे हैं कि आज के दिन क्या हुआ था, तो दोस्तों आज ही के दिन यानी 19 जून 1885 को दुनिया का सबसे मशहूर मॉन्यूमेंट यानी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पहली बार अमेरिका के न्यूयॉर्क हार्बर पहुंचा था। आपने बिल्कुल सही सुना, आज ही के दिन इस बड़ी सी मूर्ति को अमेरिका लाया गया। लेकिन इसकी कहानी बहुत दिलचस्प है, जो हमारे स्टूडेंट्स और हर श्रोता को जाननी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को अमेरिका ने खुद नहीं बनाया था, ये फ्रांस के लोगों की तरफ से अमेरिका के लोगों को दिया गया एक दोस्ती का तोहफा था। अमेरिका की आजादी के 100 साल पूरे होने के मौके पर फ्रांस उन्हें ये गिफ्ट देना चाहता था। इस मूर्ति को फ्रांस में बनाया गया और इसके जो सबसे मुख्य स्कल्पचर यानी मूर्तिकार थे, उनका नाम था फ्रेडरिक ऑगस्ट बोटोल्डी। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी मूर्ति को एक साथ समुन्द्र पार फ्रांस से अमेरिका लाना नामुमकिन था, इसलिए फ्रांस में इस पूरी मूर्ति को पहले बनाया गया और फिर उसे अलग अलग 350 टुकड़ों में बांट दिया गया। इन सारे टुकड़ों को 214 बड़े बड़े लकड़ियों

लकड़ी के बक्सों में पैक किया घर और इस सारे इस एरे नाम के एक फ्रेंच जहाज के जरिए अटलांटिक ओशन पर पार करके आज ही के दिन न्यूयॉर्क हार्बर लाया गया था। जब ये जहाज न्यूयॉर्क पहुंचा तो वहां के लाखों लोगों ने इसका स्वागत किया था, लेकिन इसको वापस जोड़कर खड़ा करने में एक साल से ज्यादा का वक्त लग गया था। चलिए, इस अद्भुत इतिहास के बाद वक्त हो चला है हमारे आज के इस सफर के दूसरे गाने का। इस गाने को सुनिए और इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इस स्टैचू से जुड़े कुछ ऐसी फैक्ट्स जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर आपका अपना शो हेलो ईटानगर। हम बात कर रहे हैं दुनिया का सबसे आइकॉनिक स्ट्रक्चर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के बारे में। इसका पूरा नाम पता है क्या है? इसका ऑफिशियल नाम है लिबर्टी एंड लाइटनिंग द वर्ल्ड, यानी दुनिया को रोशनी दिखाती आजादी। आइए बात करते हैं इसके कुछ ऐसे एजुकेशनल और हिडन फैक्ट्स की जो आपको हैरान कर देंगे।

पहला फैक्ट है इसका रंग द कलर चेंज। दोस्तों आज हम जब भी स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की फोटो देखते हैं वो हमें ग्रीन यानी हरे रंग की दिखाई देती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब ये 1885 में आई थी तब इसका रंग हरा नहीं था। ये पूरी मूर्ति कॉपर यानी तांबे से बनी है, इसलिए इसका ओरिजिनल रंग एक चमकता हुआ रेडिश ब्राउन यानी कॉपर कलर था। लेकिन न्यूयॉर्क के मौसम, हवा और बारिश के असर से कॉपर पर ऑक्सीडेशन हो गया, जिसे पतीना कहते हैं, और धीरे धीरे लगभग 20-25 सालों में ये पूरी तरह हरे रंग की हो गई। फैक्ट नंबर दो है द क्राउन एंड द सेवन स्पाइक्स। अगर आप इस स्टैचू के क्राउन यानी ताज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें सात नुकीली किरणें निकली हुई है। ये सिर्फ एक डिजाइन नहीं है दोस्तों, ये सात स्पाइक्स दुनिया के सात महाद्वीपों और सात समुद्रों को दर्शाते हैं। इसका मतलब है कि आजादी और ज्ञान का ये संदेश पूरे विश्व के लिए है।

तीसरा फैक्ट है सिंबल ऑफ ब्रोकन चेन्स। अगर आप कभी इस स्टैचू के बिल्कुल पास जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसके पैरों के पास एक टूटी हुई जंजीर पड़ी हुई है। ये जंजीर इस बात का प्रतीक है कि गुलामगिरी, तानाशाही और भेदभाव का अंत हो चुका है और इंसानियत आगे बढ़ रही है। चौथा फैक्ट है द टॉर्च। इसके हाथ में जो मशाल है वो ज्ञान और आजादी का रास्ता दिखाती है। 1986 में इसके ओरिजिनल टॉर्च को बदलकर एक नया टॉर्च लगाया गया जिसके ऊपर 24 कैरेट गोल्ड लीफ यानी सोने की परत चढ़ाई गई है ताकि वो धूप में चमक सके।

0: अरे आज के आखिरी कार्यक्रम को अंत करने का यह आकाशवाणी का ईटानगर का अरुण एफ एम 103.1 MHz से दोस्तों कहीं जाइएगा मत, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
2: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वह समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
2: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
1: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
3: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों और औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। प्रधानमंत्री कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तारकेश्वर से पीएम किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस अवसर पर श्री मोदी पश्चिम बंगाल में कई महत्वपूर्ण कृषि पहल का भी शुभारंभ करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके बाद राष्ट्रपति उड़ीसा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट और निहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमरीकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। वहीं सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और कराईकल में भी तेज वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर आप अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से हमारी नेशनल न्यूज बुलेटिन। देश भर की बड़ी और जरूरी खबरों से खुद को अपडेट करने के बाद अब वक्त हो चला है थोड़ा सा अपना मूड बदलने का और रुख करने का उस जगह का जहां चकाचौंध है, ड्रामा है, संगीत है और ढेर सारा एंटरटेनमेंट। जी हाँ, मैं आपकी दोस्त और होस्ट लेकर हाजिर हूँ आप सभी का सबसे पसंदीदा मसलेदार और चटपटा प्रोग्राम फिल्मी गपशप।

आज के इस फिल्म में सफर में हम बात करेंगे बॉलीवुड के उन गलियारों की जहां हर रोज कुछ नया पकता रहता है। आज हमारे पास बातें करने के लिए बहुत कुछ है, चाहे आज पर्दे पर आई बड़ी थिएटरिकल रिलीज हो, शूटिंग के घंटों को लेकर चल रही बड़ी बहस हो, ओटीटी का नया कंटेंट हो, या फिर सेलेब्स के बीच चल रही ताजा खबरें। तो चलिए बिल्कुल देरी नहीं करते हैं और इस फिल्मी सुबह का आगाज करते हैं इस साल के सुपरहिट और एनर्जेटिक गाने के साथ। सुनिए और झूम उठिए।

दोस्तों, शानदार गाने के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने शो फिल्मी गपशप में, सिर्फ अरुण एफएम पर। दोस्तों, आज फ्राइडे है और फिल्म लवर्स के लिए फ्राइडे का मतलब होता है फर्स्ट डे फर्स्ट शो। और आज का फ्राइडे बहुत बड़ा है क्योंकि आज बड़े पर्दे पर आई है इस साल की सबसे बड़ी मल्टी स्टार रोम कॉम यानी कॉकटेल 2। जी हाँ, शाहिद कपूर, कृति सनन और रश्मिका मंदाना की ये फिल्म यानी आज 19 जून को सिनेमा घरों में लग चुकी है। एडवांस बुकिंग की बात करें तो इसने पहले ही करोड़ों का बिजनेस कर लिया है। होमी अदजानिया का डायरेक्शन में बनी ये फिल्म पुरानी कॉकटेल की डायरेक्ट सीक्वल तो नहीं है बल्कि एक स्पिरिचुअल सीक्वल है जहां दोस्ती, प्यार और मॉडर्न रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्स इक्वेशन को एक नए रूप में दिखाया गया है। लोग थिएटर्स के बाहर सुबह से ही लाइन लगाए खड़े हैं। अगर आपका इस वीकेंड पर दोस्तों के साथ किसी कूल, वाइब्रेंट और इमोशनल फिल्म को देखने का प्लान है तो आप इसका टिकट बुक कर सकते हैं। चलिए, पहले शो के रेस्पॉन्स पर हमारी नजर बनी हुई है, लेकिन तब तक सुनते हैं इस फिल्म का 2.0 गाना तुम ही हो बंदूक।

दोस्तों, मैं आप सब से पूछना चाहूंगी कि आपको ये नया वर्जन पसंद आया कि नहीं। वेल, अगर मेरे अपने पर्सनल चॉइस की बात करें तो दोस्तों, तो मुझे ये 2.0 वर्जन कुछ खास पसंद नहीं आया। मुझे आज भी वही पुराना ओरिजिनल तुम ही हो बंधु ही सबसे ज्यादा पसंद है। पता नहीं क्यों हमारा बॉलीवुड थोड़ा और क्रिएटिव हो सकता। आई विश कि वो और थोड़ा क्रिएटिव हो सकते थे। हर हिट गाने का रिमिक्स या 2.0 वर्जन बनाना अब एक ट्रेंड बन गया है। लेकिन सच तो ये है कि ये नए वर्जन अक्सर उन पुराने गानों की ओरिजिनलिटी और उनकी आत्मा को पूरी तरह बिगाड़ देते हैं। अब मेकर्स को कौन समझाए कि सिर्फ इसलिए कि पहला गाना एक मेगा हिट था, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपका ये सेकेंड वर्जन भी हिट हो जाएगा। जो बात फिल्म वाले नहीं समझते वो ये है कि आप चाहे कितना भी नया म्यूजिक डाल ले, कोई भी सेकेंड वर्जन कभी भी उस ओरिजिनल गाने का मैजिक और उसकी जगह को रिप्लेस नहीं कर सकता। दीपिका और डायना पेंटी का वो जो बेपरवाह अंदाज था वो इस नए ग्रीन स्क्रीन वाले वीडियो में बिल्कुल मिसिंग लग रहा है। आपका इस बारे में क्या कहना है मुझे जरूर बताएगा। चलिए, इस खिले हुए गुस्से और म्यूजिक डिस्कशन के बाद सुनते हैं ये दूसरा गाना। इसी फिल्म का है, इस गीत का नाम है माशुका।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर आपका अपना शो फिल्में गपशप। कॉकटेल 2 तो आज पर्दे पर आ गई है, लेकिन थिएटर्स में रौनक अगले हफ्ते और भी डबल होने वाली है। पता है क्यों? क्योंकि अगले फ्राइडे यानी 26 जून को रिलीज होने जा रही है इस साल की सबसे बड़ी कॉमेडी फिल्म वेलकम टू द जंगल। ये वेलकम फ्रेंचाइज की तीसरी फिल्म है और इस बार इसका कैनवस बहुत बड़ा है। इसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, संजय दत्त, अरशद वारसी और परेश रावल जैसे कॉमेडी के बादशाह के साथ एक बहुत भरी स्टार कास्ट जंगल सर्वाइवल और मैडनेस लेकर आ रही है। ट्रेलर को पहले ही बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिला है और आने वाले हफ्ते में इसकी प्रमोशन पूरे देश में तेजी से शुरू होने वाली है। कॉमेडी के दीवानों के लिए अगला हफ्ता सच में एक जंगल सफारी जैसा होने वाला है। आइए इस अगले धमाल की खबर के बाद अब वक्त हो चला है इसी फिल्म का गाना सुनने का। ये गाना भी इसकी जो पहली पार्ट थी वेलकम, इसके ही 2.0 वर्जन है।

दोस्तों, मैं आप सभी लिसनर से पूछना चाहती हूं, आपको ये नया वर्जन कैसा लगा? मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को वही पुराना एहसास हुआ होगा जो मुझे हुआ। सच कहूं तो दोस्तों, मुझे भी ऐसा लगा जैसे इस नए वर्जन ने उस ओरिजिनल गाने के पूरे चार्म और मजा को बिल्कुल बिगाड़ कर रख दिया। अब नो ऑफेंस टू दिशा पतानी, वो सच में एक बेहतरीन डांसर है और उन्होंने अपना पूरा दम लगाया है, लेकिन दोस्तों, हमारी कैटरीना कैफ का जो ओरिजिनल स्वैग और वाइब था ना, उसके बाद ही कुछ और थी। ओरिजिनल गाने में कैटरीना का जो डांस था, उनका जो एटीट्यूड और नखरा था, वो सच में टू डाई फॉर था। उनका वो पल्लू गिराने वाला स्टेप और वो बेपरवाह एक्सप्रेशन आज भी हम सबके दिमाग में छपा हुआ है। मेकर्स को ये समझना चाहिए कि हर पुराना हिट गाने को थोड़ा रिमिक्स करके नया बना देने से काम नहीं चलता। इससे अच्छा होता कि वो इस नए वर्जन पर मेहनत करने के बजाय एक बिल्कुल नया, फ्रेश और असली स्वैग वाला गाना कंपोज करते, जो आज की जनरेशन के लिए एक नया एंथम बनता। पुरानी चीजों को छेड़ने से बस नॉस्टैल्जिया खराब होता है। आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या आपको भी कैटरीना की याद आई? मुझे जरूर बताइएगा।

वैसे इस सॉन्ग के एंडिंग पर जो अक्षय ने जो मैसेज दिया वी मिस यू कैटरीना, वो बहुत ही क्यूट था। आइए इस अगले धमाल और म्यूजिक डिबेट के खबर के बाद अब वक्त हो चला है हमारे दूसरे न्यूज का।

दोस्तों, इस साल बॉलीवुड के बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहले जहां बड़ी फिल्मों और बड़े स्टार्स के नाम पर फिल्में चल जाती थी, अब वहां पासा पलट चुका है। हाल ही में रिलीज हुई बड़े बजट की फिल्में जिनकी स्क्रीन ज्यादा थी, उन्हें जनता ने स्टोरी कमजोर होने की वजह से पूरी तरह नकार दिया। वहीं दूसरी तरफ बिना बड़े स्टार्स के आई कुछ सुपर नेचुरल, साइकोलॉजिकल हॉरर और रियल कंटेंट वाली लो बजट फिल्में जैसे कि हॉन्टेड बॉक्स ऑफिस पर धीरे धीरे बहुत बड़ा बिजनेस कर रही है। इंडस्ट्री के बड़े बड़े डायरेक्टर्स अब ये मान रहे हैं कि ऑडियंस को सिर्फ बड़ा स्केल नहीं बल्कि स्ट्रांग राइटिंग चाहिए। ये नए फिल्म मेकर्स और नए स्क्रिप्ट्स के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है। और शायद इसी बहाने राइटर्स को और नया मौका मिल जाए। चलिए, इस दी बॉक्स ऑफिस एनालिसिस के बाद अब रुख करते हैं संगीत की तरफ और सुनते हैं एक और सुपरहिट गाना।

वेलकम बैक दोस्तों, फिल्म के गपशप में अब वक्त हो चला है और सबसे बड़े मुद्दे का जो इस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री में गर्मा गर्मी पैदा कर रहा है। दोस्तों इस समय बॉलीवुड को दो हिस्सों में बंट गया है एक नए नियम को लेकर, और वो मुद्दा है शूटिंग के घंटे और 8 आवर शिफ्ट। जी हाँ, पिछले कुछ समय से इंडस्ट्री के टेक्नीशियंस और क्रू मेंबर्स लंबे शिफ्ट यानी 14 से 18 घंटे काम करने के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। इस डिबेट को तब हवा मिली जब खबरें आई कि लीडिंग एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने मदरहुड के बाद अपनी हेल्थ और वर्क लाइफ बैलेंस के लिए शिफ्ट को 8 घंटे तक सीमित रखने की मांग की। सुनील शेट्टी और काजोल जैसे बड़े स्टार्स ने इसका समर्थन किया है और कहा है कि काम के घंटे इंसानियत के नाते सही होने चाहिए, लेकिन वही दूसरी तरफ बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स का कहना है कि 8 घंटे की विजित शिफ्ट मेगा बजट फिल्मों के लिए चलाना नामुमकिन है, क्योंकि एक एक दिन का रेंट लाखों में होता है। कुछ वेटरन्स तो शाहरुख खान का उदाहरण दे रहा है जो लगातार 27 घंटे तक सेट पर काम करने के लिए जाने जाते हैं। ये इंडस्ट्री वाइड क्लैश इस समय हर बड़े टॉक शो और न्यूज में टॉप पर चल रहा है। इस बड़े बहस के बाद चलिए थोड़ा सा दिमाग को शांति देते हैं और सुनते हैं आज का हमारा अगला बेहतरीन गाना।

और बड़ी कानूनी लड़ाई की तरफ चलते हैं और इस बार ये जुड़ी है बॉलीवुड के भाईजान यानी सलमान खान से। सलमान खान ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है एक आने वाली फिल्म के खिलाफ जिसका नाम है काला हिरन द बैटल फॉर लेगेसी। सलमान खान का कानूनी तौर पर कहना है कि इस फिल्म के मेकर्स उनके पर्सनालिटी राइट्स और उनके पुराने केसेस के रेफरेंसेस का गलत तरीका से और बिना परमिशन के इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे उनकी रेपुटेशन को भारी नुकसान पहुंच सकता है। उन्होंने इस फिल्म के रिलीज और प्रमोशन पर तुरंत रोक लगाने की मांग की है। कोर्ट में चल रही ये लीगल बैटल इस समय हर मीडिया पोर्टल पर हेडलाइंस बनी हुई है। चलिए कोर्ट के इन मामलों से थोड़ा बाहर निकलते हैं और सुनते हैं एक प्यारा सा गाना।

थिएटर्स और लीगल बैटल्स के बाद अब रुख करते हैं हमारे मोबाइल और टीवी स्क्रीन की तरफ यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का। इस हफ्ते ओटीटी पर इम्तियाज अली की आई फिल्म मैं वापस आऊंगा को लेकर सोशल मीडिया पर एक अजीब सा तमाशा देखने को मिला। इंटरनेट पर इस फिल्म के गाने और कंटेंट को लेकर एक सेटिरिकल पोस्ट बहुत तेजी से वायरल हो गई है जहां इसे एंटी नेशनल तक कह दिया गया था। लेकिन बात तब मजेदार हो गई जब हमारे म्यूजिक मास्टर एआर रहमान ने खुद इस वायरल पोस्ट पर एक हंसते हुए इमोजी के साथ रिएक्ट किया और पूरे मैटर को एक मजाक में बदलकर वही ठंडा कर दिया। इसके अलावा ओटीटी पर एक नए सस्पेंस ट्रेलर शो का क्रेज भी बढ़ रहा है जो इस वीकेंड आपके बिंज वॉच के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। फिल्मी दुनिया की इन सारी चटपटी खबरों के बाद अब वक्त हो चला है हमारे आज के आखिरी गाने का। इस गाने को पूरी तरह एंजॉय कीजिएगा।

0: दोस्तों, इस मजेदार गाने के साथ ही आज के हमारे इस फिल्मी कपशिक प्रोग्राम का सुनहरा सफर अब यही समाप्त होता है। आज हमने बॉलीवुड की बिल्कुल ताजा रिलीज कॉकटेल 2 से लेकर शूटिंग के गंतों की कंट्रोवर्सी और कोर्ट के कानूनी मामलों तक की हर एक ताजा खबर को जाना और साथ ही देर सारे गाने भी सुने। उम्मीद है आपको आज का ये शो बहुत पसंद आया होगा। अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। मैं आपकी आरजी याजू अब लेती हूं इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाएगा क्योंकि आकाशवाणी टानगर अरुण एफएम पर दोस्तों गाने और मनोरंजन का यह सिलसिला लगातार चलेंगे। यह आकाशवाणी टानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, अब आप सुन पाएंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। कल रात फ्रांस में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन

0: आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वे समावेशी होगा। उन्होंने कहा कि भारत ने पिछले 12 वर्षों में सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास देखा है।
1: 12 साल के इस कालखंड में भारत का GDP दोगुना हुआ है, एयरपोर्ट की संख्या दोगुनी हुई है, यूनिवर्सिटीज की संख्या भी दोगुनी हो गई है, हाईवे कंस्ट्रक्शन की स्पीड 3 गुना बढ़ गई है और मेट्रो नेटवर्क 4 गुना बड़ा हो गया है।
0: प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस की सफल यात्रा के बाद स्वदेश के लिए रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
2: पारिस मैं इसे साथ वे दौरे के लिए स्वागत करते फ्रांस और भारत की दोस्ती हमारा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में ये खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूहों से बातचीत करेंगे। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार यात्रा पर रहेंगे। श्री वैष्णव पटना और छपरा में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे पटना के सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई समुद्री नाकाबंदी हटा ली है। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देशानुसार ईरान के विरुद्ध चलाए जा रहे अमेरिकी नौसैनिक अभियान समाप्त कर दिए गए हैं। भारत ने कल न्यूजीलैंड में FIH महिला नेशंस कप में पूल ए के मैच में उरुग्वे को 3-2 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कल चिली से होगा। मौसम विभाग ने आज असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: दोस्तों आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर अभी आप सुन रहे थे दिल्ली से हमारे नेशनल न्यूज बुलेटिन। देश और दुनिया की सारी बड़ी और जरूरी खबरों से खुद को अपडेट करने के बाद अब घड़ी की सुइयां इस बात का इशारा कर रही है कि कामकाज को थोड़ा सा साइड में रखा जाए और दिल की बात सुनी जाए। जी हां, मैं आपकी दोस्त और होस्ट याजू लेकर हाजिर हूं इस खूबसूरत सुबह का आखिरी और आप सभी का सबसे प्यारा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी हाँ दोस्तों, एसएमएस के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके एसएमएस का इंतजार रहेगा।
0: दोस्तों, ये हमारा पूरे दिन का एक ऐसा सेगमेंट है जहां माइक मेरा होता है, ध्यान मेरा होता है, लेकिन मर्जी बिल्कुल आपकी होती है। आपकी फरमाइश, आपके जज्बात, आपके नाम और आपके चहेते गाने। रोजाना की तरह आज भी मेरे ये झोला आपकी देर सारी मैसेजेस और से बड़ा हुआ है। तो चलिए इस दोस्ती और संगीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आपकी फरमाइशों का ये सुनहरा सफर।

दोस्तों, फरमाइशों के इस सफर में आज सबसे पहले मैं उन श्रोताओं से माफी मांगने चाहती हूं जिनकी फरमाइशें कल समय की कमी यानी टाइम लिमिट के वजह से पूरी नहीं हो पाई थी। आप तो जानते ही हैं, बातें इतनी सारी होती है और गाने इतने प्यारे कि वक्त का पता ही नहीं चलता। लेकिन आपका ये दोस्त आपकी फरमाइशें कभी भूलती नहीं है। तो कल की सबसे पहली पेंडिंग रिक्वेस्ट थी हमारी एक बहुत ही प्यारे और डेली लिसनर की, जो है न्यूजली से नानी तागू जी। नानी तागू जी, आपने एक बेहद ही खूबसूरत और पुराने संगीत की फरमाइश की थी, तो आपके लिए और आपके पूरे परिवार के लिए पेश है फिल्म सावन को आने दो का टाइटल ट्रैक। इस गाने को सुनिए और अपनी सुबह को सुहाना बनाइए।

सच में सावन को आने दो, गाने की मिठास ही अलग है। नानी तागो जी, उम्मीद है आपको अपना गाना सुनकर मजा आया होगा। अब बढ़ते हैं हमारी अगली पेंडिंग रिक्वेस्ट की तरफ। और दोस्तों, इस मैसेज को पढ़ते वक्त मेरे दिल सच में खुशी से भर गया और मुझे अपनी किस्मत पर बड़ा नाज हुआ। ये फरमाइश आई है दुर्गेश नागनपुरी जी और उनके पूरे परिवार की तरफ से, जो हमारा ये प्रोग्राम सुन रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश से। यकीन मानिए, जब मैंने ये एड्रेस पढ़ा तो मुझे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। हमारे यहाँ ईटानगर से सैकड़ों मीलों दूर देश के बिल्कुल बीच में बैठे मध्य प्रदेश से कोई आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम को इतने प्यार से रोज सुनता है, ये हमारे लिए कितनी बड़ी और गर्व की बात है। जब अलग अलग स्टेट से इतने दूर दूर से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं तो हमारा हौसला और हमारी एनर्जी डबल हो जाती है। ये इस बात का सबूत है कि संगीत की कोई सीमा नहीं होती, कोई बॉर्डर नहीं होता। दुर्गेश जी, आपके पूरे परिवार को पूरे अरुणाचल प्रदेश की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल आपका

गाना नहीं बजा पाया था, उसके लिए दिल से सॉरी, लेकिन आज आपकी फरमाइश बिल्कुल हाजिर है। आपने फरमाया है फिल्म मस्ती का वो आइकॉनिक और दिलों को छू लेने वाला सैड रोमांटिक गाना, दिल दे दिया है जान तुम्हें देंगे। सुनिए मध्य प्रदेश के हमारे इस प्यारे परिवार के लिए ये खास पेशकश।

वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर आपका अपना शो रेडियो ऑन डिमांड। कल के दोस्तों का हिसाब किताब अभी पूरा हो गया है, अब वक्त हो चला है आज के नए मैसेजेस को खोलने का और देखने का कि आज हमारे श्रोताओं का दिल में सुनना के दिल में क्या सुनना चाहते हैं। तो आज की हमारी पहली फरमाइश आई है हमारी एक और बिल्कुल रेगुलर और डेली लिसनर की तरफ से, जो है लंखंगसम असम से तेंसन क्रोजी और उनका पूरा परिवार। तेंसन क्रोजी, आपका मैसेज हम तक पहुंच गया है और आपने जो गाना चुना है ना, वो 90s के संगीत का सबसे बड़ा किंग क्वीन एंथम है। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म दिल है कि मानता नहीं का टाइटल ट्रैक, ये एक ऐसा गाना है दोस्तों जो हर उस शख्स ने कभी ना कभी गुनगुनाया है जो प्यार में थोड़ा सा परेशान रहा है, क्योंकि ये दिल सच में बड़े अजीब नखरे दिखाता है, बिल्कुल नहीं मानता। तो टेंशन जी और उनके पूरे परिवार के साथ साथ हमारे जितने भी लिसनर्स इस समय गाड़ी चला रहे हैं, घर पर है या काम पर है, आप सभी के लिए पेश है ये बेहद सुरीले और निर्मल जज्बात।

दोस्तों आप सुन रहे हैं अरुण एफएम पर आपका अपना शो रेडियो ऑन डिमांड। पिटारो से मैसेजेस निकालने का सिलसिला यूं ही जारी है और आइए देखते हैं हमारे अगले कौन से दोस्त हैं जो हमारे साथ लाइन पर जुड़े हुए हैं अपनी फरमाइश के साथ।

तो अगला फरमाइश आया है जुलांग से आन्या नातुंग ने। आन्या आपका बहुत बहुत स्वागत है शो में। आपने जो गाना फरमाया है वो एक ऐसा ब्लॉकबस्टर आइटम नंबर है जिसने आते ही पूरे देश को झूमने पर मजबूर कर दिया है। अलीशा चिन्नोई, शंकर एहसान लोई और जावेद अली की आवाज में ऐश्वर्य राय, अमिताभ बच्चन और अभिषेक बच्चन का वो आइकॉनिक गाना कजरा रे फिल्म बंटी और बबली से।

वाकई में आपकी चॉइस बड़ी बहुत ही खूब है। इस गाने के लिरिक्स और इसका स्वैग आज भी संगीत के दीवानों के सबसे टॉप पर रहता है। तो अन्या के साथ साथ हमारे जितने भी श्रोता इस समय जुलांग में हैं और पूरे टानागढ़ में हैं और जो हमें सुन रहे हैं, आप सभी के लिए पेश है ये शानदार गाना। अपने कदम तिरकाने के लिए तैयार हो जाइए।

दोस्तों सच कहूं तो इस गाने का नशा आज भी बिल्कुल नया लगता है। आनिया उम्मीद है आपको अपनी फरमाइश सुनकर मजा आया होगा। चलिए दोस्तों इस हाई एनर्जी गाने के बाद अब रुख करते हैं एक ऐसी फरमाइश की तरफ जिसमें ढेर सारी हंसी खूबसूरती है, साड़ियां हैं और एक अलग ही दौर के ठहराव है। ये फरमाइश आई है हमारी एक और प्यारी लिसनर सुनिया की तरफ से जो हमें सुन रही है ईटानगर से। सुनिया ने फरमाया है संजय लीला बंसाली की ग्रैंड फिल्म बाजीराव मस्तानी का वो बेहद खूबसूरत और क्लासिकल टच वाला गाना दीवानी मस्तानी। श्रेया घोषाल की आवाज में गाया ये गाना जब भी बजता है ऐसा लगता है जैसे हम किसी शाही दरबार में पहुंच गए हैं। दीपिका पादुकोण का वो सुनहरी लिबास में पेशवा के दरबार में गाना और उनका वो अदाई सच में लाजवाब है। तो सुनिए आपकी फरमाइश पर और ईटानगर के हमारे सभी श्रोताओं के लिए पेश है ये बहुत ही नजाकत से भरा हुआ गीत। सुनिए और इस खूबसूरत संगीत में खो जाइएगा।

दोस्तों, आखिरी मैसेज हमें आई है देमसाइट नाहरलगुन से, निदोलुलु की तरफ से। निदोलुलु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने जो गाना चुना है ना, वो 90s के दौर का एक ऐसा रोमांटिक मास्टरपीस है जो हर आशिक का फेवरेट रहा है। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में फिल्म गुलाम का वो आइकॉनिक गाना आंखों से तूने क्या कह दिया। आमिर खान और रानी मुखर्जी पर फिल्माया गया ये गाना जब भी बजता है, मौसम में अलग ही रोमांस घुल जाता है। लुलू, आपकी चॉइस सच में कमाल की है। तो देमसाइट नाहरलगुन में बैठे हमारे सभी दोस्तों के लिए और पूरे अरुणाचल के फिल्म और संगीत प्रेमियों के लिए पेश है आज के इस सफर का ये आखिरी और बेहद हसीन नगमा। इस गाने को गुनगुनाइए और खो जाइए सुनहरी यादों में।

सच में दोस्तों उन दिनों के संगीत की बात ही कुछ और थी। हर एक लब्ज सीधे दिल में उतर जाता था। लुलु, उम्मीद है आपको और आपके आसपास के सभी दोस्तों को अपनी फरमाइश सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। और इसी खूबसूरत गाने के साथ दोस्तों आज के हमारे इस रेडियो ऑन डिमांड प्रोग्राम का सिलसिला और मैसेजेस का सफर अब यहीं पर समाप्त होता है। तो आपसे मुलाकात होगी कल बिल्कुल इसी समय और इसी स्टेशन पर, यानी आकाशवाणी ईटानगर अरुण एफएम पर। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाने गुनगुनाते रहिए।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। इसी के साथ अब हम आज के प्रातःकालीन प्रसारण सत्र के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद है रोजाना की तरह आज भी आपको हमारा ये संगीतमय सफर बेहद पसंद आया होगा। आज के इस पहले प्रसारण में मेरे साथ थे सूर्य तथा स्पीति में मौजूद मेरे सहयोगी प्रसारण निष्पादक कई रत्न और तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मा। दोस्तों कहीं मत जाएगा क्योंकि मनोरंजन का यह सिलसिला हमारे मध्य प्रसारण के साथ यूं ही जारी रहेगा अब से लेकर शाम 4:20 तक आरजे कनिक के साथ। तो बने रहिए अरुण एफएम के साथ। तो अब अपने आरजे याजू को दीजिए इजाजत। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है जहां होती है दिल से दिल की बात। आप सुनते रहिए अरुण एफएम, आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय और स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का स्पष्ट संदेश था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के सफल

0: यात्रा के बाद स्वदेश रवाना हो गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि आने वाले समय में भारत और फ्रांस की मित्रता और भी मजबूत होगी। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री मोदी के फ्रांस यात्रा के समापन पर हिंदी में विशेष विदाई वीडियो संदेश रिकॉर्ड किया है।
1: प्रिय मित्र नरेंद्र, मुझे बहुत खुशी हुई आपका निस एवियन पेरिस मैंने दौरे के लिए स्वागत करके फ्रांस और भारत की दोस्ती अमराए।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 में शुरू हुए इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित कर रही हैं। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन से छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस और दोहरी घाट ओनरीहार के वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु, गुजरात, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों की बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मणिपुर में खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों का व्यापक तलाश अभियान जारी है। इन अभियानों के दौरान सुरक्षा बलों ने विभिन्न भूमिगत संगठनों के 10 सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया और एक अपहृत व्यक्ति को सफलतापूर्वक रिहा किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने इस समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। अमेरिका ने ईरान के बंदरगाहों और तटीय क्षेत्रों में जहाजों के आवागमन पर लगाई गई नौसैनिक नाकाबंदी हटा ली है। हालांकि नाकाबंदी हटाए जाने के बावजूद समझौते के अनुपालन की निगरानी के लिए अमेरिकी नौसैनिक आसपास तैनात रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को उनके जन्मदिन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी श्री राहुल गांधी को जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाला पहला देश बन गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi has said that India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said, there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today, trust has become just as important alongside trade.
3: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai, jin par lambe samay tak bharosa kiya ja sake. और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
2: Mr. Modi further said the country is investing across sectors that will drive growth, innovation and opportunity for generations to come. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations Human Rights Council, UNHRC, and called the Indus Waters

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

यादगार होना चाहिए। और इस सफर को और भी हसीन बनाने के लिए हम लेकर आए हैं गीतों और बातों का सिलसिला। तो दोस्तों, थोड़ी देर पहले ही समाप्त हुई हमारी पहली प्रसारण सभा और उस सभा में आपका साथ निभाया आरजे या जोनाता ने। तो चलिए दोस्तों, अब नया वक्त है, नई आवाज है और नया अंदाज है। स्वागत है आप सभी श्रोताओं का दूसरी प्रसारण सभा में। और आपको बता दूं, इस सभा की मेजबानी कर रही हूं मैं, आपकी अपनी रेडियो साथी गिचिक कनिक।

आपको बता दूं, इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ है स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम फिल्मी लहर का।

नमस्कार दोस्तों, फिल्मी लहर के इस रंगीन सफर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गाने से जिसने रिलीज होते ही हर पार्टी, हर डांस फ्लोर और हर म्यूजिक चार्ट पर अपनी अलग पहचान बना ली थी। दोस्तों, ये गाना है फिल्म तीस मार खान से। साल 2010 में रिलीज हुई इस फिल्म में अक्षय कुमार, कैटरीना कैफ और अक्षय खन्ना नजर आए थे। फिल्म कॉमेडी, ड्रामा और एंटरटेनमेंट का जबरदस्त पैकेज थी। लेकिन दोस्तों, जिस चीज ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी वो था कैटरीना कैफ का धमाकेदार डांस नंबर शीला की जवानी। सुनिधि चौहान की जोशीली आवाज और विशाल शेखर के बेहतरीन संगीत से सजाया ये गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है जितना रिलीज के वक्त था। तो दोस्तों, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, मूड को डांस मोड में ले आइए और लुफ्त उठाइए इस सुपरहिट ट्रैक का। आइए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे गाने की जिसने कॉलेज लाइफ, दोस्ती और मस्ती को एक नए अंदाज में पेश किया। ये गाना है फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर से। साल 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉलीवुड को 3 नए सितारे दिए, आलिया भट्ट, वरुण धवन और सिद्धार्थ मल्होत्रा। दोस्तों करण जौहर के निर्देशन में बनी ये फिल्म इन तीनों कलाकारों की डेब्यूट फिल्म थी और आज ये तीनों बॉलीवुड के सबसे लोकप्रिय सितारों में शुमार हैं। दोस्तों गीत राधा एक ऐसा गाना है जो अपनी कैची धुन, यूथफुल एनर्जी और रंग बिरंगे विजुअल्स के लिए आज भी पसंद किया जाता है। विशाल शेखर के संगीत और श्रेया घोषाल, उदित नारायण, विशाल दत्तलानी और शेखर रवजानी की आवाजों ने इस गाने को और भी खास बना दिया है। तो दोस्तों तैयार हो जाइए थिरकने के लिए और सुनिए फिल्म स्टूडेंट ऑफ द ईयर का ये सुपरहिट सॉन्ग।

0: And that brings us to the end of today's program. Thank you for listening and being with us. This was Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम वेस्टर्न मेलोडीज पर आधारित पाश्चात्य संगीत यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 12 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें और बने रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
1: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के कार्यक्रम को संबोधित किया। इसके बाद राष्ट्रपति आज से ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में भी शामिल होंगी। उपराष्ट्र

राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे। श्री राधाकृष्णन की लद्दाख की ये पहली यात्रा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज बिहार का दौरा कर रहे हैं। वे पटना में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जाएंगे। श्री वैष्णव छपरा रेलवे स्टेशन में छपरा दिल्ली एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मऊ दिल्ली एक्सप्रेस अधोरी घाट ओनरीहार की वाराणसी तक विस्तारित रेल सेवा का भी उद्घाटन करेंगे। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 4 राज्यों तमिलनाडु गुजरात उत्तर प्रदेश और हरियाणा के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर दालों और तिलहनों के बड़े पैमाने पर खरीद को मंजूरी दे दी है। इन राज्यों में यह खरीद मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत की जाएगी। मिजोरम में 8,75,000 मतदाताओं का 95% से अधिक गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण पूरा कर लिया गया है। राज्य की संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी एंथेल रोथांगपुई ने बताया कि राज्य में कल तक 8,35,000 से अधिक मतदाताओं के गणना प्रपत्रों का डिजिटलीकरण हो चुका है। उन्होंने कहा कि राज्य के 11 जिलों में 100% डिजिटलीकरण हो गया है। इस बीच राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी के अनुरोध पर आयोग ने मिजोरम के लिए मसौदा मतदाता सूची के प्रकाशन की तिथि को पहले की 5 जुलाई से संशोधित करके 4 जुलाई कर दिया है। दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि भी 4 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। सरकार ने ऑनलाइन प्रसारित हो रहे एक फर्जी वीडियो का खंडन किया है, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को एक निवेश प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हुए गलत तरीके से दिखाया गया है। वीडियो में दावा किया गया है कि 22,000 रुपए की एकमुश्त जमा राशि से प्रतिदिन 80,000 रुपए तक का रिटर्न मिल सकता है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने स्पष्ट किया है कि यह वीडियो फर्जी है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI द्वारा बनाया गया है। भारत का LNG टैंकर दिशा हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद आज सुबह गुजरात के दाहेज बंदरगाह पर पहुंच गया। यह कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस LNG लेकर आया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया है। भारत ने समझौते को मौजूदा हालात के विपरीत बताते हुए कहा कि जो देश आतंकवाद को प्रायोजित करता रहा है वो सद्भावना और मित्रता पर आधारित सहयोग की अपेक्षा नहीं कर सकता। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world, addressing the Indian diaspora in Paris last night. Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
1: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है.
0: President Draupadi Murmu today attended a program marking International Sickle Cell Day in Omkareshwar, Madhya Pradesh today. The president, addressing the event, said the national mission was launched in 2023 and the state achieved the target ahead of schedule. She commended the state government for its significant achievement. She said it reflects the government's commitment to strengthening healthcare services and timely intervention for better healthcare outcomes.
2: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ. ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है. मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से

नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी के इस खास गजल कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, गजल यानी अल्फाज की वो नाजुक दुनिया जहां जज्बात सुरों का हाथ थाम कर दिल तक पहुंचते हैं। कभी मोहब्बत की मिठास, कभी जुदाई की कसक, तो कभी जिंदगी के अनकहे एहसास। गजल हर रंग को अपनी खूबसूरत अदायगी में समेट लेती है। दोस्तों, आज के सुरीले सफर में हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा गजलें जिनके बोल दिल को छू जाएंगे और जिनकी धुनें आपकी दिन को और भी यादगार बना देगी। तो आइए दोस्तों, चाय की चुस्कियों और सुकून भरे लम्हों के साथ गजलों की इस महफिल का आगाम करते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किची कनिक और आप सुन रहे हैं हमारा विशेष गजल कार्यक्रम। आइए दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हरिहरन का एक खूबसूरत गजल से। यूं ही बेसबाब ना फिरा करो।

0: जिसने अपनी नर्म और दिलकश अदायगी से लाखों दिलों को छुआ है। गजल गायकी की दुनिया में पंकज उदास का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है, में खास जगह रखती है। दोस्तों, इसके बोल और धुन
1: दोस्तों, आज मैं पहली बार गजल गायकी की दुनिया में एक नई चीज पेश कर रहा हूं, तजमीन। जी हाँ, वही घुंघरू टूट गए, वही गायक टूट गए लिखने वाले शायर जनाब खतिर शिफाई साहब की गजल के शेरों पर तजमीन करके उसको गीत का रूप दिया है जाने पहचाने शायर जनाब मुमताज राशिद ने।

दोस्तों, अभी आप इस गजल को सुन रहे थे जगजीत सिंह और अलका याग्निक की आवाजों में फिल्म तरकीब से। आइए दोस्तों, इसी के साथ ही कार्यक्रम गजल यही पर समाप्त होता है। आप हमारे साथ बने हुए हैं FM बैंड के 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। चलिए दोस्तों, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम गीतमाला का।

श्रोता दोस्तों, गीतमाला कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आपको बता दूं, ये कार्यक्रम समर्पित है हमारी फौजी भाइयों और बहनों के नाम। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं सुखविंदर सिंह, महालक्ष्मी अय्यर, विजय प्रकाश और ए आर रहमान की आवाजों में फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर से।

श्रोता दोस्तों, अभी आपने इस गीत को सुना लता मंगेशकर की आवाज में, और अगला गीत आप सुन पाएंगे हरिहरन की आवाज में फिल्म रोजा से।

का सामना, झुक सके का ना अब सरफरोशों का सर, चाहे हो खूनी तलवार का सामना, चाहे हो खूनी तलवार का

दोस्तों, अभी आपने इस गीत का आनंद लिया मोहम्मद रफी की आवाज में फिल्म शहीद से। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम गीतमाला पर और आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। इसी के साथ ही आइए अगला गीत सुनते हैं।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम गीतमाला यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ पलों में यानी 1 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वैश्विक अनिश्चितता और व्यवधान के बीच भारत विश्व के एक विश्वसनीय स्थायी साझेदार के रूप में उभर रहा है। फ्रांस में कल रात भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि एक समय था जब देशों के बीच संबंध केवल व्यापार पर आधारित होते थे, लेकिन आज व्यापार के साथ साथ विश्वास भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश उन सभी क्षेत्रों में निवेश कर रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए विकास, नवाचार और अवसर प्रदान करेंगे।
3: आज का भारत भविष्य का पूरा इकोसिस्टम बना रहा है। भारत एक साथ हर उस क्षेत्र में निवेश कर रहा है जो आने वाले दशकों की दिशा तय करेगा।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि G7 शिखर सम्मेलन में भारत का संदेश स्पष्ट था कि वैश्विक शासन तभी प्रभावी होगा जब वो समावेशी होगा। प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2,400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने बताया कि इस योजना से देशभर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज मध्य प्रदेश के खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कार्यक्रम स्थल पर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
4: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9,000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
2: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन

0: मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। अपने दौरे के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा के रायरंगपुर जाएंगी, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मेकाडातु परियोजना मौजूदा कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन करती है और कावेरी जल पर तमिलनाडु के अधिकारों का हनन करेगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट यूजी की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। एनटीए ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की पहली सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग था, है और हमेशा रहेगा। उन्होंने पाकिस्तान पर घरेलू चुनौतियों और आतंकवाद को निरंतर समर्थन देने से ध्यान भटकाने के लिए दुष्प्रचार का आरोप लगाया। आज राष्ट्रीय पठन दिवस है। ये दिन प्रतिवर्ष केरलम में पुस्तकालय आंदोलन के जनक पुथुवाइल नारायण पणिकर की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। वर्ष 2017 में प्रधानमंत्री मोदी ने कोच्चि यात्रा के दौरान राष्ट्रीय पठन दिवस और पठन माह से जुड़े कार्यक्रमों का शुभारंभ किया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said India is emerging as a trusted partner to the world. Addressing the Indian diaspora in Paris last night, Mr. Modi said there was a time when relations between countries were determined solely by trade, but today trust has become just as important alongside trade.
2: Har desh reliable supply chain chahta hai. Har desh stable partnership chahta hai. Har desh aise saathiyon ki talash mein hai jin par लंबे समय तक भरोसा किया जा सके और ऐसे समय में भारत विश्व में एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में उभर रहा है।
1: President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The President was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today.
3: एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। ये संतोष की बात है कि वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गए थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। मुझे बताया गया है कि 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है।
1: During the program, President Murmu visited a special exhibition set up under the National Sickle Cell Anemia Elimination Mission 2047. In the next phase of her visit, the President will travel to Rairangpur in Odisha, where she is scheduled to inaugurate several development projects. Prime Minister Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. This incentive has supported the creation of 15 lakh employment opportunities across the country. India has accused Pakistan of using propaganda to divert attention from its domestic

दोस्तों आप सुन रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60 से 80s तक, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उस सुनहरे दौर में जब गीत सिर्फ सुने नहीं जाते थे बल्कि महसूस किए जाते थे। जी हाँ दोस्तों, वो दौर जब शब्दों में शायरी थी, धुनों में सादगी थी और आवाजों में एक ऐसा जादू था जो आज भी दिलों को छू जाता है। 60s और 80s के दशक ने हिंदी सिनेमा को ऐसे अनमोल नगमे दिए जो समय की कसौटी पर आज भी करे उतरते हैं। तो आइए इस सुरीले सफर की शुरुआत करते हैं एक ऐसे गीत से जो अदाओं, नजाकत और मोहब्बत की खूबसूरत तस्वीर पेश करता है। दोस्तों, फिल्म उमराऊ जान का ये एक बहुत ही खूबसूरत गीत, जिसे अपनी मखमली आवाज से सजाया था आशा भोसले जी ने, आइए पेश है इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों है। आइए सुनते हैं इस गीत को।

दोस्तों, पुराने गीतों की यही तो खासियत है कि इनके बोल और धुने वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। और अब बारी है एक ऐसे गीत की जिसमें प्यार की सच्चाई और रिश्तों की गहराई को बेहद सरल लेकिन दिल छू लेने वाले अंदाज में पेश किया गया है।

फिल्म आशा का ये लोकप्रिय गीत अपने मधुर संगीत और भावपूर्ण बोलों के लिए आज भी श्रोताओं की पसंद बना हुआ है। आइए फिल्म आशा का एक बेहद सा खूबसूरत गीत सुनते हैं।

दोस्तों, आपको एक बार फिर से बताना चाहेंगे कि आप हमारे साथ बने हुए हैं कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s टू 80s तक पर, और आप इन गीतों का आनंद ले रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल के बात। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती शायद यही है कि हमें नहीं पता अगला पल क्या लेकर आएगा। कभी खुशियों की दस्तक तो कभी यादों की कोई अनकही कहानी। अब बेस है 60s के दशक का एक बेहद खूबसूरत और दार्शनिक गीत, जिसके बोल आज भी सुनने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती है। फिल्म वक्त का ये कालजाई नगमा अपनी गहरी सोच और मधुर धुन के लिए खास पहचान रखता है। जी हाँ दोस्तों, आशा भोसले की जादुई आवाज में सुनिए आगे भी जाने न तू।

0: अपने जाओ।
1: ठहरो मीना, मैं खाना लेके आता हूँ, दोनों इकट्ठे खाएंगे। हाँ
2: चिराग सेठ, मेरी माँ सख्त बीमार है, डॉक्टर के पास ले जाना है, गाड़ी ले जा सकता हूँ?
3: हाँ ले जाओ ले जाओ।
2: थैंक यू सर।

दोस्तों इसी के साथ ही हिंदी क्लासिक म्यूजिक 60s टू 80s का ये खूबसूरत सफर यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है कि इन सदाबहार नगमों ने आपकी यादों को ताजा किया होगा और आपके इस पल को और भी सुरीला बना दिया होगा। आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। चलिए दोस्तों, अब वक्त है हिंदी फिल्मी गीतों का, जहां आपका इंतजार कर रहे हैं कुछ और बेहतरीन और मनपसंद नगमे। सुनते रहे अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। आइए पहला गीत सुनते हैं एसपी बालासुब्रमण्यम की आवाजों में फिल्म हम आपके है कौन से।

दोस्तों इस गीत के साथ ही कार्यक्रम हिंदी फिल्म सॉन्ग्स यहीं पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद यानी 2 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र द्वारा प्रसारित मिड डे न्यूज। 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: trading around 1% lower in afternoon trade today. The Sensex shed 849 points to 76,561, while the Nifty dropped 228 points to 23,940 when reports last came in. In the broader market, on the National Stock Exchange, mid-cap 100 index slipped 0.2%, while small-cap 100 index was trading 0.1% up a short while ago. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi concludes successful five-day historic visit to France and Slovakia. Prime Minister Modi to disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Vikasit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. President Draupadi Murmu says India on track to eliminate sickle cell disease well before 2047 target. Delhi High Court upholds centre's temporary curbs on Telegram ahead of NEET UG 2026 re-examination. India calls Indus Waters Treaty outdated at UN Human Rights Council, also slams Pakistan for sponsoring terrorism. And Mexico becomes first team to qualify for FIFA World Cup round of 32, defeating South Korea 1-0. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की पांच दिन के सफल यात्रा संपन्न श्री मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा भारत 2047 के लक्ष्य से पहले सिकल सेल रोग को समाप्त करने की राह पर अग्रसर दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया पाकिस्तान की आतंकवाद को प्रायोजित करने के लिए निंदा की और दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 32 में प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई है फ्रांस दौरे के दौरान उन्होंने एवियन में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान सहित अन्य नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भी हिस्सा लिया इससे पहले श्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर नीस फ्रांस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया जिसमें भारत फ्रांस और अन्य देशों के प्रमुख स्टार्टअप नवप्रवर्तक और वेंचर कैपिटल फंड एक साथ आए स्लोवाकिया दौरे के दौरान श्री मोदी ने ब्रातिस्लावा स्थित राष्ट्रपति भवन में स्लोवाकिया गणराज्य के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात की प्रधानमंत्री मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं उन्होंने बताया कि इस योजना से देश भर में 15 लाख रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज दुनिया भारत में निवेश कर रही है और उससे जुड़ रही है माईगोव इंडिया के एक सोशल मीडिया पोस्ट को साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश एक बेहतर ग्रह के निर्माण में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर है प्रधानमंत्री ने विश्व के साथ भारत के संबंधों को और अधिक प्रभावी बनाने में सहयोग देने के लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों को धन्यवाद दिया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत 2047 के राष्ट्रीय लक्ष्य से काफी पहले ही सिकल सेल रोग का उन्मूलन कर लेगा उन्होंने इस आनुवांशिक रक्त विकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के बीच समन्वित प्रयासों का आह्वान किया। राष्ट्रपति आज विश्व सिकल सेल दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर राज्यपाल मंगूभाई पटेल और मुख्यमंत्री मोहन यादव भी उपस्थित थे।

0: राष्ट्रपति मुर्मू ने सभी राज्य सरकारों और अधिकारियों से अपील की कि वे इस बीमारी को हल्के में न लें, क्योंकि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में फैलती है। उन्होंने कहा कि इसका पूर्ण उन्मूलन करने के प्रयास किए जाने चाहिए, क्योंकि इसका इलाज संभव है।
1: पहला, बड़े स्तर पर जागरूकता फैलाना और विवाह पूर्व जेनेटिक काउंसलिंग करना है। मुझे लगता है ये चीज को बेखूबी से मध्य प्रदेश में कर रहा है। दूसरा, व्यापक स्क्रीनिंग करके समय रहते रोग की पहचान करना है। तीसरे, प्रबंधन की समग्रता को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य देखभाल की निरंतरता बनाए रखना है।
0: राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत राज्य सरकार की उपलब्धियों की सराहना की।
1: राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के अंतर्गत मध्य प्रदेश ने जो बहुआयामी उपलब्धियां हासिल की है, इसके लिए मैं राज्य सरकार की सराहना करती हूँ। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ करते समय जो अनेक बड़े लक्ष्य देश के सामने रखा गया थे, उनमें से स्क्रीनिंग का लक्ष्य समय से पहले ही पूरा हो गया है। 9000 शिशुओं से लेकर 40 वर्षों की आयु तक के 7 करोड़ से ज्यादा लोगों की स्क्रीनिंग का लक्ष्य पूरा हो चुका है।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन 2047 के तहत स्थापित विशेष प्रदर्शनी का दौरा किया। प्रदर्शनी में सिकल सेल रोग की रोकथाम, निदान और उपचार से संबंधित विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से अपने गृह राज्य ओडिशा के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे आज दोपहर मयूरभंज जिले के दांडबोस हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवा, बुनियादी ढांचे और सार्वजनिक सेवाओं को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेंगी। वे आज शाम रायरंगपुर में स्वास्थ्य सेवा, पेयजल और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे से संबंधित महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी और उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगी।
2: रायरंगपुर में राष्ट्रपति एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक बड़े स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगी और एम्स सैटेलाइट सेंटर को जनता को समर्पित करेंगी। वो एक बड़े इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जल पूर्ति प्रोजेक्ट को भी समर्पित करेंगी, जिससे कुसुमी ब्लॉक के तहत खनन से प्रभावित 113 गाँव में सुरक्षित पेयजल की सुविधा सुनिश्चित होगी। राष्ट्रपति हट्टाभद्रा में ब्रह्मा कुमारी के मातृशक्ति भवन, एक स्पेशल सर्किट हाउस और नए बने रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति मुर्मू अपने जन्मदिन के मौके पर अपने गांव पहाड़पुर जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रायरंगपुर में राष्ट्रपति मुर्मू के साथ शामिल होंगे। दोनों नेता एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और विकास से जुड़ी कई योजनाओं की शुरुआत करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, रायरंगपुर।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहेरा तथा हो जहेरा के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के अंतर्गत देश भर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दुनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगाए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक

0: नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की यह प्रणाली परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृह मंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल से एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है।
1: हमारा लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, अपराधी कितना भी चतुर हो वह कानून और विज्ञान की संयुक्त शक्ति के सामने बचना नहीं चाहिए। वैज्ञानिक जांच, समयबद्ध अभियोजन और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, इसका उपयोग कर हमने क्राइम कंट्रोल करना है। क्राइम करने से दंड मिलता है, ये भाव जब खड़ा होता है तो अपराध को रोकने के लिए बहुत बड़ी सफलता मिलती है।
0: इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने STPI को Tier 2, Tier 3 सिटीज में ले जाने का निर्णय लिया था कुछ वर्षों पहले, तो आज यहाँ पर पटना में, साथ ही भागलपुर और दरभंगा में भी STPI जो खुले हैं उनके माध्यम से स्टार्टअप्स को कैसे सहयोग मिले, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज हम सब साथ बैठे, चर्चा हुई, बहुत अच्छे सुझाव आए। तो आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, IT इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स का इकोसिस्टम, AI के माध्यम से सर्विसेज बनाना, इन सब के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज बिहार में क्रिएट होगी।
0: दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली नीट UG की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस करिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक नीट UG की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि NTA से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर लें। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेगाडातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 62वें सत्र में भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान की कड़ी आलोचना करते हुए सिंधु जल संधि को पुरानी और वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। सत्र के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है।
3: Our position on Indus Water Treaty is well known.
4: सिंधु जल संधि पर भारत का रुख सर्वविदित है। जो देश अपनी नीति के तौर पर आतंकवाद को बढ़ावा देता है वह सद्भावना और दोस्ती पर आधारित सहयोग के फायदों की मांग करता रहे। यह समझौता अब पुराना हो चुका है। कोई भी तकनीकी व्यवस्था समय के साथ स्थिर नहीं रह सकती जबकि उसके आसपास की दुनिया बदल रही हो। 1960 में हुए समझौते को हमेशा के लिए मिला हुआ अधिकार नहीं माना जा सकता जिस पर कोई जवाबदेही न हो, जो आज की हकीकत से अलग हो और पिछले 6 दशकों में आए बड़े बदलावों से अछूता रहा हो।
3: Untouched by the profound changes of the past 6 decades.
0: भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को

को समाप्त करने की राह पर अग्रसर। दिल्ली उच्च न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा से पहले टेलीग्राम पर केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को बरकरार रखा। भारत ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में सिंधु जल संधि को वर्तमान परिस्थितियों के प्रतिकूल बताया। पाकिस्तान के आतंकवाद को प्रायोजित करने की निंदा की। आज दक्षिण कोरिया को 1-0 से हराकर मेक्सिको विश्व कप पर फीफा के राउंड ऑफ 32 के लिए प्रवेश करने वाली पहली टीम बनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

श्रोता दोस्तों, अभी आप बारी बारी से सुन रहे थे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज और दोपहर समाचार। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम हिट्स ऑफ 90s का।

नमस्कार दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं हिट्स अप 90s कार्यक्रम, जहां सजती है 90s के दशक की वो हसीन महफिल जिसके गीत आज भी दिल की धड़कनों में बसते हैं। दोस्तों, ये वो दौर था जब मेलोडी का जादू था, कैसेट्स और वॉकमैन का जमाना था और हर गाना अपनी एक अलग कहानी कहता था। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए यादों के उस सफर के लिए जहां मिलेंगे कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और सोनू निगम जैसे सुरों के सितारों के बेहतरीन नगमे। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो दोस्त किची कनिक और अगले कुछ मिनट हम रहने वाले हैं साथ हिट्स ऑफ 90s कार्यक्रम के साथ। चलिए इसी के साथ ही आपको इस कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं, उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति के आवाजों में फिल्म मोहरा से।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि 90s का दौर सिर्फ रोमांटिक गीतों का ही नहीं बल्कि मस्ती और एनर्जी से भरे गाने भी लेकर आया था और अब जो गीत हम सुनने जा रहे हैं उसने अपनी जबरदस्त बीट और अलग अंदाज से हर किसी को थिरकने पर मजबूर कर दिया था। फिल्म विजय पथ का ये सुपरहिट गाना है जिसे अपनी दिलकश आवाज से सजाया है अलीसा चिनाई ने, तो तैयार हो जाइए थोड़ी सी मस्ती और ढेर सारी एनर्जी के लिए। आइए सुनते हैं इस गीत को।

स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन खोंग इलेक्टोरल रोल नई डीसी कॉन्फ्रेंस हॉल नमसाई वन मंगा मई मीटिंग नई तंगमा का नमहो वन मंगा मई डिपार्टमेंट कनलोंग लेम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन लोकूप तंग नि जीडी खनसम मई माइट वाई खाउ स्टेट लेवल वर्कशॉप पोंग लोई इनहेंसिंग डिजिटल गवर्नेंस न उमंग माइ स्कीम खनसम डिजी लॉकर न्याटी बैंक्वेट हॉल इटानगर मई हिट ऑर्गेनाइज कन मा का फोंग पिन मा फीफा वर्ल्ड कप मेनाय मंग मेक्सिको खाउ लुक मंग साउथ कोरिया लुक सेन लंग पी कन का तु लिन मुटुंग अन मनाय कचम नियाती गौडाला जारा स्टेडियम मई लिन कन का मंग मेक्सिको खाउ सोंगो पाथामा मंग हांगचा क्वालिफाय नॉक आउट राउंड मई पिन मा नमहो खनसम चा हांग मने काउ खाम ते खाइनाय नम हो मेने मु उइ खाम मै लुक नांग चन आवा मन ची मै हने थोम ते खा

ईटानगर केंद्र से प्रसारित न्यूज हेडलाइंस मिशमी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और थाई कमती श्रोताओं का कार्यक्रम। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट का।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट, जहां हम लेकर आते हैं बॉलीवुड की दुनिया से जुड़ी हर खास खबर, हर नई हलचल और हर वो बात जो फिल्मी दुनिया को बनाती है और भी दिलचस्प। मैं हूं आपकी अपनी रेडियो साथी गीची कनिक और अगले कुछ मिनटों तक हम साथ मिलकर करेंगे बॉलीवुड की रंगीन गलियों का एक खूबसूरत सफर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसे कलाकार से जो अपनी कॉमेडी से लोगों के चेहरे पर मुस्कान ला देते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सुनील ग्रोवर की। दोस्तों, सुनील ग्रोवर का नाम आते ही याद आते हैं उनके कई यादगार कैरेक्टर्स और उनका बेहतरीन कॉमिक टाइमिंग, चाहे गुटी हो, डॉक्टर मशहूर गुलाटी हो या फिर उनके अलग अलग कॉमिक अवतार्स। दोस्तों, सुनील ने हर बार दर्शकों का दिल जीता है, लेकिन इस बार सुनील किसी कॉमेडी एक्ट या टेलीविजन अपीयरेंस की वजह से नहीं बल्कि अपनी सादगी की वजह से चर्चा में है। हाल ही में सुनील ग्रोवर ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में वो गंगा नदी के किनारे आराम से लेटे हुए नजर आए और कुछ देर बाद सुकून भरी नींद में खो गए। न कोई ग्लैमर, न कोई शोप, बस प्रकृति के बीच एक आम इंसान की तरह सुकून के पल। दोस्तों, इस वीडियो को देखकर फैंस काफी इमोशनल हो गए और उन्होंने सुनील की तारीफों के फूल बांध दिए। कई लोगों ने कमेंट्स में लिखा कि इतनी पॉपुलैरिटी और सक्सेस के बाद भी सुनील ग्रोवर की सिंप्लिसिटी वाकई प्रेरणा देने वाली है। आज के दौर में जब लोग सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल दिखाने में व्यस्त रहते हैं, वही सुनील का ये अंदाज से लोगों को काफी पसंद आ रहा है। दोस्तों, जिंदगी की असली खुशी शायद ऐसी में छुपी है कि हम कभी कभी बागडोर से दूर होकर अपने लिए भी कुछ पल निकाल सके, और सुनील ग्रोवर का ये वीडियो हमें वही याद दिलाता है।

दोस्तों अब बढ़ते हैं बॉलीवुड के सबसे गर्म खबर की तरफ और वो है कॉकटेल 2 फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के बाद से ही सोशल मीडिया पर इसकी काफी चर्चा हो रही है। फैंस लगातार कहानी के ट्विस्ट और लव ट्रायंगल्स को लेकर अपने अपने अंदाज लगा रहे थे। आज जब फिल्म थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है तो ऑडियंस के रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं। फिल्म में शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। तीन बड़े सितारे, एक रोमांटिक कहानी और खूबसूरत लोकेशंस, ये सब देखकर दर्शकों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। दोस्तों ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फिल्म को लेकर मिक्स रेस्पॉन्स देखने को मिल रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म के इमोशनल मोमेंट्स दिल को छू जाते हैं और सिनेमाटोग्राफी काफी शानदार है। कई व्यूवर्स ने शाहिद कपूर के परफॉर्मेंस की भी तारीफ की है। वहीं कुछ दर्शकों का मानना है कि फिल्म की स्क्रीन प्ले और कहानी में और मजबूती हो सकती है। कुछ लोगों ने इसे इमोशनल कहा तो कुछ ने इसे थोड़ा कंफ्यूजिंग और अनइवन बताया। लेकिन दोस्तों सिनेमा की खूबसूरती भी यही है, हर दर्शक का नजरिया अलग होता है और हर फिल्म अपनी एक अलग पहचान लेकर आती है। और दोस्तों एक और खास बात ये है कि पेंडेमिक के बाद रोमांटिक जेनरे की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर उतना कमाल नहीं

दिखा पाई है जितना पहले दिखाया करती थी। ऐसे में कॉकटेल 2 को बॉलीवुड के लिए एक इम्पोर्टेंट फिल्म माना जा रहा है। इंडस्ट्री और फैंस दोनों की नजरें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर टिकी हुई है। इसीलिए दोस्तों अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में कॉकटेल 2 ऑडियंस के दिलों में कितनी गहरी जगह बना पाती है और क्या ये रोमांटिक सिनेमा को फिर से एक नई पहचान दे पाएगी।

आइए दोस्तों बात करते हैं एक ऐसे एक्ट्रेस की जिन्होंने अपनी नेचुरल एक्टिंग और चार्मिंग पर्सनालिटी से लाखों दिलों को अपने दीवाना बना रखा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं श्रद्धा कपूर की। पिछले साल स्ट्रीट 2 में अपनी दमदार परफॉर्मेंस के बाद श्रद्धा कपूर एक बार फिर बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। उनकी अपकमिंग फिल्म ईटा को लेकर अभी से काफी एक्साइटमेंट बनी हुई है। दोस्तों फिल्म का टीजर हाल ही में सिनेमाज में रिलीज किया गया और देखते ही देखते उसकी चर्चा सोशल मीडिया पर शुरू हो गई है। ये फिल्म महाराष्ट्र की प्रसिद्ध लावणी कलाकार विताबाई भाऊमंग नारायण गांवकर के जीवन पर आधारित बताई जा रही है। टीजर में श्रद्धा की झलक भले ही कुछ पलों के लिए नजर आई हो, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस और स्क्रीन प्रेजेंस ने फैंस को काफी प्रभावित किया है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स उनकी तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि ये फिल्म श्रद्धा के करियर की एक और यादगार फिल्म साबित हो सकती है। बायोग्राफिकल फिल्म हमेशा से ऑडियंस को पसंद आती रहती है, क्योंकि इनमें सिर्फ मनोरंजन ही नहीं बल्कि इतिहास और संघर्ष की कहानियां भी देखने को मिलती है। इसी वजह से ईटा को लेकर दर्शकों की उत्सुकता और भी बढ़ गई है। तो दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में रोज नए सपने जन्म लेते हैं, नए रिकॉर्ड्स बनते हैं और नए सितारे चमकते हैं। कभी किसी एक्टर की सादगी दिल जीत लेती है तो कभी किसी फिल्म का टीजर ऑडियंस को उत्साहित कर देता है। तो दोस्तों, फिल्मों को सफर चलता रहेगा, गीतों की महफिल सजती रहेगी और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि मुस्कुराहट ही जिंदगी की सबसे खूबसूरत आदत है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ ही आपको सुनवाते हैं एक प्यार भरा नगमा।

दोस्तों इसी के साथ ही कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट यही पर समाप्त होता है। आपको बता दूं अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे वांगचो बोली में समाचार। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांगचो बोली में समाचार। वांगचो श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं, आप हमारे साथ बने हुए हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल के बात। इसी के साथ दोस्तों, चलिए आपको सुनवाते हैं कुछ हिंदी फिल्मी नगमों को। पहला गीत आप सुन पाएंगे फिल्म सन ऑफ सरदार से राहत फतेह अली खान की आवाज में।
1: बिछड़ के तुझसे अब मुझे मरना है, ये तजुर्बा इसी जिंदगी में करना है।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, अब से कुछ ही देर बाद आप सुन पाएंगे ईडूमिश में बोली में समाचार। उसके बाद हम लौटेंगे और कंटिन्यू करेंगे हमारे हिंदी फिल्मी गीतों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

0: श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुना ईदू मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है। लीजिए, अब पेश है ईदू मिशमी श्रोताओं का कार्यक्रम।
1: ऐचा आकाशवाणी ईटानगर थाला पुचे जो हलो खिनी मृत्यु डुएली नि एतने से ईद मिशमी आहला के जी दरगालंबो तारों का सर लाख ऐसा मा इमो नंबर है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में ऐतानी मैं दिल्ली में ने पीएम विकसित भारत रोजगार योजना को कुमार ने ऐसा करने दोने मौका पी करो पहुंची अभी बहुत आने यूनियन लेबर दोने एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉक्टर मानसुख मांडविया में ला होगा पीएमबीबी बीआरवाई स्कीम को कुमार के का एक एस्टेब्लिशमेंट में मचे 80% जया है या को लंबा ला होगा महो आ स्कीम में किया में बुनी हो ने एजर ब्राहो में पाऊं सिगाई बहुत आने डॉक्टर मंडविया में ला हो।

Va. Arunachal Pradesh Public Service Commission APPSC mem akua penga unji khin jojina ne Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General Retired KT Parnaik mem bune Itanagar chi Lok Bhavan mane APPSC Chairman Professor Pradeep Ling Phago Chorga Maho lagane imu kajya me exam ma akua penga pra zuya chi service gabane amu kejina lagada ahoga APPSC mem imu kisa me uko ge gaji mi unji ki joji na ne governor me la ne commission me ene chi jota techno anji chi pe a joni ji na la da a hoga APPSC member alam ruma tadar me pung bage colonel retired coast tari donem rojita ba ai donem APPSC secretary za p pri tarsni atula professor ling phamen inu ejakya anyo manga anyo tar ma chi no chi Annual report azopo governor giha bada aoga deputy chief minister chona men me buni amba puji rugami thobondo chi po meeting chi nagama environment done forest minister wangki lawang urban development done land management minister balo raja idone chief secretary manish kumar gupta me giga bada na hoga siyomi district machi tatwatiko मैं बीकेबी आज त्यो छि पो अरुणाचल प्रदेश गभर्नमेन्ट मे बीकेबी अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट गो एमओयू अनबा तिगा बदा ने एजुकेशन मिनिस्टर पीडी सोना मे ला होगा ने मैं बीकेबी हे तातो आतिको छि गभर्नमेन्ट सेकेन्डरी स्कूल मा आखगाव दा ला होगा होस्टल आखा ओगाय बवे आ बीकेबी मे जो ना चोखगा सीएमए डिस्ट्रिक्ट मा छि इमो जो ना असो मतांदो आरआर सदा नगाचे नामसाई डिस्ट्रिक्ट माचे एसआर मा जया ब्लॉक लेवल ऑफिसर दिया लो रंबो है बुनी नामसाई ते कोचे डीसी ऑफिस माने डीसी दोने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर दोने इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर या राजा लंबो में एसआर मान जो वो चीपो ट्रेनिंग आएगा लदा ला होगा बोर्ड आज अपो प्रा अखाओ के बने बियाला रंबो में प्रा अमूजो अरुजी ना ने आजारों पर मैं लाते का बता आओगा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में जे आईटी दोने कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में नी जीडी दोने मीट वाई गो आओगा गने बुनी ईटानगर में जे बैंकट हॉल में उमंग माय स्कीम दोने डिजी लॉकर चिपवा स्टेट लेवल वर्कशॉप आखा गने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चे आ स्कीम तो ला जो ने वाची पुआ ची जगा ला दा ला होगा ऐसा हो न्यूजीलैंड माने FYH वुमेन्स नेशन कप आखगा मा इंडिया मा ची याकू हॉकी टीम में पूल एल माने यूरोगोए है कासो कानी गोल माने अनेगा बदा होगा इंडिया के बने है दीपिका में गोल कानी हाँ बा महो दीपिका सोरेन में गोल के हाँ आई तो नेम योरगोए का बना है चियारा अपिनिनो ने मनोला बिलार में गोल किया हगा बता होगा एवं आज फीफा वर्ल्ड कप मा कनाडा में कतर है ताहोजर गोल माने अनेगा बमहो स्विट्जरलैंड में बोस्निया हर्जेगोविना कापी खे गोल माने ऐतो ने मेक्सिको में साउथ कोरिया है गोल के माने अनेगा बता होगा अमहो मेक्सिको में एहेंदो प्री क्वार्टर फाइनल मा खिगा बदा आहोगा अबु नियामा अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड ने मोरको मोरको ब्राजील ने हेती तुर्की ने पैराग्वे ऐदो ने नीदरलैंड ने स्वीडन एबगा मैच खांदे गदा ला होगा एतनिची इदु मिसमी आहो अलिमाओ दबाए एचा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ नाली इद मिसमी प्रोग्राम मा एचमता आशे अहोसो खियामा हो एतनि हेंदो सिविल लिंग चाश हाजी

इडुमिश्मी बोली में समाचार। इडुमिश्मी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। आपको बता दूं आप हमारे साथ बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। इसी के साथ ही चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं हमारे हिंदी फिल्मी गीतों को। और अब जो गीत आप सुनने जा रहे हैं उस गीत को गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने। फिल्म लावारिस का ये गीत आइए सुनते हैं।

दोस्तों, इसी के साथ ही आज का हमारा दूसरा प्रसारण सभा यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर केंद्र के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। उम्मीद करते हैं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आप सबको बेहद पसंद आए होंगे। श्रोताओं, आपसे कुछ ही देर बाद यानी 4:20 पर आप सुन पाएंगे तांगसा बोली में समाचार। जाते जाते आपको बताना चाहेंगे कि आपके दिन को और भी खुशनुमा बनाने के लिए हमारी तीसरी प्रसारण सभा में आपके साथ जुड़ेगी आपकी अपनी आरजे सुलोकना। तो अब आप मुझे यानी आपकी रेडियो साथी गिजी कनिक और स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद तमाम सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी डोले तथा तकनीकी अभियंता अमित कुमार सक्सेना को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: रोजगार योजना
1: इतनी की। अरे ये दुटा हे रो रको होय बो होय बो मय एकटा तु नहाय गम पालो
0: हेरो आकाशवाणी एटानगर डिब्रुगढ मसुसा दुबा रामंगा जोंजिलिंग रासत का उत्तरी पांग हजनेरा क्रोक्रो पांग आरो रंगजा बले बई खुमिनि थोर यामसो तांसा प्रोग्राम तफंग रे मसु रंगजा रुंगलांग रो क्वांग कोन का मामाई रो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रो प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जाखुंग 2400 करोड़ ngân प मसुसा न्यू दिल्ली ना तफु कुची मोरो आचुंग सरकारी वांग लेबर ने एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया रफांत मनपा आवाज लिंग मसो प्रधान मंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जाखुंग नंग लाख क्रोक्सा रूम अपात कमसोमन प थयोप त प्रवांग कुसुमसे पर्सेंट प जचिंग मई जांग त मोरो मिनिस्टर रफान द आरो सरकारी साकुरी काम अफंग लाख लाब्र जेराव जेचा हेंग र इंस्टॉलमेंट अनै लम हजार सर बंगा अतांग नन लाखची मोरो मिनिस्टर रफान तनांग इरे प्रोग्राम बलांग नंग लाख से बंगा अपात मई म इंसेंटिव ngân प डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कौलम म कुची मोरो त परम इर प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना र साकुरी काम तखोंग जम अचेनमान बिजनेसमैन मयंग म होहाई कुरुंगोमन मिनिस्टर रफांत अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन चेयरमैन प्रोफेसर प्रदीप लिंगफा प मनैसा ईटानगर नांग लोक भवन नांग अरुणाचल प्रदेश गवर्नर के टी पटनायक जम रमरौ रे पांग हजार नैराख्र बंगा नैख्रख्रो पांग का कमीशन वन एनुअल रिपोर्ट प कुद चेयरमैन प गवर्नर जम रम तनांग कमीशन मेंबर सेंग दब अतोंग जंग त पर जो कमीशन र पांग हजार नैराख्र बंगा पांग नैख्रख्रो पांग तुंग नांग एग्जामिनेशन स्टाम त तुंग त मान नै रिक्रूटमेंट रिकमेंडेशन स्टाम कुरी त काम मान रा पर जो अरेंग ऑब्जर्वेशन स्टाम कुरी त मान नांग म आरो बलि बाय काम वांग सुम त मान प चेयरमैन र गवर्नर म फान कु त पर जो स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स वर्क प फ्रेमवर्क प त मान काम नांग अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ए पी पी एस सी वन प आरंग कयांग र प्रखा म कमीशन र स्टैंडर्ड प नुंगदा आरंग मरो गवर्नर र कमीशन म रोक त परिजु गवर्नर रंगो कमीशन र पन मंग प सेंग रंग रा रंगो रोक त नांग पब्लिक सर्विस म अतग अतग नै अरिन मई दै थागरो रे सिंगमुंग मई रवु प तरतुंग रंग रा रंगो मन रोक त पुरसा मीटिंग नंग गवर्नर र एग्जामिनेशन ताम ने रिक्रूटमेंट प्रोसेस कामवांग प अहम तयंग रंग रा रंगो मन कमीशन म रोक त अरुणाचल प्रदेश डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर चाउना मेन र फॉरेस्ट एरिया एसुस ताम प तथुम म मोरो लमलु कमुंग नंग रफान म नै परिजु लैंड मैनेजमेंट म हान र प्रप रायकुम कमुंग नंग रफान म मोरो मनैसा अरुणाचल प्रदेश फॉरेस्ट नै एनवायरमेंट मिनिस्टर वांकी लोवांग नै अर्बन डेवलपमेंट नै लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर बालू राजारा चीफ सेक्रेटरी मनीष कुमार सियांग प खोक तंगो फान त परजु मीटिंग नंग प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कोन तखोंग रंग मोरो नै डिपार्टमेंट ताम तुंका नंग रोम लो रे काम सोम प सेंग लिन म अरियंग सताई रो रफान त अरुणाचल प्रदेश सरकारी रे नै बेबी कनंदा केंद्र विद्यालय अरुणाचल प्रदेश ट्रस्ट श्री योमी डिस्ट्रिक्ट नंग तातो हा नंग बेबी कनंदा केंद्र विद्यालय स्कूल खागमंग मोरो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंग साइन कुरी तो मोरो अरुणाचल प्रदेश एजुकेशन मिनिस्टर पी डी सोना र मनैसा फांत मिस्टर सोना र सोशल मीडिया पोस्ट नंग इरोमन फांत मचुवंग बी के बी को एजुकेशन डे नई रेसिडेंशियल स्कूल जंगची इरे स्कूल र लिवन साम क्वालिटी एजुकेशन कुची मोरो त आरो सी योमी डिस्ट्रिक्ट नंग एजुकेशन कौ नंग सेंग लिन म मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर आर्यंग जंग र पर म सिंगम मई रवु मन प समुद्र मो मिनिस्टर रफान त 47 नामसाई एस टी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी जाखुंगवांग बूथ लेवल ऑफिसर्स बी एल ओस हेंग जाम स्पेशल इंटेंसिव रिविजन एस आई आर इलेक्ट्रल रोल्स मंगवरो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनुमरेशन फॉर्म्स कमुंग नंग रिव्यू मीटिंग पर मनैसा नामसाई हा नंग डिप्टी कमिश्नर कॉन्फ्रेंस हॉल न तथुंग त परजु डिप्टी कमिश्नर कम डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर रनै इलेक्ट्रल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नामसाई र इनुमरेशन फॉर्म्स लिग तफु कुम लमलु प बूथ लेवल ऑफिसर से म फान कुत नंग इर काम प होमय नंग सुमकारंग रा रुंग रोक त पर जो इलिजिबल भोटर्स मई हे होमरंग म इलेक्ट्रल रिविजन कम सोम बलांग इक्वेसी नई ट्रांसपेरेंसी जंग रंग रारो मरो नई पर म वेरिफिकेशन प अहम कुरी रंग रारो मरो ऑफिसर हेंग रो तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नई कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट नई डिपार्टमेंट रा एनईजीडी पर म मेट वाई ताम कछु रो रे स्टेट लेवल वर्कशॉप ऑन एनहांसिंग डिजिटल गवर्नेंस थ्रू

उमंग नई माई स्कूल एंड डिजिटल पर मनसा इटानगर नुक डिजिटल गवर्नेंस पर तशेन मर नई पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बलि बीच डिजिटल प्लेटफॉर्म दाम मान कम तान वर्कशॉप पर तथुंग फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी वुमेन्स नेशनल नेशन कप पोल ए नंग मचौसा न्यू दिल्ली न्यू जेलैंड मूंग नंग इंडिया ने यूरोगिया टीम तुंग ना तोते प्रजो इंडिया रे 3-2 गोल में चेरो पोल ए नंग फर्स्ट जंग नंग वांग रुंग रोते रुंग रंग इताना थुम रे

सुन रहे थे अभी आप तांगसा श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज़ तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज़ पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर एवं अरुण FM के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: नमस्कार डियर लिसनर्स, दिन अपने अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ रहा है और शाम अपने साथ लेकर आई है सुकून, ताजगी और कुछ खूबसूरत एहसास। ऐसे ही सुखद माहौल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर। मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक इस तीसरी प्रसारण सभा में बनी रहूंगी, संगीत, मुस्कान और कुछ दिल छू लेने वाली बातों के साथ। जी हाँ, दूसरी प्रसारण सभा में आप सुन रहे थे RJ कनिक को और अब से लेकर रात्रि के 9:30 तक वक्त है तीसरी प्रसारण सभा का। साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि इस सभा के विभिन्न कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे हैं तमाम FM ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक टी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता PB द्योरी। तो चलिए इस खूबसूरत शाम को और भी यादगार बनाते हैं, क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे ज्ञान और मनोरंजन का सेगमेंट गुड इवनिंग ईटानगर।
1: गुड इवनिंग ईटानगर।

कुछ तो है तेरे मेरे दरमिया क्यों लगे। बिल्कुल आप सुन रहे थे यही गीत चंदावे फिल्म भूत पार्ट वन से, और हाँ मुख्य किरदार में थे विक्की कौशल, भूमि पेडनेकर और भी कई सारे सितारे थे। आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि इस गीत को अखिल सचदेवा ने गाया है और साथ ही इस गीत का निर्देशन यानी कि म्यूजिक डायरेक्टर भी अखिल सचदेवा ही है। उनका साथ दिया है मनशील गुजराल ने। और इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर का आज का ये अंक।

तो दोस्तों कार्यक्रम गुड इवनिंग ईटानगर में आज फिर लेकर आई हूँ एक छोटी सी प्रेरणादायक कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आए। कहानी का शीर्षक है संतुष्टि। तो दोस्तों एक बार की बात है, भगवान बुद्ध से उनके शिष्य आनंद ने पूछा, भगवान जब आप प्रवचन देते हैं तो सुनने वाले

नीचे बैठते हैं। ऐसा क्यों? भगवान बुद्ध बोले, ये बताओ कि पानी झरने के ऊपर खड़े होकर पिया जाता है या नीचे जाकर? आनंद ने उत्तर दिया, झरने का पानी ऊंचाई से गिरता है, अतः उसके नीचे जाकर ही पानी पिया जा सकता है।

0: फिर भगवान बुद्ध ने कहा कि तो फिर यदि प्यासे को संतुष्ट करना है तो झरने को ऊंचाई से ही बहना होगा। आनंद ने कहा, हाँ गुरुजी। यह सुनकर भगवान बुद्ध बोले, आनंद ठीक इसी तरह यदि तुम्हें किसी से कुछ पाना है तो स्वयं को नीचे लाकर ही प्राप्त कर सकते हो, और तुम्हें देने के लिए दाता को भी ऊपर खड़े होना होगा। यदि तुम समर्पण के लिए तैयार हो तो तुम एक ऐसे सागर में बदल जाओगे जो ज्ञान की सभी धाराओं को अपने में समेट लेता है। भगवान बुद्ध ने फिर कहा कि इतिहास गवाह है कि वही लेने वाला सबसे ज्यादा फायदे में रहता है जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ पाना चाहता है, जबकि अविश्वास के साथ पाने की इच्छा रखने वाला हमेशा स्वयं को रिक्त यानी खाली ही महसूस करता है। वैसे दोस्तों, ये तो थी एक छोटी सी कहानी जिसका शीर्षक था संतुष्टि, पर हमें ये जरूर बताती है कि कुछ पाने के लिए विनम्रता और सहजता होना सबसे ज्यादा जरूरी है।
1: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual VVT engine and spacious interiors.
2: Get attractive offers up to ₹67,500. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

0: और दोस्तों इसी गीत के साथ हम छोड़े जा रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही क्षणों में आप सुन पाएंगे हिंदी में समाचार, उसके तुरंत बाद आप सुनेंगे अंग्रेजी में समाचार और फिर आप सुनेंगे नौकते श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। कहीं मत जाइएगा, बने रहिए हमारे संग। हम आपसे फिर मिलेंगे शाम के 5:05 पर कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव में। तब तक के लिए कुछ क्षण प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप दादू याजो से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश में वर्ल्ड सिकल सेल डे प्रोग्राम में शामिल हुए। उन्होंने भरोसा जताया कि भारत अपने नेशनल टारगेट साल 2047 से बहुत पहले सिकल सेल बीमारी को खत्म कर देगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ले लद्दाख में इंटरनेशनल योग दिवस सेलिब्रेशन में हिस्सा लेने के लिए 3 दिन का दौरा शुरू कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत 2400 करोड़ रूपये के इंसेंटिव बांटेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिक केंद्रित क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की मांग की। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का कहना है कि देशभर में ह्यूमन पेपिलोमा वायरस एचपीवी वैक्सीन अभियान ने सिर्फ 3 महीनों में लगभग 50 लाख डोज लगा दी है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने रविवार को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए ऑफिशियल व्हाट्सएप कम्युनिकेशन चैनल लॉन्च किया है। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में एफआईएच वुमेन्स नेशंस कप में उरुग्वे को 2-3 से हराकर लगातार तीसरी जीत दर्ज की और पुल ए में टॉप कर रहा। फीफा वर्ल्ड कप में मेक्सिको ने ग्वाडलहारा स्टेडियम में साउथ कोरिया को 1-0 से हराया। मेक्सिको आज नॉकआउट राउंड ऑफ 32 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला देश बन जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। इसके बाद वे ओडिशा के रायरंगपुर में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगी। इनमें एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित चिकित्सा शिविर, खनन प्रभावित गांवों के लिए विशाल एकीकृत ग्रामीण पाइपलाइन, जल आपूर्ति परियोजना, ब्रह्मा कुमारीज का मातृ शक्ति भवन और एक विशेष सर्किट हाउस शामिल है। इससे पहले कल राष्ट्रपति ने बेतवेल स्थित आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज का सशक्तिकरण विषय पर एक कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आदिवासी समुदायों का सशक्तिकरण देश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है और उनकी जीवन शैली प्रकृति तथा आध्यात्मिक मूल्यों से गहराई से जुड़ी हुई है। इसके बाद राष्ट्रपति ने खांडवा जिले के ओंकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिरों में पूजा अर्चना की। यात्रा के अगले चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल ओडिशा के मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे। राष्ट्रपति रविवार को जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। वे 22 जून को खूना राष्ट्रीय उद्यान का दौरा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल ओडिशा और पश्चिम बंगाल की यात्रा पर रहेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी प्रधानमंत्री के साथ ओडिशा की एक दिवसीय यात्रा में शामिल होंगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे और संथाली जहरे तथा हो जहरे के पवित्र उपवनों में पूजा अर्चना करेंगे। बाद में वे मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेगी। कार्यक्रम के दौरान वे 47,000 करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगी। श्री मोदी कल पश्चिम बंगाल के हुगली जिले के तरकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में भाग लेंगे। वे पश्चिम बंगाल में कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान की 23वीं किस्त जारी करेंगे। इस किस्त के तहत देशभर के 94 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में सीधे 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि हस्तांतरित की जाएगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज से 3 दिन के दौरे पर लद्दाख जा रहे हैं। वे लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। श्री राधाकृष्णन की केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यह पहली यात्रा है। इस दौरान उपराष्ट्रपति कल लुकुंग गांव जाएंगे, जहां वे स्थानीय स्वयं सहायता समूह से बातचीत करेंगे। वे वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत सीमावर्ती क्षेत्र में चल रही विकास परियोजनाओं का भी अवलोकन करेंगे। भारत में उपराष्ट्रपति युद्ध स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। श्री राधाकृष्णन 21 जून को लेह में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में युवा, सशस्त्र बलों के जवान और विभिन्न संगठनों के सदस्य योग के माध्यम से समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के संदेश को बढ़ावा देने के लिए भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित करेंगे। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने बताया कि अगस्त 2025 से शुरू हुई इस योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कर्मचारियों को औपचारिक कार्यबल में शामिल किया गया है, जिनमें लगभग 30% महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाले 80% से अधिक प्रतिष्ठान, 25 से कम कर्मचारी वाले लघु उद्यम है। डॉ. मांडविया ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान 15 लाख से अधिक लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से प्रोत्साहन राशि भेजी जाएगी। पहले सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं को 2 किस्तों में 15,000 रूपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। रविवार को प्रधानमंत्री कोलकाता में सुबह लगभग 6:30 बजे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लेंगे। बाद में श्री मोदी कोलकाता के श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित 3 नौसैनिक जहाजों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रे का शुभारंभ करेंगे। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राष्ट्रव्यापी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस HPV टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 3 महीनों में लगभग 50 लाख टीके लगा दिए गए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने कहा कि अभियान में तेजी आई है। मध्य प्रदेश और गुजरात में 100% टीकाकरण हो चुका है और मिजोरम अपने लक्षित जनसंख्या के 93% तक पहुंच चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को देश के प्रत्येक नागरिक के लिए संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों को प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाने का समय आ गया है। नई दिल्ली में आयोजित 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश की ये प्रणाली परिवर्तन के दौरे में गुजर रही है और समकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसे व्यवस्थित रूप से अद्यतन किया गया है। वर्तमान में इसकी क्षमता का केवल 10% पर ही उपयोग होता है। गृहमंत्री ने कहा कि NAFIS की सफलता पूरी तरह से प्रत्येक अपराध स्थल के एकत्र किए गए फिंगरप्रिंट के साथ इसके डेटाबेस को समृद्ध करने पर निर्भर करती है। उन्होंने कहा कि यह प्रणाली अपराधियों की पहचान करने में अत्यधिक प्रभावी है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में आईटी क्षेत्र के विकास को गति देने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का विस्तार दूसरे और तीसरे स्तर के शहरों तक किया है। STPI पटना में श्री वैष्णव ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के सहयोग से राज्य के आईटी क्षेत्र के विकास पर चर्चा हुई। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 21 जून को होने वाली NEET UG को पूर्ण परीक्षा से पहले टेलीग्राम ऐप पर अस्थायी रूप से प्रतिबंध लगाने के केंद्र सरकार के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायालय ने कहा है कि ये कदम कानून के अनुरूप था। फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने कहा कि सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के धारा 69 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और प्रतिबंध के लिए पर्याप्त कारण है। टेलीग्राम ने इस आदेश को चुनौती देते हुए भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया था और तर्क दिया था कि उसने पहले ही नीट से संबंधित सैकड़ों अवैध लिंक हटा दिए थे और अधिकारियों के साथ सहयोग किया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी ये प्रतिबंध 22 जून तक लागू रहेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता शाह प्रवेश परीक्षा स्नातक NEET UG के पूर्ण परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए एक आधिकारिक व्हाट्सएप संचार चैनल शुरू किया है। NTA ने स्पष्ट किया है कि सभी आधिकारिक व्हाट्सएप संदेश केवल उसके सत्यापित नंबर 9178279802877, फिर से सुनिए 9178279802877 के माध्यम से भेजे जाएंगे। एजेंसी ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि एनटीए से भेजे गए किसी भी संदेश पर भरोसा करने से पहले नीले सत्यापन चिन्ह और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी नाम की जांच कर ले। तमिलनाडु विधानसभा ने कावेरी नदी पर कर्नाटक द्वारा प्रस्तावित मेकादातु परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है। प्रस्ताव पेश करते हुए मुख्यमंत्री श्री जोसेफ विजय ने सदन के सभी सदस्यों से इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से समर्थन करने का आग्रह किया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आज मेक्सिको ने दक्षिण कोरिया को 1-0 से हरा दिया। इसके साथ ही मेक्सिको नॉकआउट राउंड में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली के आकाशवाणी मुख्यालय ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए कुर्सी योग सत्र का आयोजन किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Prime Minister Narendra Modi has concluded his successful 5-day historic visit to France and Slovakia. During his visit to France, the Prime Minister attended the G7 summit in Evian. He also participated in bilateral talks with United States President Donald Trump, German Chancellor Friedrich Merz, British Prime Minister Keir Starmer, and President of the United Arab Emirates Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, among others on the sidelines of the G7 summit. Earlier, Mr. Modi, along with French President Emmanuel Macron, jointly inaugurated the Bharat Innovates event in France, which brought together leading startups, innovators and venture capital funds from India, France and other countries. During his visit to Slovakia, Mr. Modi met with the President of the Slovak Republic, Peter Pellegrini, at the Presidential Palace in Bratislava. In a special ceremony, the Slovak president also conferred upon Prime Minister Narendra Modi Slovakia's highest state honor, the Order of the White Double Cross First Class. Prime Minister Narendra Modi will disburse incentives worth 2,400 crore rupees under Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana in New Delhi today. The scheme has been designed to encourage both workers and employers to participate in the formal economy. Under the scheme, first-time employees are eligible for an incentive of up to 15,000 rupees, gaining crucial support as they enter the workforce. Employers generating additional employment are eligible for incentives of up to 3,000 rupees per month per additional employee. President Draupadi Murmu has expressed confidence that India would eradicate sickle cell disease well before its national target year of 2047. She has called for concerted efforts to raise awareness about the genetic blood disorder, particularly among tribal communities. The president was addressing a state-level program at Omkareshwar in Madhya Pradesh on the occasion of World Sickle Cell Day today. Governor Mangubhai Patel and Chief Minister Mohan Yadav were also present on the occasion. The President noted that one of the key goals set at the launch of the national mission in 2023 was large-scale screening, and it is a matter of satisfaction that the target has been achieved ahead of schedule. Union Electronics and Information Technology Minister Ashwini Vaishnav has said that Prime Minister Narendra Modi expanded the network of software technology parks of India to Tier 2 and Tier 3 cities to accelerate the growth of the IT sector across the country. Speaking during a visit to STPI Patna in Patna, the minister said that discussions were held on the development of the state's IT ecosystem through cooperation between the central and state governments. Mr. Vaishnav also appreciated the efforts of Chief Minister Samrat Chaudhary in promoting the growth of the IT sector in Bihar. The Delhi High Court has upheld the center's decision to temporarily restrict access to the Telegram messaging platform ahead of the NEET UG 2026 re-examination on 21st June, saying the move was not disproportionate and complied with the law. Delivering the verdict, Justice Tejas Karia said the government had followed the procedure laid down under Section 69A of the Information Technology Act and that the blocking order was supported by sufficient reasons. The National Testing Agency has launched an official WhatsApp communication channel for candidates appearing in the NEET UG re-examination scheduled to be held on Sunday. The NTA clarified that all official WhatsApp communications will be sent only through its verified account bearing the number 91782798028. 9178279807. I repeat, 9178279807. India has strongly criticized Pakistan at the United Nations Human Rights Council, UNHRC, and called the Indus-Waters Treaty outdated and unsuited to present-day realities. Speaking at the 62nd session of the UNHRC, First Secretary at the Permanent Mission of India to the United Nations, Anupama Singh said that a state which exports terror as an instrument of policy continues to demand the privileges of corporation predicated on goodwill and friendship. Anupama Singh also slammed Islamabad for using references to Jammu and Kashmir met by Pakistan in the Organization of Islamic Cooperation at the United Nations, asserting that Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral part of India. That's all in this news bulletin. Namaskar.
3: श्रोता दोस्तों, अभी आपने सुना हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार. ये आकाशवाणी का ईटानगर केंद्र है. लीजिए अब पेश है नुक्ते श्रोताओं का कार्यक्रम.
4: अंगांगा नंग रंजा ठासन आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ वा रंजा वन बंगा पाजी सा पडान रे नंग नुक्ते खबर चोतारन तेजा जून जा जीवन की तारीख हो गुड बच्चा खबर चो को हन जाफन ता जामा अरे खबर है चोतार नंग Prime Minister Narendra Modi Mataja, New Delhi na Pradhan Mantri Viksit Bharat Rojgar Yojana Khanko. Haj apni cha buli ku tingun incentives pa iphan ko wajo. Adikor Labour and Employment Minister Dr. Manshukh Mandavia ma. Chhota wa rang pa agas jang pa ma. PMVBRY Khanko. Rok a rok bandam lakh ka moti employees he nang. He van wala are ko rok rang parsan rang pa dihyak jau. Nga maja cho jatu peka. Adiko khabang rang government sakuri chote jan chupa mi yud hema. Chi hajat banga ngunpa dapni ko echu wajo ngama Dr. Mandavia ma choto ko wajo. Adiko ring ngunpa program poet ko chi van banga lakh beneficiaries hitang direct benefit transfer DBT ngema echu ko wajo. Adiko ring yujna ngema small emerging enterprises hitang support huandam ko sakuri pa jo hongsit lama sakuri ko eka pa jo promote huaneka ngama jo choto ko eka. Arunachal Pradesh Public Service Commission Chairman Professor Dr. Pradeep Lingpha Maja Itanagar wa Lok Bhavan ko Governor Lieutenant General Retired KT Parnaik Damnam Chomin Lama Commission hai 2025-26 Annual Report Pacho ko wajam. Adi ko ngung tunta ko Commission wa members se ming judang wala. Ting maare rang pa ko examination su tukta recruitment rang recommendation huanta le alumni observation se nukma ahan katakan mota he nang governor nang choto ko bajao. Adiko governor ma APPSC he ma state he administrative framework pa shape huan rang nyara alumni role kab rang moe ka ngama choto ko damko. Highest standard of integrity, professionalism le excellence pa chen rang choto ko bajao. Adiko commission he nang ting credibility, effectiveness le public he pute dalam barong si rame choto ko bajao. Deputy Chief Minister Chauna Men Mamaja, Minister for Environment and Forest Wang Kilo Wang, Minister for Urban Development Le Land Management Balo Raja Le, Chief Secretary Manish Kumar He Damna, Forest Area Nge Wangin Le, Ha Management Nge Wahi Kounang, High Power Committee Ngo Batun Waja. Adi Gongong Tunta Pa Practical Solution Interdepartmental Coordination Parong Set Le, Conservation Le Developmental Nge Nang, Balance approach it nang two men rang thamla ma kwan bajo nga majo chuja tubega. Minister of Education P.D. Sona ma maja Government of Arunachal Pradesh le Vivekananda Kendra Vidyalais Arunachal Pradesh Trust he ma Tato ko tuba Government Secondary School Tato ko va Vivekananda Kendra Vidyalai huan rang Memorandum of Understanding MOU pasuri huan bajo. Adikore huan rang ngai ka vikari pa co educational day residential school e danga changa ma sona ma chotho ko baja adikare mou pa CU me district na educational assess pa rong sit ne nang datu en changa ma men sona ma chotho ko baja rok bali wanengi namsa ST assembly constituency khan ko electoral roll rang special intensive revision SIR rang enumeration form phan ko rang matto boot level officers BLO se damnang review ngon thun pa hon baja Adiko Mo Thunta ko Deputy Commissioner cum District Election Officer Damko इलेक्ट्रोल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर नमसा हेमा बीएलओ से नंग इन्यूमिनेशन फॉर्म फनको नियम रंग है नोटो को बाजा अरिको ऑफिसर से नंग रिविजन पोट को एक्यूरेसी ट्रांसपेरेंसी ले प्रॉपर वेरिफिकेशन पर हो रंग चोटो को बाजा एफ आई एच वीमेन्स नेशन कप न्यूजीलैंड नाम लो में का कटे जा इंडिया में उरुग्वे ते है 3-2 में जीन लामा पूल ए को डब रम समसम जीन लामा खोटवें जाओ अलीको अमा को गोल को रिक डी को दीपिका मा डपनी गोल को लामा खियें को नागवंग डी को दीपिका सोरेंग मा गोल थे ले को बाजा ngale chiwena minutes ko rugwe te seira apen ninoma golkola ma khen ko nit hon wala khadi ko dipika ma penalty corner ne ma gol the kola ma tot de hon wa jo nga ma jo chu thok kore ka fifa world cup nam gauda lajara stadium ko mexico ma south korea te 1-0 ma jin la ba mexico he rokram van ni round knockout ko rang qualify dang te khabang diak cho dang ai ka nga ma jo chu thok kore ka
0: सुन रहे थे आप नोक्ते श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को अभी आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर।

समा है सुहाना सुहाना, हवाओं में मस्ती से छा जाना, आपके शाम के सफर को कर देने और भी खुशनुमा, लेकर आते हैं हर शाम इवनिंग ड्राइव।

कहीं धड़क धड़क सुनकर आपके पैर भी थिरकने तो नहीं लगे? वेल दोस्तों, आप सुन रहे थे धड़क धड़क फिल्म बंटी और बबली पार्ट वन से, जो कि रिलीज हुई थी ईयर 2005 में। और इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है ये कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव, जिसे आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर कारून FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। वैसे शाम का यह वक्त बड़ा ही जादुई होता है। ढलता हुआ सूरज, ठंडी हवा और खास तौर पर आप अगर घर पहुंच रहे हैं तो वो घर पहुंचने की प्यारी सी जल्दी। उम्मीद करते हैं कि ये सफर आपके लिए खूबसूरत हो। इसी के साथ चलिए बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर।

0: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound? Yes. Advanced Level 2 ADAS? Yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control? Yes. 5-star safety rating? Yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
1: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
2: क्या बात है, बिल्कुल आप सुन रहे थे यही गीत क्या बात है फिल्म गोविंदा नाम मेरा से। इस गीत को गाया है हार्डी संधू और निकिता गांधी ने और आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर सुन रहे हैं कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव।

पहली बार तुमको देखा तो। सच में दोस्तों, संगीत में वो ताकत है जो दिन भर के स्ट्रेस को एक सेकंड में गायब कर देती है। वेल, आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम इवनिंग ड्राइव का आज का ये अंक यहीं पर समाप्त होता है, लेकिन आपको जाना कहीं नहीं है। अब से कुछ ही क्षणों में हम फिर हाजिर हो रहे हैं लेकर कार्यक्रम शाम की महफिल।

तेरी याद हर सुबह शुभ हो शाम। उदित नारायण की आवाज में आप सुन रहे थे यही गीत फिल्म और प्यार हो गया से, और इसी गीत के साथ ही शुरुआत हो चुकी है कार्यक्रम शाम की महफिल की। एक बार फिर से अ वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। आपके रेडियो पर बज रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं आपका मनपसंद शो शाम की महफिल। इस अंक पे हम आपके लिए पेश करते हैं सोलफुल एंड सूदिंग हिंदी ट्रैक्स। उम्मीद करते हैं कि आगे का सफर भी आपके लिए और खूबसूरत हो।

पहली नजर में ही कुछ ऐसा असर हो गया, धड़कनें थम गई और दिल उनका हम सफर हो गया। तो दोस्तों,

0: आपके रेडियो में बज रहा है 103.1 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम ये शाम की महफिल। शाम की महफिल में आप सुन रहे थे जादुई आवाज के मालिक सोनू निगम को बेहद खूबसूरत नगमा एक बार तुझको देखा। कार्यक्रम में ऐसे ही खूबसूरत नगमों का सिलसिला जारी है, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here. And has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh.
2: And benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.

0: वेल दोस्तों, इन्हीं नगमों के साथ ही कार्यक्रम शाम की महफिल का आज का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे हमारा विशेष अंक योगा एंड इट्स इम्पोर्टेंट। आप सुनेंगे डॉक्टर क्योदा नोमी को और इस कार्यक्रम के साक्षात्कार कर रहे हैं मिस निदो यांगा।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त निदो यांगा। हर साल 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है और इसी मौके पर आज हम बात करेंगे योगा की इम्पोर्टेंस और उसके बेनिफिट्स के बारे में। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि इस बिजी लाइफ के बीच भी अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना कितना जरूरी है। और इसी खास मौके पर आज हमारे स्टूडियो में एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद है। उनका नाम है डॉक्टर क्योदा नोमी। इन्होंने बैचलर्स ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा साइंसेस किया है और फिलहाल अपना MD परस्यू कर रही है। साथ ही ये अरुणाचल प्रदेश में योगा के बेनिफिट्स के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने का काम भी एक्टिवली कर रही है। डॉक्टर नोमी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
2: हेलो।
1: तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आपके हिसाब से योगा का असली मतलब क्या है और योगा डे हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है?
2: तो मेरे हिसाब से जानने से पहले मैं कुछ बता दूं कि अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट योगा क्या है। तो योगा एक संस्कृत वर्ड से लिया गया हुआ है जिसका वर्ड है यूज। तो ये वर्ड का मतलब है टू यूनाइट या टू कनेक्ट। तो क्वेश्चन आता है कि कनेक्ट किससे करना है? टू कनेक्ट विथ द डिवाइन एनर्जी या डिवाइन गॉड। तो ये क्या करते हैं कि योगा ओवरऑल सिर्फ मेंटल या फिजिकल फायदा नहीं देता है, ये साथ ही साथ स्पिरिचुअल और सोशल वेलबींग को भी ओवरऑल ये बताया जाता है इस पे। तो अगर आप पूछोगे कि योगा मेरे अकॉर्डिंग क्या है, तो मेरे अकॉर्डिंग योगा

0: सिर्फ फिजिकल बॉडी एक्सरसाइजेस को नहीं बोल के हम पूरा ओवरऑल हेल्थ को लेके चलते हैं। जैसे हम योगा के अंदर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीखते हैं, तो जब ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बोलती हूँ मैं, तो वो नहीं है कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज, इट्स मीन्स आप ब्रीदिंग को कैसे कंट्रोल करके रेगुलेट करता है ये, और साथ साथ हम मेडिटेशन दैट मीन्स ध्याना, तो हम ये ध्यान भी क्रिएट करके बॉडी का ओवरऑल हेल्थ को देखते हैं। और योगा दे इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये बताता है हमारे लोगों को कि योगा कितना इम्पोर्टेंट है, हमारा पूरा फिजिकल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और सोशल वेलबींग कितना इम्पोर्टेंट है। एंड साथ ही साथ ये बताता है कि हम एक साथ एक चीज के कारण हम यूनाइटेड भी है, इंटरनेशनली हम ये सेलिब्रेट करते हैं। और साथ ही साथ ये बताता है कि इंडिया का कंट्रीब्यूशन योगा पे क्या है, और ये वही है, एक साथ हमें जोड़ के रखता है ये।
1: ओके तो योगा के कितने टाइप्स होते हैं और वो किस पर्पस के लिए होते हैं?
0: अगर आप देखा जाएगा तो ये मॉडर्न समय पे बहुत सारा योगा का टाइप्स रहता है, पर अगर मैं आपको बुक टेक्स्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगी तो यहाँ पे जो मेन योगा रहता है वो होता है 6 टाइप का। तो फर्स्ट है हथ योगा, जिसको हम कॉमनली फॉलो करते हैं। इस पे क्या होता है कि फिजिकल पॉस्चर के साथ साथ ब्रीदिंग या मेडिटेशन को लेके चलते हैं हम, नॉर्मली जो पॉजेस रहता है वो सब चलता है। फिर सेकेंड हो गया हमारा राजा योगा, इसको हम बोलते हैं योगा ऑफ विक्ट्री या राजा लोग का जो योगा होता था। तो ये मेनली फोकस होता है मेंटल हेल्थ में। इस पे क्या होता है कि मेडिटेशन पे फोकस होता है ज्यादातर, और ज्यादातर डिसिप्लिनरीज में फोकस होता है इस पे। तो ये कॉमनली पहले राजा वो लोग करते थे, फॉलो करते थे, तो ये उसका ऊपर होता है। नेक्स्ट हो गया ध्यान योगा। तो ये क्या हो गया कि ये जो योगा है ये जो मोस्टली नॉलेज के ऊपर है, नॉलेज बोलेगा तो आप ओवरऑल नॉलेज, नॉट ओनली योर बॉडी नॉलेज, और ओवरऑल जो आप पढ़ते हो जो सीखते हो उसका नॉलेज के ऊपर ये योगा रहता है। और फिर आ गया भक्ति योगा। तो भक्ति योगा में क्या होता है कि हम जो ये योगा को हम बोलते हैं ये जो फेथ, डिवोशन और लव का योगा है। तो इस पे क्या होता है कि हमको एक डिवाइन एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए हम उसके ऊपर चैंटिंग, भक्ति करते हैं, वर्शिप करते हैं, तो ये उसके अंदर आता है। तो नेक्स्ट योगा है कर्म योगा। ये जो क्या होता है कि इसको बोला जाता है ये योगा ऑफ एक्शन एंड सर्विस। इस पे क्या होता है कि आप जब योगा सर्विस देते हो इंसान या पब्लिक को, इस पे आपको उसका जो रिवार्ड है उसको एक्सपेक्ट नहीं करते हुए आप सिर्फ अपना काम करते हो। तो ये हो गया हमारा जो प्रॉपर टेक्स रिलेटेड योगा हो गया। और जो मॉडर्न योगा पे आते हैं, जो आप देखते होंगे आजकल बहुत कॉमन कॉमन, बहुत एडवांस योगा करते हैं सब, तो ये सब आता है अष्टांग योगा। अष्टांग योगा हो गया, आप स्पेसिफिक एक योगा पोज को आप मेंटेन करके रखना ब्रीदिंग के साथ ले जाके, विन्यासा योगा ये हो गया, और एक विक्रम योगा हो गया जो एक हीटेड रूम पे आप करते हो। ऐसे करके कई सारा योगा, मॉडर्नाइज योगा भी बहुत सारा है जहां आप प्रॉप्स यूज कर सकते हो। एरियल योगा हो गया, चेयर योगा हो गया, ये धीरे धीरे डेवलप हुआ है इंसानों का नीड्स को देख के। तो ये है योगा।
1: डॉक्टर नुमी, जैसे आपने मेंटल हेल्थ की बात की, आजकल स्ट्रेस काफी कॉमन हो गया है बिजी लाइफस्टाइल, वर्कलोड और डेली टेंशन की वजह से, तो ऐसे में योगा और मेडिटेशन मेंटल हेल्थ के लिए कैसे काम करते हैं?
0: ओके, सो मेंटल हेल्थ, आप देखा जाए तो ओवरऑल मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ तो हमने बोल दिया कि योगा का कैसे काम आता है, फिजिकल पॉस्चर से वो कैसे मेंटेन करता है। व्हेन वी कम टू मेंटल हेल्थ, हम जब मेंटल हेल्थ के बारे डिस्कस करते हैं तो इस पे क्या होता है कि हम योगा जब करते हैं मेनली मेडिटेशन प्राणायाम पे फोकस करते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम प्रैक्टिस करेंगे योगा प्रॉपरली, तो ये क्या करेगा, जो आपका जो पैरासिम्पेटेटिक नर्वस सिस्टम रहता है जो मेनली रिलैक्स और डाइजेशन के लिए हेल्प करता है, तो ये क्या होता है इसको एनहेंस करता है, एक्टिव कर देता है। तो इससे क्या होगा, आपका ओवरऑल बॉडी रिलैक्स मोड में चला जाता है, ठीक है। साथ साथ ये क्या करता है, जो स्ट्रेस हॉर्मोन्स रहता है हमारा, जैसे हो गया कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन हो गया, ये सबको रिड्यूस करके एक प्रॉपर अमाउंट में रखता है बॉडी पे, जिससे क्या होगा स्ट्रेस रिड्यूस होगा, आपका स्लीप प्रॉपर होगा, आपका बॉडी पूरा फंक्शंस होगा वो प्रॉपर रहेगा। और क्या रहता है कि जब आप योगा प्रैक्टिस करते हो तो ये साथ साथ आपका जो बॉडी का फ्रिक्वेंसीज है, एनर्जी फ्रिक्वेंसी रहता है बॉडी पे हमारा, हर ऑर्गेन्स में एक फ्रिक्वेंसी रहता है, तो ये क्या करता है इसको मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और साथ साथ आपका टाइम टेबल प्रॉपर हो जाता है, आप जब वर्कआउट करते हो तो आपका बॉडी टायर्ड हो जाता है, साथ साथ प्राणायाम जब प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो रेस्पिरेटरी कैपेसिटी है जो लंग का, वो प्रॉपर होता है, इम्प्रूव होता है, साथ में बॉडी का, बॉडी में ऑक्सीजन पूरा अच्छे से पहुंचता है न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ। तो ऐसे करके ये पूरा ओवरऑल हेल्प करता है मेंटल हेल्थ में।
1: अगर कोई अपनी

0: मेंटल हेल्थ को बेटर करना चाहता है तो आप एक सिंपल सा डेली योगा रूटीन क्या सजेस्ट करेंगी?
1: एक सिंपल रूटीन बहुत इजी है। तो सबसे पहले तो आप योगा प्रैक्टिस करोगे डेली मॉर्निंग और इवनिंग को हम ज़्यादातर प्रेफर करते हैं योगा प्रैक्टिस को। तो और साथ में आप जब योगा प्रैक्टिस करते हो सबसे पहले आप करोगे जेंटल वार्म अप्स करोगे, जैसे हो गया नेक रोटेशन, शोल्डर रोटेशन, ट्विस्ट एंड टर्न, बैक को आर्म्स को रोटेट करना, ये सब करके 5 मिनट्स करेंगे। फिर हम जाएंगे आसनास पे, जो होता है फिजिकल पोस्चर्स, ठीक है। उस पे हम 10 से 12 मिनट हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, जैसे बालासन हो गया, चाइल्ड पोज बोलते हैं जिसे, मजरियासन हो गया जिसे कैट एंड काउ बोलते हैं मॉडर्न लैंग्वेज में, और हो गया पर्वत आसन जिसको माउंटेन पोज बोलते हैं हम। और विपरीत करनी, ये एक बहुत इजी लेग रेस एक्सरसाइज है, वॉल की सपोर्ट से करते हैं हम ये। आप कॉमन आसनास करोगे 10 से 12 मिनट, और फिर उसके बाद हम जाएंगे प्राणायाम में। तो आप मेंटल हेल्थ को लेके चलोगे तो प्राणायाम हम क्या करते हैं, नारी सोडना प्राणायाम जिसको बोलते हैं बैलेंसिंग प्राणायाम, दोनों नोस्ट्रल्स से ब्रीदिंग करते हैं इस पे। और फिर उसके बाद हम कर सकते हैं ब्रह्मरी प्राणायाम, ये भी ओवरऑल हॉर्मोन्स, ओवरऑल मेंटल हेल्थ के लिए, स्लीप, स्ट्रेस, ये सब के लिए बहुत फायदेमंद रहता है। ये हम 5 मिनट्स करेंगे। फिर उसके बाद हम मेडिटेशन और रिलैक्सेशन 5 to 10 मिनट्स करेंगे। उसमें भी मेडिटेशन आप जब करते हो तो आपका पूरा ध्यान आपके बॉडी पे रहना चाहिए, आपके ब्रेथ में रहना चाहिए। एंड यस, दिस आर द सिंपल टाइम टेबल और रूटीन यू कैन फॉलो। एंड साथ साथ आपको कैफीन को कम करना होगा, और साथ साथ आपका स्लीप 7 to 8 आवर्स रखना है, एंड स्टे हाइड्रेट, दैट्स इट।
0: बहुत ही अच्छी तरह से समझाया आपने। तो चलिए इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, डॉक्टर नुमी, जनरली योगा किस तरह की हेल्थ इश्यूज या कंडीशंस में हेल्पफुल होता है?
1: जनरली योगा तो हम ओवरऑल हॉलिस्टिक हेल्थ के लिए बोलते हैं। हॉलिस्टिक अगर हम बोले तो मेंटल, फिजिकल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग को बोलते हैं। तो अगर हम ये बोला जाए तो ओवरऑल पूरे हेल्थ, हॉलिस्टिक हेल्थ में ये बहुत फायदा रखता है। बट अगर स्पेसिफिक अगर हमें बोला जाए तो लाइफस्टाइल डिजीजेस को लेके हम बोलते हैं कि हाई ब्लड प्रेशर हो गया, डायबिटीज मेलाइटिस हो गया, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस, ओबेसिटी हो गया और हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, ये सब पे हम योगा जब प्रैक्टिस करते हैं तो ये क्या करेगा, ओवरऑल कार्डियक हो गया, नर्वस हो गया, या रेस्पिरेटरी हो गया, या एंडोक्राइन हो गया, जितना सिस्टम्स रहता है बॉडी का उसको रेगुलेट करके प्रॉपर फंक्शन बैलेंस करेंगे। और साथ साथ ये मस्क्यूस कोलेक्टल बोलते हैं, जिसमें बोलते हैं हड्डी और मसल्स का जितना रिलेटेड बीमार रहता है, बैक पेन, नेक पेन, जॉइंट पेन, या पोस्चर खराब है आपका, तो उस पर ये फायदा रहता है। और हम रेस्पिरेटरी इशू, जैसे कि अगर आपको माइल्ड अस्थमा है अंडर द गाइडेंस, ऐसे नहीं कि आप ऐसे ही प्रैक्टिस करोगे, अंडर द गाइडेंस वो सब के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो। साथ साथ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स रहता है, जिसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, उसके लिए बहुत सारा आसनास है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ब्लोटिंग हो गया, इनडाइजेशन हो गया, ये सब में बहुत काम आता है। साथ साथ हेडेक्स के लिए, मतलब न्यूरोलॉजिकल जो डिजीज है उस पर भी काम आता है। और बैलेंस, जैसे ओल्ड एज में बैलेंस नहीं होता है बॉडी में, तो उसको भी आप प्रॉपर करने के लिए ये आपका काम आ सकता है योगा।
0: तो अगर कोई ऑलरेडी मेडिकेशन सॉरी तो अगर कोई ऑलरेडी मेडिकेशन ले रहा है तो क्या योगा उसके साथ सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करता है?
1: यस यस यस, योगा इज वेरी, यस योगा इज वेरी इंपॉर्टेंट। योगा को बेसिकली वी यूज एज अ मैनेज और सपोर्ट रिकवरी के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो अगर आप कन्वेंशनल मेडिसिन में हो, या दैट मीन्स एलोपैथी, आयुर्वेदिक, या जो भी मेडिकेशन में हो, उसके साथ साथ आप योगा फॉलो कर सकते हो, एक लाइफ स्टाइल चेंजेस जैसे आप फॉलो कर सकते हो। क्योंकि फिजिकल मूवमेंट, फिजिकल एक्सरसाइज जो होता है, ये जो ड्रेनेज और न्यूट्रिशन के बीच में बहुत बड़ा कनेक्शन है। क्योंकि आप जितना एक्सरसाइज करोगे तो उससे आपका क्या होगा, स्वेटिंग होगा, ठीक है, आपका डाइजेशन बढ़ेगा उसमें। तो साथ साथ आपका जब डाइजेशन बढ़ के आपका जब ब्लड फ्लो होगा तो क्या करेगा, ऑक्सीजन के थ्रू, ब्लड के थ्रू ही आपका खाना वाना पूरा बॉडी में जाएगा, ठीक है। तो यही है,
0: जैसे कि आजकल हाई ब्लड प्रेशर भी काफी कॉमन हो गया है, स्पेशली अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे में आप क्या कुछ सिंपल योगा प्रैक्टिसेस या आसना सजेस्ट करेंगी जो लोग घर पर ट्राई कर सके?
1: यस, ब्लड प्रेशर, या अभी तो हम बहुत देख रहे हैं कि बहुत सारा स्ट्रोक कंडीशन आता है, बहुत सारा स्ट्रोक का न्यूज सुनने मिलता है। तो इस पे हम आपको बोल दे कि बहुत इजी इजी आसनास आप प्रैक्टिस करके, आसनास प्राणायाम प्रैक्टिस करके इसको आप प्रिवेंट कर सकते हो। तो पहला आसना है जो बहुत इजी है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, विपरीत करनी। ये क्या है कि पैर को वॉल में सपोर्ट करके हैंग करना है, सॉरी 60 to 30 सेकेंड्स के लिए आप होल्ड कर सकते हो। फिर नेक्स्ट हो गया बालासन जो चाइल्ड पोज मैंने बोला था,

ये, और क्योंकि ये क्या करते हैं कि आपको स्ट्रेस रिलीव करते, साथ साथ लोअर करते हैं, हार्ट रेट को लोअर करता है। और सेतु बंदासन हो गया, जिसे हम बोलते हैं ब्रिज पोज, ये क्या करते हैं कि आपका चेस्ट को ओपन करने के लिए हेल्प करता है, साथ साथ ये जो सर्कुलेशन को पूरा इम्प्रूव करता है। वैसे ही बहुत ज्यादा आसनास है, पर आपको साथ में लेके चलना होगा प्राणायाम को भी लेके चलना होगा। तो इस पे एक बहुत इजी और बहुत फायदेमंद वाला जो प्राणायाम है वो है कूलिंग प्राणायाम, जिसे कहते हैं हम चंद्र अनुलोम विलोम। ये क्या होता है कि आपको लेफ्ट नोस्ट्रल से ब्रीदिंग करना होता है, राइट को बंद करके। ये क्या करते हैं आपका पूरा सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, साथ साथ इमिडिएटली आपको अगर आपका बीपी बढ़ जाता है तो इमिडिएटली

0: ताकि आप अपने बॉडी पे ध्यान ले सकें, ना कि अलग एक्स्ट्रा स्ट्रेस आपकी बॉडी पे आए।
1: बिल्कुल, ये जानकारी महिलाओं के लिए काफी जरूरी है क्योंकि हर स्टेज में उनकी हेल्थ नीड्स अलग अलग होती है, राइट? तो अगर हम हर रोज थोड़ा सा योगा करें तो क्या हम फ्यूचर हेल्थ प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं?
0: यस, मैंने जैसे आपको बताया कि अभी से अगर हम स्टार्ट कर देंगे योगा करने, तो ये जो ओवरऑल हमारा जो बॉडी का जो नॉर्मल फिजियोलॉजी है, मतलब जो नॉर्मल जो मैकेनिज्म है बॉडी का, तो ये प्रॉपर से चलेगा अभी भी। तो आप अगर आप पूरा सिस्टम देखोगे बॉडी पे, सब रिलेटेड है एक दूसरे से, को रिलेटेड है एक दूसरे से, ठीक है। अगर आपका पेट खराब हो जाता है तो क्या होता है कि आपका मूड खराब रहेगा। पेट साफ नहीं हुआ तो मूड खराब रहता है पूरा दिन, हेड भारी सा लगता है, हैवीनेस लगने शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे करके आपको ये किडनी में प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिनेशन में प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ऐसे करके बहुत सारे रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो अगर आप अभी से योगा फॉलो करते हो, अभी से अंडर द गाइडेंस हो, या आप खुद से भी सेल्फ स्टडी करके आप करते हो, हाँ, तो ये क्या करेगा कि ये आपका ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदा देगा आपको।
1: तो डॉक्टर नूमी, बिगिनर्स के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? कितने टाइम से स्टार्ट करें?
0: हाँ, तो योगा फॉर बिगिनर्स, हम जैसे मैंने बोला आपको, हाथ योगा जो है वो बहुत अच्छा है बिगिनर्स के लिए, क्योंकि इसमें हमको क्या करना होता है, पोस्चर को बहुत देर तक होल्ड करना नहीं पड़ता है, या हमें एडवांस स्ट्रेचिंग करना नहीं पड़ता। इस पे क्या होता है, जो हमारा बेसिक योगा पोजेस होता है उसको हम अकॉर्डिंग टू द नीड्स, हेल्थ बेनिफिट्स का अकॉर्डिंगली हम उसको देते हैं। तो इस पे इजी इजी रहता है, आपको बहुत बॉडी फोर्स यूज करना नहीं पड़ता है, आपको ये इजीली हो जाता है। तो बिगिनर्स के लिए हम आपको हठ योगा ही सजेस्ट करेंगे, और उसके साथ साथ उसके अंदर ही प्राणायाम और मेडिटेशन धीरे धीरे हम सजेस्ट करते हैं। तो अगर आप अगर टाइम टेबल अगर पूरा फॉलो करना चाहते हो, तो आप योगा स्टार्ट करके धीरे धीरे आप उसको अपना शुरू में अगर स्टार्ट आप अगर शुरू पे आप कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे, तो धीरे धीरे करके आप उसे अपने लाइफ में इंक्लूड करने से बहुत फायदा होगा आप। और अगर आप टाइमिंग के हिसाब से बोले तो मॉर्निंग में हम ज्यादा प्रेफर करते हैं, या इवनिंग में प्रेफर करते हैं, क्योंकि मॉर्निंग पे क्या होता है, आप जाग के आपका बॉडी पे एनर्जी रहता है, ठीक है, और साथ साथ एनवायरमेंट बहुत क्लीन रहता है, काम रहता है, शांति होता है। तो हम मॉर्निंग या इवनिंग में सजेस्ट करते हैं, और ओपन एरिया पे ज़रा सजेस्ट करते हैं वेंटिलेशन के साथ साथ। और आप जब योगा प्रैक्टिस करते हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पेट खाली होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम प्रॉपरली बॉडी को बैंड कर सके, प्रॉपरली एनर्जी यूज कर सके। तो अगर आप खा भी लेते हो तो आप एटलीस्ट 1 या 2 आवर्स के बाद ही योगा प्रैक्टिस करें, यही सजेशन होगा मेरा।
1: बिल्कुल। तो डॉक्टर नुमी, क्या आप भी योगा प्रैक्टिस करती है? और क्या आपको खुद इससे कोई पॉजिटिव चेंज या फायदा महसूस हुआ है?
0: अगर बात रहे मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस का, क्योंकि आपको पता है, जैसे आपको पता है कि मैं योगा बैकग्राउंड से ही हूँ, सिर्फ योगा नहीं, नेचुरोपैथी बैकग्राउंड से भी हूँ, तो ये ओवरऑल जो हेल्थ बेनिफिट मुझे मिला है योगा प्रैक्टिस करके, अगर आप वो टॉपिक को लेकर आते हो तो सिर्फ आप फिजिकल हेल्थ को छोड़ के मैंने मेंटल हेल्थ भी बहुत मैंने महसूस किया है चेंजेस। जैसे अगर मुझे कुछ भी रह के अगर मुझे नींद ना आए, कुछ स्ट्रेस हो जाए मुझे, कुछ टॉपिक को सोच सोच के बार बार ओवर थिंकिंग करने शुरू कर दूं मैं, तो मैं क्या करती हूँ कि बेड में लेट जाती हूँ, और फिर मैं 10 मिनट कुछ म्यूजिक ऑन करके, जो गाइडेड मेडिटेशन बोलता है, जिसको आपको यूट्यूब में मिल जाएगा आराम से, तो गाइडेड मेडिटेशन उस पर आप फॉलो करके आप अपना ब्रेथ कंट्रोल करना, ये सब मैं सुनती हूँ एयरफोन लगा के। तो इससे क्या होता है कि आप बॉडी पे ध्यान इतना करते हो कि आपको बाहर का कुछ सोच नहीं आता है, आपको कुछ थिंकिंग आपको नहीं सताता है। तो ये क्या होता है कि धीरे धीरे आपको ये जो स्लीप इंड्यूस करेगा ये आपका बॉडी पे। तो साथ साथ हम ये तो हो गया मेंटल प्रॉब्लम का हो गया। अगर आप बात रहे तो प्राणायाम, क्योंकि मैं स्कूल मैं अपने कॉलेज टाइम से प्राणायाम प्रैक्टिस करती हूँ, पूरा योगा प्रैक्टिस करती हूँ। तो जब हम प्राणायाम पे जाते हैं, तो अगर आप कंपेयर करेंगे ब्रेथ को होल्ड करना किसी और जो प्रैक्टिस नहीं करते उसके साथ कंपेयर करोगे, तो आप देखने को मिलेगा कि डिफरेंस, कि मैं ज़्यादा होल्ड कर पाऊंगी और सामने वाला कम होल्ड कर पाएगा, ठीक है। और फिजिकल का अगर रहे तो आई एम ए वेरी एवरेज हेल्दी वेट है मेरा। फ्लेक्सिबिलिटी मैं इंक्रीज कर रही हूँ धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ साथ। इवनिंग में हमेशा स्ट्रेच करती हूँ मैं, और अगर मौका मिलता है तो मैं एडवांस योगा भी प्रैक्टिस करती हूँ, तो आप उसमें फिजिकल चेंजेस भी देखने को जरूर मिला है। थैंक यू।
1: तो डॉक्टर नूमी, जैसे कि आप अरुणाचल प्रदेश में योगा अवेयरनेस फैला रहे हैं, इस जर्नी के दौरान आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और यहाँ के लोगों का रिस्पॉन्स आपको कैसे देखने को मिला?
0: That's a very nice question.

0: लास्ट ईयर मैंने यही इंटरनेशनल डे ऑफ योगा, लास्ट ईयर ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मैंने एक अवेयरनेस कैंप रखा था योगा और नेचुरोपैथी के ऊपर. तो उसमें मैंने इंडिविजुअली पार्टिसिपेट किया और उस पर काफी फैमिली मेम्बर्स हो गया या जो रिलेटिव्स हो गया और या जो बाहर से जो मुझे ऑडियंस मिला वो सब आए थे उधर और बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया उन्होंने. उस पर मैंने क्यूरोसिटी देखा उनका कि उनको कितना मतलब योगा के बारे कितना जानने का इच्छा है उनको, ये सब देखने को मिला. तो बहुत कोऑपरेटिव था. एंड अगर प्रेजेंट में रहे तो अभी मैं 2 सेमिनार करवा के आई हूँ, मैं और मेरे टीम. तो उस पर हम हायर सेकेंडरी कंकरनाला और हायर सेकेंडरी ईटानगर पे हम सेमिनार रखे थे और हमने मेनली फोकस क्लास 11 और 12 साइंसेस में किया था. साथ साथ योगा के साथ साथ हम नेचुरोपैथी के ऊपर भी अवेयरनेस कैंप किए थे. तो इस पे जो स्टूडेंट्स थे उसका जो रेस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा था, क्योंकि मेनली योगा के बारे सबको पता है पर उनको प्रॉपर नहीं पता है. तो जब हम डिस्कस कर रहे थे इसके ऊपर दे वर वेरी क्यूरियस एंड दे वर आस्किंग क्वेश्चंस ऑल्सो. तो इट वॉज वेरी गुड. एंड प्रिंसिपल जो थे वो भी बहुत कोऑपरेटिव थे एंड आई वुड लाइक टू थैंक देम एज वेल, इतना अच्छा चांस दिया उसके बच्चे लोग को अवेयरनेस फैलाने के लिए. So yeah, it was a very nice experience.
1: बहुत ही अच्छा लगा आपने अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया. तो चलिए आप बात को यही समाप्त करते हुए मेरा आखिरी सवाल है, इस योगा डे के मौके पर आप हमारे श्रोताओं को क्या मैसेज देना चाहेंगी?
0: हाँ, तो ऑन द ओकेशन ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मैं आप सबको यही बोलूंगी कि ये मौके का फायदा उठाइए, लाभ उठाइए, सीखिए, जाइए, ग्रुप में इन्वॉल्व रहिए. क्योंकि योगा, व्हेन वी से योगा, ये सिर्फ, फिर से मैं रिपीट करूंगी, ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ नहीं है, ये फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल एंड सोशल वेलबींग है. ये आप डिसिप्लिनरीज भी सिखाता है लाइफ का, ठीक है, और साथ साथ सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, सेल्फ प्रैक्टिस हो गया, सेल्फ क्लीनलीनेस हो गया, ये सब आपको सिखाता है. तो आपको जितना मौका मिलेगा, हर जगह योगा कैंप्स रहता है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम भी होगा योगा डे पे, तो मैं चाहूंगी कि आप लोग उस पर इन्वॉल्व रहिए और हाँ, यूनिटी स्प्रेड करिए.
1: तो श्रोताओं, आज की इस बातचीत से हमें ये समझने को मिला कि योगा सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल है जो हमें फिजिकली, मेंटली और इमोशनली फिट रखते हैं, और जैसे कि डॉक्टर नुमी ने कहा, सोशल वेलबींग के लिए भी है. मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी हमारी आज की गेस्ट का, डॉक्टर क्योदा नुमी, जिन्होंने अपने वैल्यूएबल इनसाइट और एक्सपीरियंस हम सब के साथ शेयर की और अरुणाचल प्रदेश में योगा अवेयरनेस फैलाने का इतना अच्छा काम कर रही है. आप सुन रहे थे आकाशवाणी ईटानगर, अरुण FM 103.1 MHz. मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त निदो यांगा. मिलते हैं फिर एक नए और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ. तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी और योगा को अपनी जिंदगी का हिस्सा जरूर बनाइए. नमस्कार.
2: Victorious is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
3: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
4: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K series 1.0 liter dual jet, dual 50 engine and spacious interiors.
5: Get attractive offers up to rupees 67,500.
6: Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.

श्रोता दोस्तों, आप सुन रहे हैं कभी जो बादल बरसे, छोड़े जा रहे हैं इसे गीत के साथ। 6:30 होते ही आप सुनेंगे आदि श्रोताओं का समाचार आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से। और हाँ, हम फिर मिलेंगे 6:35 पर, लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।

तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे आदि श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन एयर ऐप के माध्यम से भी आकाशवाणी ईटानगर एवं अरुण एफएम के सभी कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। वैसे ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जहां हम करते हैं दिल से दिल।

0: के बाद अब से कुछ ही क्षणों में लेकर आ रहे हैं कार्यक्रम आज के कलाकार।
1: Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart Power Tailgate with Gesture Control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just Rs. 10.49 lakh.
2: And benefits up to Rs. 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: Dil se dil tak बात पहुंची मिलते मिलते सनम ओ
4: गीत संगीत
0: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
4: प्यार भरे अल्फाजों में
0: दिल से दिल की बात
4: बस आपके नाम
0: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

नमस्कार सुरों के दीवानों, संगीत के कदरदानों और रेडियो के दीवानों, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। फिर हाजिर हूं लेकर कार्यक्रम आज के कलाकार, और आप सुन रहे थे तुम ही हो 2013 का वो मोस्ट फेमस लव सॉन्ग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अरिजीत सिंह के गाए हुए उसी गीत की जो कि ईयर 2013 में रिलीज हुई थी फिल्म आशिकी 2 में। और इसी गीत के साथ ही हमने शुरू कर लिया है कार्यक्रम आज के कलाकार। तो आप जान ही गए होंगे कि हमारे आज के कलाकार हैं अरिजीत सिंह।

आज का ये अंग उस जादुई आवाज के नाम जो जब गाते हैं तो वक्त ठहर जाता है, जब वो दर्द बयां करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं, और जब वो प्यार का इजहार करते हैं तो फिजाओं में मोहब्बत घुल जाती है। तो दोस्तों, कार्यक्रम आज के कलाकार में आज हम पेश करेंगे अरिजीत सिंह के गाए हुए कुछ नगमे, और साथ ही बातें भी करेंगे अरिजीत सिंह की ही। अब वक्त हो चला है अगले गीत का, तो अगले गीत के बाद हम फिर करेंगे बातें अरिजीत सिंह की।

दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अरिजीत सिंह की ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। पश्चिम बंगाल के एक छोटे से शहर जियागंज से निकले अरिजीत ने साल 2005 में एक रियलिटी शो फेम गुरुकुल से अपने सफर की शुरुआत की थी। वो उस शो के विजेता तो नहीं बन पाए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने मुंबई को अपना घर बनाया। कई सालों तक बैकग्राउंड में एक म्यूजिक प्रोग्रामर और असिस्टेंट के तौर पर काम किया, संगीत की बारीकियों को सीखा और फिर जो हुआ वो इतिहास है।

दोस्तों, जब हम अरिजीत सिंह की बात करते हैं तो सिर्फ एक बेहतरीन सिंगर की ही बात नहीं करते, बल्कि भारतीय संगीत इतिहास के एक ऐसे रिकॉर्ड होल्डर की बात करते हैं जिसने कामयाबी के नए मायने लिखे हैं। फिल्म फेयर अवार्ड्स का रिकॉर्ड साल 2016 से 2020 तक लगातार 5 बार बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड जीतकर उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे तोड़ पाना किसी भी नए कलाकार के लिए एक बड़ा सपना होगा। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसी भी कलाकार के लिए देश का राष्ट्रीय पुरस्कार सबसे बड़ा सम्मान होता है। अरिजीत को फिल्म पद्मावत के खूबसूरत गाने बिनते दिल और फिल्म ब्रह्मास्त्र के गाने केसरिया के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक यानी कि बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। दुनिया भर में सबसे ज्यादा सुने जाने वाले भारतीय कलाकार अरिजीत है। इसके अलावा भी कई सारे अवार्ड्स हैं जो अरिजीत ने जीते हैं।

अरिजीत सिंह ने जनवरी 2026 में प्लेबैक सिंगिंग यानी कि फिल्मों के लिए गाना गाने से संन्यास लेकर पूरी दुनिया को चौंका दिया है, पर संगीत से उनका नाता बिल्कुल नहीं टूटा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वे व्यावसायिक यानी कि बॉलीवुड फिल्मों के लिए नए गाने रिकॉर्ड नहीं करेंगे, लेकिन वे स्वतंत्रता से संगीत बनाएंगे यानी कि इंडिपेंडेंट म्यूजिक बनाने, अपने खुद के इंडी लेबल पर काम करने वाले हैं।

0: अरिजीत सिंह के गाए हुए इसी नगमे के साथ ही डियर लिसनर्स हम आप सभी को छोड़े जा रहे हैं। 7 बजते ही आप सुन पाएंगे निशी श्रोताओं का समाचार। तब तक के लिए बने रहे आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम पर।
1: आकाशवाणी ईटानगर पोकुमा hilpol ga alo lure wala loko na na nya urunga kana ba je rema tan melim ar mel surunga nishi am arab monin ji grema tan ga da ta cho ba surung shi poyam ta pa cho ra jab jiran shi der ma akom har re pu babla pradhan mantri viksit bharat rozgar yojana ara lok silo nit ne delhi lo from stan nam narendra modi ye en hajar chimri epu koromor ko kham yaglen jip kum khab men pa to ओकमनी गसो पोल लो गोब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना आरा लोक चांको गोला ओम लाकनी गते ने साकोरी लो लालक जिकलो सो चुम परसेंट गोन ह होमे निम गोब रिया पुकुर में हमला रिबोल क लेबर ओक एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर धर्म मनसुख मांडविया ये चप्पा पुकुर में हर में पाता तो ओसोक iskim ka ara lok so a champion percent gon ham ani ate ba rigo mengo nam te te lo tul ka grik la so chem ni wala ni tum ang duria ago ba ni ge te ne kor pam ga po de lo len dang len mor kuna ham na pu chap ta pu kuna ba ham to o ko so ye nigeria pa ge de sa kore lo pet pa ke ba pa cho bu cho nyane gud ha ru go la an hajar mur ko gud ha pa pe lu ni go par ko ne kham lan dar ma mand bi ya ya cha pa ta ku ba kham to ak so ka mur lu mur ko gud ha so ru go la an la ka dur ya go ba unnati pa de ne gud ne direct benefit transfer lo ka jilik jir ko ne kham la cha pa ta ku ba kham to ओक भारत लो दोम अरहम अलब पुगे पाग कोक ब साकोरी अनि आचे बला कोरपाम गुद खबरी पा मेंपा मोनम ग लुक लोक आउम आम लुखम ब चपा ताप कुम खर मेंपा तादो अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर प्रदीप लिंगपा ये मोर्ग है आलो अरुणाचल प्रदेश स्टेट का गवर्नर के टी पर नायक ने ईटानगर का लोक बाब लोकल तरशी क्लास सो टू टाइम 25-26 कमीशन का एनुअल रिपोर्ट में नाम हम जिर पुकुन मखर में पातो और का कमीशन का चेयरमैन ये कमीशन का निग ने इंग्लिश क्लास सो उन्हीं निकल का आरा लो कमीशन का सिग दाग कुनाम ला कोरी लो रिकमेंडेशन मुझे दुख व एग्जाम हम जिग को नाम ला आल वह का जिनम ओक मुरली मोर को नाम थे लो रेग दाग को नाम ग अगम आम बिल्ली हम गवर्नर ने जापा मिस पुकुन में हम में पा था तो ओक स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव नियम सिम अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन आल वह रेन दागलन गते व रिकमेंडो हम चेरे चेपा आल वह रेन दागलन गते व रिब दुख ने हम ना गवर्नर ये जापा पुकुन नब ओक कमीशन ह रिकमेंगो हम अलवे रिग पाग बब गग्रिक ला पब्लिक लगा ब रिकमेंगो हम अलवे रिजिमिन जिग ग्रिक ला साकोरी लो तग अलवे बाद ने कैंडिडेट गिद हम रिकमेंडेशन मुस्तु का हम ला गवर्नर य चप्ता पुकु नब हम तो ओक merit basis lok sakuri lo leje baji sa lek lok awam am lek ham governor ye jap tom la reta tu kula so exam ham jig tak lo la sakuri lo la lek bulik tak lo rigo mengo mulu ham tagana nam te lo rigo pag jit ku ka ham la commission ne jap sir awam ham jap ta pu kuna ham la mem pa tha do no shin shi pu shi ma kazwani etano pu kum lok tal do nya do फॉरेस्ट गुदा लुक लोक ला कोड इस लुक लो रिडिग्री कमिस कुनाम लुक लोक हाई पावर कमिटी का बाक मोर्ग है आल होना स्टेट का डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर चोना में ये वुग लो दोग ताक पुकुना में ओक सोक कबातु कुम लो एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्टर धर्म वंकी लोंग ला अर्बन डेवलपमेंट ओक लैंड मैनेजमेंट मिनिस्टर धर्म भालो राजा ओक स्टेट चीफ सेक्रेटरी धर्म मनीष कुमार गुप्ता बोर दोपा दापा न्याक नम खबर में पा ओक डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट का आरा लोरिगो मेंगो हम आलब रिबम मेंबर मिस डबला डेवलपमेंट का लगा बरिगो मेंगो हम आलब रिबम पबम गद कुब सोक कबातु कुमलो अगम आ हम मेगो आलब जब का बुका मिशन आप कुम हम मेंबर ता दो गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल तातो लो अभी कहना था केंद्र विद्यालय वीके वी हम तातो लो मूल मोता दो कुब अरुणाचल प्रदेश सरकार ला वीके वी अरुणाचल प्रदेश त्रासे बनी मूल है आलो हो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम साइन मुमिसित कुब हम ला अरुणाचल प्रदेश तेज का एजुकेशन मिनिस्टर दर्म पीरी शोना ये जापा पुकुन बखल मेम पादो अक्षोक गुदालो को स्कूल आ गुद ने पुर हम आलावे हेलम पालन मोतो खूब सोक बीकेबी लो आलो हम इना दबला आई हम युबला करला पुर हम चिन रा मोतो खूब प्रपोज मो खूब हम ला दम सोना ये सोशल मीडिया ला पोस्ट मुल के क्लिक ला जपा ताप कुमा ओक मुल आते गे नी गुद गे मिग साग नाम ते लोरी गो मेंगो हम आलवर लेन दगलन जीत खूब सीओमी डिस्ट्रिक्ट लो पुर हम आलवे लेन गम दो खूब सोक मेमोर दब ओ अंडरस्टैंडिंग हम साइन मुमिशिप कुम हम ला दम सोना ये जपा ताप कुम हम तो कसरुंग निशिप हुई है वो
2: शियाकाजवानी इतरों पुकुमा
0: अभी आप सुन रहे थे निशी श्रोताओं का समाचार। इस कार्यक्रम को आगे पूरा सुनने के लिए आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर के मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा डीआरएम 666 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे वीकेंड स्पेशल मैगजीन प्रोग्राम।
3: मारुति सुजुकी विक्टोरियस इज फाइनली हियर and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced level 2 ADAS, yes. Smart power tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just rupees 10.49 lakh
4: and benefits up to rupees 80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
5: Namaste listeners, a very warm welcome to all of you as we have come together for another edition of our weekend special magazine show. I'm your host Zulekha Topiwala.

0: सुन रहे थे आप चंद हिंदी फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है, जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। सो डियर लिसनर्स, अब प्रस्तुत है आपका मनपसंद कार्यक्रम। जी हाँ, लेकर आ रहे हैं हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश।
2: हेलो फरमाइश।
3: हेलो फरमाइश सर जी, नमस्कार।
2: नमस्कार, हेलो फरमाइश में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
3: धन्यवाद सर, आपको कैसे हो?
2: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आप कैसे हो?
3: बिल्कुल, मैं भी स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। और आपके प्रोग्राम सुनता हूँ, रेडियो चल रहा है, काम कर रहा हूँ, कपड़े सिलता हूँ मैं, दुकान
2: अच्छा।
3: पे काम कर रहा था तो मैं उनका रिकॉर्डिंग करवा देता हूँ।
2: क्या बात है जी, काम के वक्त भी आपने हमें याद किया, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगता है जब आप लोग हमें कॉल करते हैं।
3: जी जी।
2: ओके, तो कहिए आज आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
3: हमारे यहाँ धूप है सर।
2: अच्छा, धूप खिली हुई है?
3: जी, गर्मी हो रही है, धूप है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे यहाँ तो बारिश है, सुहाना मौसम है। चलिए कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
3: फिल्म का नाम है धुंध।
2: ओके।
3: मरना रास आया, जीना मन भाया,
2: ओ
3: जाऊँ तो जाऊँ कहाँ।
2: जी जरूर सुनाएंगे, और किन साथियों के साथ सुनना चाहेंगे?
3: हमारे एक सबसे अच्छे मित्र है जो हमको बताया करते हैं, मतलब आज यहाँ रिकॉर्डिंग हो रही है।
2: अच्छा,
3: तो वो है हमारे लोकेंद्र वर्मा जी, नाना खेड़ी बस स्टैंड है उज्जैन से। और हमारे रमेश पात्रे जी है, उन्होंने भी बताया था कि आज वो रिकॉर्डिंग होगी।
2: अच्छा जी
3: जी,
2: तो दोनों को हम
3: परमार है, पूरन वर्मा जी है, गजराज लोधी जी है, केसी सिंह राजपूत है, मांगीलाल चंदेल है, प्रेम सिंह सिसोदिया है, और आशुतोष जी है, संगीता जी है, पूर्णिमा जी है, अविनाश जी है, शिव लोहार है विदिशा से, पूनम है कानपुर से, और राकेश है शिमला से, अमन भस्माकारी गोल्डी जी, और अमर सिंह साहू जी है बिमल असम से।
2: इन सभी के साथ सुनना चाहते हैं आप इस गीत को?
3: जी जी।
2: तो जी बहुत बहुत धन्यवाद कॉल करने के लिए, हम आपको आपके पसंद का गाना सुना रहे हैं।
3: जी जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: मेरा शुभ नाम है देवजीत दास और मेरा गांव का नाम है बद्रीपार।
0: जी देवजीत दास, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, असम से।
1: और मैं तो 2 हफ्ते के बाद आज तो ट्राई किया।
0: जी जी जी इसी हाँ इस तरह से थोड़ा गैप देने से अच्छा लगा। जी जी जी तो देवजीत दास, आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी?
1: मौसम अभी तो बारिश नहीं है।
0: अच्छा ओ अच्छा, मौसम ठीक है ना?
1: तो मैं आपसे दो लाइन बोलूंगा।
0: जी जरूर जरूर।
1: कुछ नाम दिल से मिटे नहीं जाते हैं, कोई दोस्ती को चेहरे बुलाया ना जाते हैं। मुलासा तो ये मेरी दोस्ती दोस्ती के शीरा मिटे ना जाती है।
0: ओके, बहुत ही अच्छी बात कही आपने दोस्ती के बारे में, और इसी तरह से हमारा दोस्ताना कायम रहे, हम यही दुआ करते हैं। तो देवजी दा कही, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए?
1: आज मुझे गाना सुना के फिल्म का नाम है कल की आवाज।
0: कल की आवाज, और गाने के बोल?
1: गाने के बोल है, आज रात चांदनी है बस तुम मेरे साथ हो, ये गाना।
0: जी सुनाएंगे।
1: कुमार सानू और अलका याग्निक ने ये गीत
0: ओके
1: गाया।
0: जी जी जरूर सुनाएंगे।
1: तो कुछ एक गाना परिवार में डेडिकेट करूंगा।
0: हाँ जी जरूर।
1: पहले मेरा है पिताजी है जितेंद्र कुमार दास और माताजी है शिल्पी रानी दास, बड़े भैया है जोजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी। और ये गाना कुछ मैं दोस्तों को साथ डेडिकेट करूंगा।
0: जी
1: पहले मेरा बड़े भैया है अनुप कुमार भट्टाचार्य और दीदी है छोटे बाबू भट्टाचार्य जी और रामतो भाई और है बप्पन दादा, प्रेमजीत दादा और दादा है राजा मालाकार और है दादा है जहरलाल बर्मन और है मेरा दादा है शारदा प्रजापति पर इच्छा है। मैं इसको बात सुना है और ये सुनेगा और अभी जो आकाशवाणी ईटानगर में सुनते सारे से तक गाना डेडिकेट करूंगा।
0: ओके तो देवजीत दा, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना कल की आवाज।
1: आपके साथ बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो हेलो सर, नमस्ते।
0: नमस्ते, हेलो फरमाइश में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद सर, आपका हाल कैसा है?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ, आप सुनाइए आपका हाल कैसा है?
1: मेरा भी बहुत अच्छा है सर, आज पहली बार फोन लगा है तो बहुत अच्छा लगा है।
0: अच्छा, आप कहाँ से कॉल कर रहे हैं?
1: सर मैं विश्वनाथ जिला गोहपुर असम से बोल रहा हूँ, खरदद्वारा।
0: अच्छा खरदद्वारा।
1: हाँ हाँ
0: ओके, पहली बार आपने कॉल किया है। जी हमें भी बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करते हुए। और जी
1: मेरा भी

0: बहुत अच्छा लगा है आप लोगों, आप लोगों के साथ पहली बार मुलाकात है।
1: ओके, तो आगे भी आप जुड़ते रहिए, आगे भी कॉल कीजिएगा, हम आपको अच्छे अच्छे गाने जरूर सुनाएंगे। तो हरिद्वारा, हाँ कहिए।
0: सर रिफ्यूजी फिल्म के अलका याग्निक और सोनू निगम के आवाज में पंछी नदिया पबन, ये सुना दीजिएगा।
1: पंछी नदिया, वाह बहुत ही बढ़िया गीत
0: और
1: आपने चुना है जी। और
0: सर ये गीत को मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ
1: हाँ जी,
0: माइकल मुंडा, बिमल बसुमतारी, अमल बसुमतारी, दिनेश शर्मा, निरुत्पल डोरा और सभी हेलो फरमाइश सुनने श्रोताओं का मैं ये डेडिकेट करना चाहती हूँ।
1: ओके, सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो हरिद्वारा जी, पहले तो हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, आपने पहली बार हमें कॉल किया है और आपको सुना रहे हैं आपके पसंद का गाना रिफ्यूजी फिल्म से।
0: थैंक यू।
1: ओके, थैंक यू।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, आरणी गागरा सर
0: नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी हृदय से धन्यवाद धन्यवाद। मान्यवर आप कैसे हैं?
0: जी मैं बहुत ही बढ़िया हूँ। आप सुनाइए, आप कैसे हो और कहाँ से बोल रहे हो फिलहाल?
1: मैं भी बहुत अच्छा हूँ, स्वस्थ हूँ। आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं आपका वही पुराना जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र
0: शारदा प्रसाद
1: पति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से आरणी साहब से वार्तालाप कर
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए एक बार फिर से। और जी कहिए आपके वहाँ का मौसम कैसा है?
1: मानवर इस वक्त मथुरा वृंदावन का मौसम बहुत ही गर्म है और खिली खिली चिलचिलाती हुई और तापमान का जहाँ तक सवाल है 40 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पहुँच जाता है और सुबह सुबह 30 डिग्री के आसपास बन जाता है। और इससे देखा जाए तो वातावरण बहुत गर्म है
0: जी। और आपके वहाँ बारिश कब शुरू होगी, कोई उम्मीद?
1: अभी बारिश के कोई संकेत नहीं है। प्री मानसून वर्षा थोड़ी बहुत हुई थी दो सप्ताह पहले।
0: अच्छा जी।
1: लेकिन अभी तो वर्षा के कोई लक्षण नजर नहीं आ रहे हैं और अगले सप्ताह तक ये संभावना है कि थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है।
0: अच्छा, तो उम्मीद करते हैं जल्दी बारिश हो ताकि आप सभी को गर्मी से राहत मिले।
1: जी जी जी,
0: जी। तो कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाए शारदा प्रसाद जी?
1: बस आपके यहाँ बारिश हो रही है तो एक गाना हो जाए बरसात का।
0: अच्छा,
1: और बरसात के दिन आए मुलाकात के दिन आए।
0: ओ जी जी जी,
1: फिल्म का नाम बरसात।
0: अच्छा फिल्म का नाम भी बरसात ही है। ओके जी, जरूर सुनाएंगे।
1: और नई वाली बरसात है।
0: अच्छा जी जी जी, और किन दोस्तों के साथ सुनना चाहेंगे शारदा प्रसाद जी?
1: सर्वप्रथम मैं सुरीला बरसात का गाना साहब को शारदा समर्पित करते हुए नोरी में याद करता हूँ
0: जी।
1: और आकाशवाणी ईटानगर परिवार के साथ साथ मेरा ब्रज रेडियो श्रोता मित्र है अविनाश जी, आशुतोष जी, संगीता जी, लोकेन वर्मा, राजू यादव, राजू लवानिया है, वर्मा है, पुरुषोत्तम है, पुरुषोत्तम नारी है, राकेश कुमार जी, और जम्मू कश्मीर से केशव प्रसाद शर्मा है, डॉक्टर सितारे हैं, और इस तरह से आकाशवाणी ईटानगर सुन रहे सभी श्रोताओं को सादर समर्पित करता हूँ ये प्यारा सा खूबसूरत गीत आकाशवाणी ईटानगर से आरणी वाग्रा साहब के साथ में।
0: बहुत बहुत धन्यवाद शारदा प्रसाद जी कॉल करने के लिए। तो सुनते हैं आपके पसंद का गाना बरसात के दिन आए, बरसात फिल्म से। कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
1: जी। हृदय धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।
0: नमस्कार।
2: शरारे पीछे हैं ये सावन की रिमझिम झड़ी है, कदम बेखुदी में बहकने लगे हैं ये मन।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश, नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: सर आपका भी स्वागत करता हूँ। और मैं श्रीकांत जोशी
0: जी,
1: नाम लाचरगांव, जिला छत्रपति संभाजीनगर महाराष्ट्र सर।
0: जी श्रीकांत जी, काफी दिनों के बाद आपने हमें कॉल मिलाया।
1: हाँ, यानी महीने में एक ही बार कॉल करता हूँ मैं।
0: अच्छा, क्या बात है, श्रोताओं को मौका देते हैं आप।
1: और रिचार्ज खत्म होने के बाद नहीं कॉल करता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: रिचार्ज मैं एक महीने का करता हूँ ना। एक बार रिचार्ज किया तो एक महीने का नहीं आता सर, वो तो 28 दिन का।
0: ओहो जी जी जी जी, हाँ आजकल वैसा ही है, 30 दिन का नहीं होता है।
1: हर एक महीने में रिचार्ज करता हूँ और महीने में एक ही बार कॉल करने का। मुझे जैसी बात है कि हमारे अन्य श्रोता है उनको भी कॉल करने का मौका
0: मिलना चाहिए। जी जी जी, हाँ नए श्रोताओं को कॉल करने का मौका मिलना चाहिए, बहुत ही अच्छी बात कही आपने।
1: ईटानगर में अरुणाचल प्रदेश में बारिश हो रही है, हम समाचार सुनते हैं, लेकिन
0: हाँ।
1: में अभी तक मानसून आया था लेकिन बारिश नहीं हो रही सर।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, हमारे यहाँ तो बारिश हो ही रही है।
1: महाराष्ट्र में बारिश नहीं हो रही इसलिए क्या है, कभी कभी फोन करने का मन भी नहीं होता तो भी मैंने कर दी।
0: बारिश नहीं होने से आप क्यों कॉल नहीं करेंगे?
1: नहीं तो
0: गर्मी ज्यादा होती है ना,
1: तो कोई भी बारिश का गाना सुनवा दीजिए, मैं सुनूंगा।
0: अच्छा, बारिश का गाना आप सुनना चाहते हैं?
1: जी हाँ।
0: ओके, हाँ जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे बारिश वाले गीत को?
1: सर पहले तो आपके लिए और जो मैडम जी आती है उनका तो
0: नूरी
1: है।
0: नूरी
1: मैडम भी डिलीट कर रहा हूँ
0: जी।
1: और आसाम के श्रोता है अनुज कुमार भट्टाचार्य, सतुका भट्टाचार्य उनके लिए, और अर्जुन प्रधान और पप्पूराम घाट के लिए, और जितने भी श्रोता रेगुलर प्रोग्राम सुनते हैं उन सब के लिए,
0: सभी को आप डेडिकेट करना चाहते हैं। तो श्रीकांत जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना बारिश वाला।
1: धन्यवाद।
0: ओके धन्यवाद।

0: हेलो फरमाइश।
1: नमस्कार सर।
0: नमस्कार, हेलो फरमाइश, ईटानगर में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी बहुत अच्छे अवसर से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं।
0: क्या बात है, बहुत धन्य।
1: आपको तो बहुत सालों से सुन रहा हूँ।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: जी बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छे से श्रोताओं से पेश आते हैं। आवाज के तो खैर धनी है आप, इसमें क्या कहना है।
0: जी कोशिश करता हूँ कि अच्छी तरह से बातचीत हो जाए।
1: आपकी सर दिल से करूँ, मैं आपका स्वागत करता हूँ, इज्जत करता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ईटानगर में ऐसे भी उद्घोषक बेहतरीन है।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी तारीफ के लिए।
1: इसलिए मैंने कहा, बहुत सारे रेडियो स्टेशन सरकारी और प्राइवेट चैनल लगाता हूँ, उस सब से बातचीत होती है।
0: अच्छा जी,
1: उसमें मैं आपको भी मैं रखता हूँ, एक बेहतरीन उद्घोषक में आप शुमार होते हैं मेरी नजर में।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत दिल खुश कर दिया आपने। जी तो
1: जी सही सर मैं कह रहा हूँ, कहीं से गलत नहीं बोला है।
0: अच्छा बहुत बहुत धन्यवाद जी, कोशिश करता रहूंगा कि इसी तरह से आप सभी से पेश आऊं।
1: जी तो कितने साल से आपको सुन रहे हैं।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद। जी तो पहले अपना परिचय हो जाए।
1: मैं शेख जफर हसन, क्वाट जिला रोहतास बिहार।
0: जी शेख जफर हसन जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं सर, मजे में हैं।
0: ओके जी, हमेशा अच्छा रहिए, मजे में रहिए और रेडियो सुनते रहिए।
1: ईश्वर की कृपा है।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: आप लोग एक दुआएं हैं।
0: जी ऊपर वाले के आशीर्वाद है। जी और कहिए आज कैसा है आपके वहाँ का मौसम?
1: सर अब क्या कहा जाए, पूरे बिहार गर्मी की चपेट में, तो सुनता हूँ रेडियो, उसमें तापमान का बताया जाता है, सब 40 से ऊपर, 40 डिग्री सेल्सियस, 41-42, हमारे तो कल तक 42 था।
0: अच्छा जी जी जी।
1: हाँ और अभी तो देखिए आपसे बात हो रही है, अभी तो करीब करीब 10 मिनट से बादल छाया हुआ है।
0: अच्छा जी, तो बारिश होने की संभावना है?
1: हाँ देखिए अभी तो नहीं है, लेकिन बादल छाया हुआ है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा।
1: हाँ तो हो सकता है दोपहर में या शाम तक हो जाए।
0: अच्छा जी जी जी, बहुत ही अच्छी बात है अगर बारिश होती है।
1: आपको खाड़ी से उठा है तूफान, और उधर से केरला शायद अरब सागर से उधर से भी उठा है। देखिए
0: अच्छा जी जी,
1: जो और आप लोग जहाँ पर है ईटानगर और तो खैराधारी है, तो वहाँ तो मौसम तो खुशगवार ही होगा।
0: जी यहाँ तो बारिश हो रही है।
1: हाँ
0: लगातार
1: ही होगा।
0: जी जी जी जी, बहुत ही बढ़िया मौसम है। जी तो शेख जफर जी आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा, तो अब कहिए आज
1: तुमको भी लगा सर, अब खुश कर देता हूँ, शेर सुनाऊं?
0: हाँ जी जी जी, शेर से शुरू हो।
1: हाँ और उसके बाद आपसे मैं गुजारिश कर रहा हूँ खास करके
0: जी,
1: कि जो गाना मैं पसंद करूंगा सर, कम से कम रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा 2 लाइन।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर जरूर।
1: हाँ जी, जी। और जी। रही बात की आपको ये 2-3 श्रोता है उनका भी नाम ले लूंगा।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल।
1: शेर पर
0: ओके जी।
1: होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है।
0: जिंदगी क्या चीज है, वाह वाह वाह जी, बहुत ही बढ़िया।
1: आखिरी शेर सुन लीजिए
0: जी।
1: डरकर कभी सच बात का इनकार न करना, मर जाना मगर झूठ का इकरार न करना, दुनिया में मोहब्बत के गुनहगार बहुत हैं, तुम अपनी मोहब्बत को गुनहगार मत करना।
0: वाह वाह वाह वाह, तो क्या बात है
1: करना।
0: जी बहुत ही बढ़िया शेर। और अब गाने की फरमाइश हो जाए।
1: जी तो गाने की फरमाइश है, उसी को 2 लाइन में गा दूंगा।
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: फिल्म का नाम है अब्दुल्ला।
0: ओके जी।
1: और ये तो गाया था मोहम्मद रफी, और टूटी फूटी आवाज में सुन लीजिए।
0: सुनाइए सुनाइए, जरूर सुनाइए।
1: मैंने पूछा चांद से के देखा है।

0: कसम नहीं, मैंने पूछा चांद से। जी
1: वाह वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ही उम्दा गाते हैं आप शेख साहब। जी जी जी
0: नौसर साहब, यह कहता चलूं
1: जी
0: कि जहाँ भी कॉल लगती है तो नौसर खैर सब या उसका पहचान चुकी है
1: जी
0: और वो लोग मौका देता है, शेर सुनाते हैं
1: जी
0: और दो लाइन गाना गाते हैं।
1: क्या बात है, क्या बात है।
0: जी, और तो हमारे कुछ दोस्त हैं
1: जी जी जी हाँ जी
0: भदरवा जम्मू कश्मीर के, पुरुषोत्तम कुमार अनवर बिहारी, गणेश दास बंगाली और डोडा जम्मू कश्मीर के पंछी राम पुष्कर।
1: जी, इनके साथ आप सुनना चाहते हैं इसे प्यारे से गीत को।
0: जी सर,
1: जी, तो शेख जफर जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना।

0: हेलो फरमाइश
1: हेलो।
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश
1: हेलो सर, रेखा वर्मा बोल रही हूँ जिनसे। थैंक
0: जी। रेखा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप
1: यू सर। बस बढ़िया हूँ सर, आप कैसे हैं?
0: जी? मैं भी बहुत ही बढ़िया हूँ।
1: जी
0: और आपके वहाँ का मौसम कैसा है अभी फिलहाल?
1: सर, अभी तो गर्मी लग रही है यहाँ पे।
0: अच्छा जी, बारिश हुई नहीं
1: हाँ,
0: अभी
1: अभी
0: तक?
1: बारिश नहीं हुई है अभी यहाँ पे। कल थोड़े बहुत छींटे वगैरह आए थे पानी के, बाकी
0: अच्छा अच्छा
1: ये
0: अच्छा
1: सब
0: ओके जी। तो रेखा जी, कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: सर। नदिया के पार का सुना दीजिए। कौन
0: नदिया के पार का कौन सा गाना?
1: दिशा में लेके चला रहा है?
0: ओके जी, जरूर सुनाएंगे। बहुत ही बढ़िया गीत आपने चुना है। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे इस गीत को?
1: सर, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चों के साथ।
0: ओके, वर्मा साहब के साथ और बच्चों के साथ आप इस गीत को सुनना चाहते हैं?
1: जी सर, जी
0: जी। तो रेखा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपको आपके
1: जी सर,
0: पसंद का गाना सुना रहे हैं।
1: जी सर।

0: हेलो फरमाइश।
1: हेलो फरमाइश
0: जी, नमस्कार। हेलो फरमाइश में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी सर, जिला विदिशा तहसील नटेरी ग्राम मोहब्बतपुर से रवि केवड़ बात कर रहा हूँ सर।
0: जी रवि केवड़ जी, काफी दिनों के बाद आपने कॉल मिलाया।
1: जी सर, बात हो रही है और इस वक्त मौसम तो धूप बहुत तेज है सर, बारिश की संभावना अभी है नहीं।
0: अच्छा जी जी,
1: हाँ सर, बारिश हो ही नहीं रही सर।
0: ओके
1: जी,
0: चलिए आशा करते हैं जल्दी बारिश हो आपके वहाँ पे, ताकि आप सभी को गर्मी से राहत मिले।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल
0: जी।
1: सर, लेकिन बारिश की अभी तो कोई वही नक्शे
0: संभावना नहीं
1: सर। क्या है तो मौसम तो होता है सर, गिरता नहीं है, लेकिन
0: ओके
1: हाँ, लेकिन आएगा अभी दो एक दो चार दिन के बाद आना वाला
0: अच्छा,
1: है।
0: अच्छा अच्छा अच्छा जी, आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है।
1: जी
0: जी,
1: जी
0: तो
1: और
0: रवि
1: सर,
0: जी
1: आप क्या मौसम कैसा है सर?
0: हमारे यहाँ तो लगातार बारिश हो रही है।
1: अच्छा
0: जी
1: चलो, अच्छा है आपके इधर से हमारे इधर भेजिए सर।
0: हाँ, वही मैं काफी सारे श्रोताओं से बात की थी मैंने, तो मैंने कहा कि थोड़ा थोड़ा भेज दूंगा सभी जगह।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल सर,
0: जी
1: जगह।
0: तो रवि जी कहिए, आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे?
1: आज सर फिल्म है हाँ मैंने भी प्यार किया है।
0: ओके
1: इसमें गाना है वो हम यार है तुम्हारे, ऐसे करके कुछ गाने तो
0: ओ
1: होते हैं
0: जी जी
1: वो
0: जी
1: चला है
0: हाँ,
1: सर।
0: बहुत ही बढ़िया गीत है, जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे?
1: पहले नंबर रहेगा सर आपके लिए,
0: धन्यवाद जी।
1: जिसके बाद दोस्त है हमारे प्रदीप साहू जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, बानु महफिल जी हैं, संतोष राव जी हैं, भारती राव जी हैं, उदिता विश्वकर्मा जी हैं, सुजीता विश्वकर्मा जी हैं, गजराज लोधी जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी हैं, नरेश प्रजापति जी हैं, और जितने श्रोता सुन रहे हैं उन सभी के लिए रहेगा सर
0: ओके,
1: गाना।
0: सभी को आप सुनाना चाहते हैं। तो रवि जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हम आपको आपके
1: थैंक यू
0: पसंद का
1: सर।
0: गाना सुना रहे हैं। थैंक यू कॉल करने।

0: धन्यवाद
1: जी। अपना परिचय हो जाए, कहाँ से बोल रहे हैं?
0: जी मैं जिलों की नगरी उदयपुर से उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
1: उदयलाल जी, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी सर, पहली बार जुड़ रहा हूँ।
1: अच्छा, पहली बार आप जुड़ रहे हैं ईटानगर में। ओके, तो हम सबसे पहले तो आपका आकाशवाणी ईटानगर के हेलो फरमाइश कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं।
0: जी सर, धन्यवाद।
1: और उम्मीद करते हैं आगे भी आप जुड़ते रहेंगे हमारे साथ।
0: जरूर सुनेंगे।
1: ओके जी जी जी। और अपने बारे में कुछ बताइए।
0: मेरी एज 74 है।
1: 74?
0: और मैं 50 साल से आकाशवाणी से जुड़ा हूँ।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है।
0: देश की सभी आकाशवाणी में मैं हेलो फरमाइश में फोन लगाता हूँ।
1: अच्छा जी
0: जी सर।
1: ओके, आप सिर्फ गानों के ही प्रोग्राम सुनते हैं या फिर कोई और?
0: नहीं, गानों के प्रोग्राम भी सुनते हैं। स्वास्थ्य वर्धक जो परिचर्चा आती है
1: जी जी जी,
0: डॉक्टर से।
1: ओके,
0: वो भी सुनते हैं।
1: अच्छा अच्छा जी। तो कहिए उदयलाल जी, आज कौन सा फिल्म का गीत आपको सुनाएं?
0: जी सर, आपकी कसम फिल्म का गीत है किशोर दा की आवाज में। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते।
1: जी जी जी, जरूर सुनाएंगे। और किन दोस्तों को डेडिकेट करना चाहेंगे आप इस गीत को?
0: जी सर, मेरे दोस्त है राय बोले जी, गंगाधर जी सावनकर, लोकेंद्र जी वर्मा, भगवान सिंह जी परमार और मोहनलाल जी बालोत्रा से, और धीरज भाई, अफजल भाई और एकता रेडियो सत्ता संघ के सभी साथी सुनेंगे।
1: ओके, तो उदयलाल जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते हैं आपके पसंद का गाना आपकी कसम फिल्म से।
0: धन्यवाद सर
1: जी।

0: हेलो फरमाइश।
1: जय माता दी। मेरा नाम है पूरन वर्मा और मैं डिस्ट्रिक्ट जयपुर राजस्थान गांव का नाम अंशमल बुगला से बात कर रहा हूँ सर।
0: जी पूरन वर्मा जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कहिए कैसे हैं आप? जी मैं बढ़िया हूँ, यहाँ सब ठीक ठाक है और बारिश हो रही है झमाझम।
1: ये हमारे यहाँ भी बस कल परसों हुई थी सर बारिश।
0: अच्छा जी,
1: अभी तो मौसम बढ़िया है और अंदर ज्यादा चलाता है सर, यहाँ अंदर ज्यादा चलता है।
0: अच्छा अच्छा ओके। और कहिए आज कौन सा फिल्म का गीत आप सुनना चाहेंगे हेलो फरमाइश कार्यक्रम में?
1: जी मैं आज सुनूंगा, फिल्म का नाम है खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे। और जिस गाने के बोले तेरी नजर का तीर मेरे दिल में उतर गया रे, चढ़ गया तेरे इश्क में पड़ गया रे, तेरे इश्क में पड़ गया रे, गाना
0: इश्क में पड़ गया रे। जी जरूर सुनाएंगे। और किन लोगों के साथ सुनना चाहेंगे आप इस गीत को?
1: जी सबसे पहले तो आप है।
0: धन्यवाद जी।
1: और मेरा दोस्त है राकेश है, भगवान सिंह परवान जी, अभिनाथ जी है, रमेश प्रजापति जी है, गोल्डी भाई है और शिवा लोहार है और तमाम श्रोता जी आपके कार्यक्रम में लाइव कॉलर सुनने वाले।
0: ओके तो पूरन वर्मा जी कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते हैं आपके पसंद का गाना। ओके धन्यवाद।

0: Hello Farmaish.
1: The Maruti Suzuki Victoris is finally here and has everything you could imagine in your SUV. Dolby Atmos 5.7 surround sound, yes. Advanced Level 2 ADAS, yes. Smart powered tailgate with gesture control, yes. 5-star safety rating, yes. Yes, it's got it all. Introductory price starts at just ₹10.49 lakh.
2: And benefits up to ₹80,000. Visit your nearest Maruti Suzuki Arena dealership to know more. Terms and conditions apply.
3: तो दोस्तों अभी आप आनंद ले रहे थे हिंदी फिल्मी फरमाइशी गीतों पर आधारित फोन इन प्रोग्राम हेलो फरमाइश। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम है जिसे आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। और अब हम लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए चंद हिंदी फिल्मी नगमे।

बिल्कुल, ये है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कारवां, भूले बिसरे गीत। आप सभी का इस अंक में तहे दिल से स्वागत है।

तो श्रोता दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे मैं शायर तो नहीं फिल्म बॉबी से। सचमुच कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को अपने आप शायर बना देती है ना। चलिए अब बढ़ चलते हैं अगले गीत की ओर, उस गीत की ओर जहां खूबसूरत बरसात का मौसम है और मॉनसून की इस खूबसूरती से बयां करता है जिसकी कोई तुलना नहीं।

सुन रहे थे आप खत लिखते आशा भोसले की आवाज में, और ये है सदाबहार हिंदी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। कार्यक्रम में अगला नगमा है वादा कर ले साजना।

0: दोस्तों, इसी गीत के साथ ही अब हम कार्यक्रम भूले बिसरे गीत के समापन पर आ पहुंचे हैं। आपको बताना चाहेंगे कि इसी के साथ ही अब हम हमारी तीसरी प्रसारण सभा के भी समापन पर आ पहुंचे हैं। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने में हमारा साथ दे रहे थे तमाम एफएम ट्रांसमीटर के सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक दी तांगजांग तथा तकनीकी अभियंता पीबी द्योरी और मैं आपकी रेडियो दोस्त सुलोकना। चलते चलते आपको बताना चाहेंगे कि अब से कुछ ही क्षणों में हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड की ओर। आप सुनेंगे एफएम गोल्ड से रिलेटेड कार्यक्रम और हम आप सभी से फिर मिलेंगे सुबह के 5:48 पर। हमें दीजिए इजाजत। शुभ रात्रि। जय हिंद।
1: This is Akashvani. In the weekly program Current Affairs, now we bring you a discussion on major outcomes and strategic gains from Prime Minister's 6-day Europe visit and the G7 summit engagements. The participants are Prabhu Dayal, former ambassador, and Gulshan Sachdeva, international affairs expert. Moderator is Nishit Kumar.
2: Prime Minister Narendra Modi's 6-day diplomatic tour across France and Slovakia along with the G7 summit engagement in Avignon successfully placed India at the center of major global discussions. It also marked substantial progress in trade, security and global policy. And to discuss more about it, we are joined in by Mr. Prabhu Dayal, former ambassador, and Professor Gulshan Sachdeva, international relations expert. Welcome to both of you.
3: Thank you.
2: Ambassador Dayal, if we can begin with you, how significant was the visit of Prime Minister Modi to France, Slovakia, and of course the G7 summit, given India's growing economic importance in Europe and its continued engagement with major industrial economies?
4: Prime Minister Modi's European tour to France and Slovakia, alongside his participation in the 52nd G7 summit in Avignon, marks a highly significant milestone in expanding India's economic footprint and strategic partnership across Europe. Now, occurring against the backdrop of the recently finalized India-EU free trade agreement, the tour positions India not just as an external partner, but as a central stakeholder in Europe's technological, industrial and geopolitical future. So ultimately, this tour demonstrates that both Western European industrial giants like France and Central European manufacturing hubs like Slovakia increasingly view India as an indispensable economic anchor. PM Modi's visit successfully translated India's microeconomic growth into macro-level bilateral pacts.
2: Now let's listen in to Prime Minister Narendra Modi addressing the joint press meet with Prime Minister of Slovakia.
5: हमारे आत्मीयता भरे स्वागत के लिए मैं प्राइम मिनिस्टर फिचो का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। वे अनुभवी लीडर होने के साथ साथ भारत के सच्चे मित्र हैं। भारत स्लोवाकिया संबंधों को नई ऊंचाई तक पहुंचाने में उनकी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता का विशेष महत्व रहा है। मुझे खुशी है हमारे संबंधों में एक ऐतिहासिक पल के साक्षी बनने का सुअवसर मिला। मेरी ये यात्रा किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। मुझे खुशी है कि इस ऐतिहासिक अवसर पर हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। हमारे द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक सहयोग में हो रही प्रगति हमारे लिए संतोष का विषय है, लेकिन हमारी क्षमताएं विशाल है, हमारी आकांक्षाएं उससे भी बड़ी है। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज हमारे लिए विशेष रुचि के क्षेत्र हैं।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में एक समारोह में प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के अंतर्गत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि का वितरण किया। योजना का उद्देश्य रोजगार सृजन में तेजी लाना, रोजगार क्षमता बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में सामाजिक सुरक्षा का विस्तार करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक विकास, नवाचार और उद्यमिता को गति देने में अग्रणी होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस योजना का उद्देश्य पहली बार रोजगार पाने वालों को सशक्त बनाना और युवाओं तथा उद्योग के बीच सेतु का निर्माण करना है।
1: दुनिया भारत के युवाओं की क्षमता को भली भांति पहचानने लगी है और ऐसे समय में हमारी कोशिश है कि भारत का हर युवा अपनी क्षमता को अवसर में बदल सके और इसी सोच के साथ प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आरंभ हुआ।
0: प्रधानमंत्री ने बताया कि इस योजना से बड़ी संख्या में रोजगार सृजन हुआ है।
1: प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के सहयोग से अब तक करीब 70 लाख जॉब सृजित हुई है। करीब 20 लाख युवा अपनी पहली नौकरी के 6 महीने पूरे भी कर चुके हैं। 2000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे उनके बैंक खातों में पहुंची है। यह राशि केवल आर्थिक सहायता नहीं है, यह उनके परिश्रम का सम्मान है।
0: इस अवसर पर श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि मोदी सरकार ने रोजगार के अवसर बढ़ाए हैं।
2: 2014 के पहले ऐसी स्थिति थी, 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 0.08% एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता था, लेकिन आपके कार्यकाल में 1% इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ 1.11% एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है।
0: देश में कोयले से अमोनियम नाइट्रेट बनाने का पहला वाणिज्यिक संयंत्र ओडिशा के झारसुगुड़ा जिले में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित किया गया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल इस कोयला गैसीकरण परियोजना की आधारशिला रखेंगे। ये परियोजना भेल द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित कोयला गैसीकरण तकनीक का उपयोग करके प्रतिदिन 2000 टन अमोनियम नाइट्रेट का उत्पादन करेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूरदराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चिन्हित फुटपाथ पर चलने का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और मोटर वाहनों की आवाजाही की तुलना में इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिए। न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि ये अनुच्छेद 21 जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार सहित अनुच्छेद 19 और अन्य मौलिक अधिकारों के अंतर्गत गारंटीकृत आवाजाही के अधिकार का हिस्सा है। न्यायालय ने इस मामले में एक नियामक निकाय बनाने का सुझाव दिया है। न्यायालय ने 5 वर्षीय बच्चे के सड़क दुर्घटना में मौत के मामले में यह फैसला सुनाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है। भारत ने पाकिस्तान को फ्रैंकनस्टाइन स्टेट यानी ऐसा देश बताया जो खुद आतंकवाद को बढ़ावा देता है और बाद में उसी का शिकार बनता है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने ये बात कही। उन्होंने ये बयान तब दिया जब पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राम मंदिर के दान के कथित गबन में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि विशेष जांच दल की जांच के जरिए 15 दिनों के भीतर सच्चाई सामने आ जाएगी। चीन में मकाओ ओपन बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में अश्मिता चालिहा सेमीफाइनल में पहुंच गई है। क्वार्टर फाइनल में अश्मिता ने कोरिया के किम मिन सन को हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi today dispersed incentives worth 2,400 crore rupees under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana at a function in New Delhi. This dispersal marks a significant milestone in the implementation of the scheme, which is the government's flagship employment-linked incentive scheme aimed at accelerating job creation, enhancing employability and expanding social security coverage across sectors. Speaking on the occasion, the Prime Minister said, in the 21st century, opportunities will belong to nations that nurture skilled talent, foster innovation and uphold the highest standards of quality. He said India is set to lead from the front. Mr. Modi said, India's youth will be at the forefront of driving global growth, innovation and entrepreneurship in the years to come.
1: भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसलिए विकसित भारत का रास्ता भी युवाओं के सपनों, उनके कौशल और उनके सामर्थ्य से होकर ही आगे जाता है। हमारा प्रयास है कि देश का हर युवा अपनी क्षमता के अनुसार जितना आगे बढ़ सकता है बढ़े, जिसके पास हुनर है उसे अवसर मिले, जिसके पास आइडिया है उसे इनोवेशन के लिए मंच मिले और जो अपने दम पर कुछ करना चाहता है उसे पूरा सहयोग मिले।
3: The Prime Minister also said that during his recent visit to France and Slovakia, he felt the world is gradually recognizing the potential of India's youth. Mr. Modi said, The PM Viksit Bharat Rozgar Yojana is about empowering first-time employees and building a bridge between youth and industry. Speaking on the occasion, Union Minister for Labour and Employment, Dr. Mansukh Mandaviya, said that the Modi government has implemented the four important labour codes for the welfare and interest of the workers. Prime Minister Narendra Modi will lay the foundation stone of a coal gasification project worth over 25,000 crore rupees at Lakhanpur in Jharsuguda district of Odisha tomorrow. The Ministry of Coal informed that the project marks a historic milestone as the country's first commercial-scale coal-to-ammonium nitrate facility. The project is being developed by Bharat Coal Gasification and Chemicals Limited, a joint venture of Bharat Heavy Electricals Limited and Coal India Limited. It will produce 2,000 tons per day of ammonium nitrate using indigenously developed coal gasification technology. The Supreme Court today ruled that the right to walk on a demarcated footpath is a fundamental right. A bench of Justices P.S. Narasimha and A.S. Chandurkar held that a citizen's fundamental right to walk on a demarcated footpath is primary and shall have priority over movement by motorized vehicles. In a significant verdict, the apex court said it forms part of the right to movement guaranteed under Article 19(1)(d) and other fundamental rights including Article 21, right to life and liberty. India has slammed Pakistan at the United Nations as it accused Islamabad of hosting, training and deploying terrorists. India called Pakistan a Frankenstein state that gets shocked when its own monster bites back. The remarks were made by Anupama Singh, First Secretary at India's permanent mission to the United Nations yesterday, after Pakistan and the Organization of Islamic Cooperation raised the issue of Jammu and Kashmir during the interactive dialogue on the UN High Commissioner's annual report. Ms. Singh said, India categorically rejects the baseless and malicious allegations made by Pakistan. She said Jammu and Kashmir was, is and will always remain an integral and inalienable part of India. Peace talks between the US and Iran were called off today after intense fighting between Israel and Hezbollah in southern Lebanon, killing 21 people. Iranian officials didn't travel as planned to Switzerland, insisting that the fighting in Lebanon must stop before the talks can take place. US Vice President J.D. Vance also postponed his trip. Israel and Hezbollah later agreed to a ceasefire. A senior US official said negotiators for the US and Qatar worked out the deal with the help from Iran. In badminton, India's Ashmita Chaliha stormed into the women's single semi-finals of the Macau Open in China today. Ashmita secured her place in the last four with a straight game victory over South Korea's Kim Min-sun, 21-16, 21-18 in the quarterfinals. And that is the end of this news bulletin.
4: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं रवि कपूर। मुख्य समाचार। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। अब समाचार विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को आतंकवाद के मुद्दे पर कड़ी फटकार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देता है और उनका इस्तेमाल अपने हितों के लिए करता है।
5: This is the country. यह वह देश है जहां मौजूदा रक्षा मंत्री राज्य की नीति के रूप में आतंकवादियों की मेजबानी करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और तैनात करने की डींगे हाँकते हैं और फिर भी पाकिस्तान खुद को आतंकवाद का शिकार बताता है। वास्तव में यह एक ऐसा विरोधाभास है जिसे केवल पाकिस्तान ही कायम रख सकता है। यह एक फ्रैंकेनस्टीन स्टेट का जीवंत उदाहरण है जो तब हैरान रह जाता है जब उसका अपना ही बनाया हुआ राक्षस उसे वापस काट लेता है।
4: संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान और इस्लामिक सहयोग संगठन द्वारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने के बाद उन्होंने ये बयान दिया। अनुपम सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। असली मुद्दा पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों को वापस करना है। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमरीका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित हुआ। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। ये युद्ध विराम आज स्थानीय समय अनुसार शाम 4 बजे से लागू होने वाला है। अमेरिका और कतर के वार्ताकारों ने ईरान की मदद से इस समझौते को अंतिम रूप दिया है। हालांकि इसराइल और हिजबुल्ला ने अभी तक आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की है। इस बीच अमरीका और ईरान के बीच स्विट्जरलैंड में प्रस्तावित शांति वार्ता स्थगित कर दी गई है। दक्षिणी लेबनान में जारी संघर्ष के कारण ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने यात्रा रद्द कर दी है। ईरान ने कहा है कि लेबनान में संघर्ष रुकने के बाद ही वार्ता आगे बढ़ सकती है। सीमा पर सैन्य कार्रवाई को देखते हुए अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तनाव और बढ़ गया है। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान के बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांतों में कथित आईएसआईएस से जुड़े ठिकानों पर रात भर हवाई हमले किए। एक रिपोर्ट।
0: मंत्रालय ने कहा कि निर्धारित लक्ष्यों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया और चेतावनी दी कि अफगानिस्तान अपनी सुरक्षा और स्थिरता के लिए किसी भी खतरे के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेगा। ये घटनाक्रम दोनों पड़ोसी देशों के बीच बढ़ते तनाव के बीच सामने आया है। इससे पहले 11 जून को अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काबुल में पाकिस्तान के कार्यकारी राजदूत को तलब कर अफगान हवाई क्षेत्र के कथित उल्लंघन पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर रिहायशी इलाकों पर हवाई हमले करने का भी आरोप लगाया है जिसमें कथित तौर पर 13 लोगों की मौत हो गई थी। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
4: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि देश में पासपोर्ट सेवा अब तेज, सुरक्षित और सभी के लिए आसानी से उपलब्ध हो गई है। नई दिल्ली में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों के वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि अब देश के दूर दराज इलाकों तक पासपोर्ट सेवाएं पहुंच रही हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि ये बदलाव डिजिटल शासन की सफलता का प्रमाण है।
6: As our foreign policy,
7: हमारी विदेश नीति भारत को एक विश्व बंधु के रूप में

0: भारत का एलएनजी टैंकर दिशा रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करने के बाद गुजरात के दहेज बंदरगाह पर सफलतापूर्वक पहुंच गया है। ये कतर के रस लाफान टर्मिनल से 62,370 मीट्रिक टन द्रवीकृत प्राकृतिक गैस लेकर आया है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले एक कंसोर्टियम द्वारा संचालित और पेट्रोनेट एलएनजी द्वारा चार्टर्ड ये पोत आज सवेरे दहेज एलएनजी टर्मिनल पर पहुंचा। उम्मीद है कि ये कार्गो पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव के बीच देश भर में एलएनजी की उपलब्धता को मजबूत करेगा और स्थिर ऊर्जा आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। गुजरात के भरूच जिले में स्थित दहेज भारत का सबसे बड़ा एलएनजी आयात टर्मिनल और देश के प्राकृतिक गैस वितरण नेटवर्क का एक प्रमुख केंद्र है। दुबई में 21 जून को 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा। इस अवसर पर भारतीय वाणिज्य दूतावास और दुबई पुलिस की पॉजिटिव स्पिरिट काउंसिल के सहयोग से एक भव्य सामुदायिक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
1: इस कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोग, दुबई पुलिसकर्मी, राजनयिक विद्यार्थी और योग प्रशिक्षक शामिल होंगे। प्रतिभागी योगासन, प्राणायाम और ध्यान अभ्यास से संबंधित एक विशेष सत्र में भाग लेंगे। इसका उद्देश्य समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। भारतीय दूतावास ने कहा कि ये कार्यक्रम भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच मजबूत सांस्कृतिक संबंधों और स्वस्थ तथा जीवंत समुदाय के उत्थान को बढ़ावा देने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मान्यता दी थी। वर्ष 2015 में पहली बार वैश्विक स्तर पर यह दिवस मनाया गया था। पिछले एक दशक में ये विश्व में सबसे बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य आंदोलनों में से एक बन गया है। विश्व दर्पण के लिए मैं मनोज।
0: चीन में आयोजित शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इस वर्ष भारत की रिकॉर्ड 7 फिल्मों का प्रदर्शन किया गया। इन फिल्मों में हंटर्स मून, इन विच एनी गिव्स इट दोज वंस, उमराव जान, चंदू चैंपियन, कालिदास 2, सॉन्ग्स ऑफ फॉरगॉटन ट्रीज और फुल प्लेट शामिल हैं। शंघाई में भारत के महावाणिज्य दूत प्रतीक माथुर ने सोशल मीडिया पर इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि शंघाई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय फिल्मों की मजबूत भागीदारी गर्व का विषय है। चीन के गुयांग में विश्व मुक्केबाजी कप 2026 के दूसरे चरणों में भारत ने 6 पदक पक्के कर लिए हैं। आज प्राचीन महिलाओं के 57 किलोग्राम भार वर्ग के क्वार्टर फाइनल में चीनी ताइपे की पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता शी यू वू को 4-1 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई और पदक तय किया। वहीं मीनाक्षी ने 51 किलोग्राम भार वर्ग में अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन और दुनिया की तीसरे नंबर की मुक्केबाज कजाकिस्तान की अलुआ बाल्किबेकोवा को 5-0 से करारी शिकस्त दी। पुरुष वर्ग में दीपक ने 70 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के नबी इस गंदाद्रोव को 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से हराया। निखिल ने 55 किलोग्राम भार वर्ग में अजरबैजान के अमीन महमद ज़ादा पर 5-0 की शानदार जीत के साथ सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इससे पहले स्नेहे 65 किलोग्राम भार वर्ग में पोलैंड की किंगा क्रोवका से 0-5 से हार गईं और प्रतियोगिता से बाहर हो गईं। हॉकी में भारत ने आज FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया है। भारत की ओर से दीपिका ने 2 गोल और दीपिका सोरेंग ने 1 गोल दागा। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला शनिवार को चिली से होगा। फीफा विश्व कप में ग्रुप बी में कनाडा ने कल रात कतर को 6-0 से हरा दिया। कनाडा के जोनाथन डेविड ने 3 गोल किए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने पाकिस्तान पर आतंकवादियों को पनाह और प्रशिक्षण देने तथा तैनात करने का आरोप लगाते हुए उसकी संयुक्त राष्ट्र में कड़ी आलोचना की। लेबनान पर इसराइल के हमले में 21 लोगों की मौत के बाद अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का नया दौर स्थगित। बाद में इसराइल और हिजबुल्ला युद्ध विराम पर सहमत हुए। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान में ISIS से जुड़े ठिकानों पर हवाई हमले किए। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में भारतीय मुक्केबाजों ने 6 पदक पक्के किए। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।